107.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी के एफएम प्रसारण सेवा का लखनऊ केंद्र है। आज दिन बुधवार, वैशाख मास की 30वीं तिथि, शक संवत 1948, तदनुसार 20 मई सन 2026 है। प्रातः के 5:55 हो रहे हैं। अब हमारी आज की सभा आरंभ होती है।

कण कण में राम क्षण क्षण में श्याम। हो मस्जिद में अजान या वाहे गुरु का नाम, तुम सुन लेना भगवान, करना सबके कष्टों का निदान। तुम्हारे चरणों में नमन, तुमको बारंबार वंदन। हमारी प्रार्थना स्वीकारो प्रभु, पुष्पांजलि के हर पुष्प में तुम पधारो प्रभु।

नमस्कार श्रोताओं, एक नई सुबह, एक नई किरण और नई आशाओं के साथ आप सभी को सुमंगलम सुप्रभात। घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि 6:01 हो रहा है और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो। मैं हूं आपकी मित्र तरुश्री, आपके समक्ष उपस्थित हूं लेकर भक्ति और आध्यात्मिकता से महकता आपका पसंदीदा कार्यक्रम पुष्पांजलि। तो आइए इस आध्यात्मिक यात्रा का श्री गणेश करते हैं। प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश के चरणों के वंदना के साथ

श्रोताओं, सुबह का ये समय केवल जागने के लिए नहीं है, बल्कि खुद को जानने के लिए है। पुष्पांजलि के ये सुर आपको उस सत्य से अवगत कराएंगे जो सत्य है, शाश्वत है।

श्रोताओं, जैसे चंदन अपनी शीतलता से मन को शांत करता है, वैसे ही हरि का नाम हमारे जीवन के ताप को हर लेता है। आइए सुनते हैं ये दिव्य हरि भजन।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पुष्पांजलि मेरे यानी तरुश्री के साथ। ईश्वर को पाने के लिए आकाश को छूने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा झुकने की जरूरत है। जितना हम अहंकार से झुकेंगे उतना ही हम परमात्मा के करीब पहुंचेंगे। आइए राधा नाम का गुणगान करें और इस धुन में खो जाएं।

श्रोताओं, आपने भारी तीर तो बहुत किए होंगे, पर आज इस कार्यक्रम पुष्पांजलि के साथ अपने भीतर के तीर्थ की यात्रा पर चलते हैं, जहां ना कोई भीड़ है ना कोई शोर, बस हम और हमारी प्रार्थना।

श्रोताओं, दुनिया का शोर कभी खत्म नहीं होगा, पर इस संगीत के जरिए, इस भक्ति के जरिए हम अपने भीतर एक शांति का कोना तो बना ही सकते हैं। तो आइए चलते चलते पुष्पांजलि की इस यात्रा को समाप्त करने से पहले इस मधुर भजन में खो जाएं और प्रभु के साथ उनके चरणों में कुछ और पल व्यतीत करें। और इसी मधुर भजन के साथ पुष्पांजलि की यात्रा भी यहीं तक। 7 बजे आप हिंदी में समाचार के बाद सुनेंगे आपका फेवरेट प्रोग्राम सदाबहार गीत। तो बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए FM रेनबो।

गुड मॉर्निंग कानपुर, आप सुन रहे हैं अपना मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग कानपुर और मैं हूं आपकी अपनी सारिका शुक्ला लेकर हाजिर हूं 20 मई की एक नई सुबह नई सोच और फ्रेश एनर्जी के साथ। दोस्तों, सुबह का वक्त सिर्फ दिन की शुरुआत नहीं होता बल्कि एक नया चांस होता है अपने सपनों को थोड़ा और करीब लाने का। आज की हवा में थोड़ी फ्रेशनेस है, थोड़ा सा आसमान में सुकून और इस सुकून के साथ आपके दिन की शुरुआत हो रही है। तो चलिए आज की इस मॉर्निंग को बनाते हैं पॉजिटिव वाइब्स के नाम, म्यूजिक के साथ, मुस्कान के साथ और एक अच्छी सी फीलिंग के साथ। सो स्टे कनेक्टेड टू FM 102.2 रेनबो कानपुर।

पर्वत के तकिए से सूरज ने सर जो उठाया तो देखा दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां महकने लगी हैं। अनकही अनसुनी आरजू आधी सोई हुई आधी जागी हुई आंखें मलते हुए देखती है लहर दर लहर मौज दर मौज बहती हुई जिंदगी जैसे हर पल नई और फिर भी वही हाँ वही जिंदगी जिसके दामन में कोई मोहब्बत भी है कोई हसरत भी है पास आना भी है दूर जाना भी है और ये एहसास है वक्त झरने सा बहता हुआ जा रहा है ये कहता हुआ दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां

102.2 FM रेनबो कानपुर से प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग कानपुर। और दोस्तों आज 20 मई 2026 बुधवार की सुबह आइए आपसे शेयर करते हैं FM रेनबो कानपुर 102.2 से प्रसारित होने वाले प्रोग्राम्स की रूपरेखा। जी हां, समाचार के बाद यानी कि सुबह 8:30 पर सजेगी सुरों की पुरानी महफिल। सुबह 9:00 मैं आपकी अपनी सारिका लेकर आऊंगी प्रोग्राम रस बहार। और सुबह 9:45 का वक्त होगा भक्ति संगीत के कार्यक्रम अर्चना का। दिन में 11:00 मैं लेकर आऊंगी प्रोग्राम हमनवा। और आज इस प्रोग्राम में मेरी हमनवा होंगी आरजे रितु। दिन में 3:00 का वक्त होगा प्रोग्राम म्यूजिकार का। और शाम 4:00 आपकी पसंद होगी पूरी कार्यक्रम आपकी पसंद के जरिए। तो अगर आप भी अपना पसंदीदा गाना चाहते हैं सुनना तो हमें अपनी फरमाइशें भेजिए, अपनी फरमाइशी मेल भेजिए। जी हाँ, हमारा ईमेल एड्रेस है airkansomedia@gmail.com।

102.2 FM रेनबो कानपुर से कनेक्ट हैं आप। यहाँ प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग कानपुर। वेल कानपुर, इस म्यूजिकल मूड के साथ अब वक्त है एक छोटी सी लेकिन बहुत गहरी सोच का, तो चलिए शेयर करते हैं आपसे आज के दिन का सुविचार। अकॉर्डिंग टू रविंद्रनाथ टैगोर, यू कांट क्रॉस द सी मेयरली बाय स्टैंडिंग एंड स्टेयरिंग एट द वॉटर। जी दोस्तों, सिर्फ सोचते रहने से मंजिल नहीं मिलती, उसे पाने के लिए कदम उठाना पड़ता है। तो आज की ये सुबह आपसे यही कह रही है, सोचिए जरूर लेकिन आगे बढ़ना मत भूलिए। तो इसी सोच के साथ बढ़ते हैं आगे और प्ले करते हैं एक और ब्यूटीफुल सा ट्रैक फ्रॉम 102.2 FM रेनबो कानपुर।

0: एक आवश्यक सूचना सुनिए। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले पद्म पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण के लिए भारत सरकार द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं अपने नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। नामांकन करते समय संबंधित व्यक्ति की उपलब्धियों और सेवाओं का स्पष्ट और विस्तृत विवरण सही प्रारूप में अंकित होना सुनिश्चित करें। पद्म पुरस्कारों से संबंधित नियम और विनियम padmaawards.gov.in पर देखे जा सकेंगे। एक बार फिर हम बताना चाहेंगे, padmaawards.gov.in पर आप नियम और विनियम इस अवार्ड से संबंधित देख सकते हैं। नामांकन करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2026। सूचना समाप्त हुई।
1: रेनबो कानपुर से कनेक्ट है आप। प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग कानपुर। वेल, समय है जानने का सोशल मीडिया की हलचल। 102.2 FM रेनबो कानपुर है आपके साथ। आइए जानते हैं कि सोशल मीडिया की दुनिया में क्या चल रहा है। तो दोस्तों, हाल ही में फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने अपने एक्स हैंडल पर ट्वीट किया है

और इसके पीछे वजह सिर्फ सफर नहीं बल्कि फ्यूल सेविंग और एनवायरनमेंट के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी है। अपने पोस्ट में इन्होंने लिखा है कि अगर हम सब छोटी छोटी कोशिश करें तो इसका असर हमारे खर्चे पर नहीं बल्कि एनवायरनमेंट पर भी पड़ेगा। वहीं हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने एक्स हैंडल पर ट्वीट किया है, धरती माता पूरी मानवता को एक परिवार मानती है, उसके लिए पूरा संसार एक घर की तरह है जहां हर संस्कृति का अपना महत्व और सम्मान है।

0: Feel the undying romance.
1: डियर रेनबो लिसनर्स, आपका और हमारा रिश्ता है बड़ा पुराना, पर इसे और भी गहरा बनाने आ रहा है एक खास बहाना।
2: जी हाँ, FM रेनबो कानपुर के कार्यक्रमों पर अब आपकी राय, आपकी पसंद और आपके सुझावों का रहेगा हमें इंतजार। लेकर आ रहे हैं हम अपना फीडबैक शो मेल मिलाप।
1: हमें बताइए आपको हमारे प्रोग्राम्स कैसे लगते हैं, क्या और सुनना चाहते हैं आप। तो नोट कीजिए, हर महीने के चौथे बुधवार दोपहर 3:45 पर होगा हमारा आपका मेल मिलाप।
2: अपनी प्रतिक्रियाएं हमें लिखकर भेजें इस पते पर, कार्यक्रम मेल मिलाप, विज्ञापन प्रसारण सेवा, आकाशवाणी कानपुर, बेना झाबर रोड, कानपुर, पिन कोड है 208002।
1: हमें ईमेल करें, हमारा ईमेल एड्रेस है fmmelmilaap@gmail.com पर, यानी कि fmmelmilaap@gmail.com। भूलिएगा मत, हर महीने का चौथा बुधवार दोपहर 4:15 सिर्फ FM रेनबो कानपुर पर। मेल मिलाप।

102.2 FM रेनबो कानपुर से कनेक्ट हैं आप। प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग कानपुर। हमारे जो लिसनर्स अभी अभी नींद से जागे हैं उन्हें भी हमारा गुड मॉर्निंग है जी। चलिए दोस्तों अब रुख करते हैं देश और दुनिया में क्या कुछ खास हो रहा है इस ओर। तो दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो और युगांडा में इबोला वायरस के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए आपात स्थिति घोषित किया है।

साथ ही ये भी स्पष्ट किया है कि इबोला का संकट कोविड-19 जैसी बीमारी की तरह महामारी का रूप नहीं लेगा। वहीं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने इस वर्ष 1 जुलाई से कक्षा 9 के स्टूडेंट्स के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन कंपलसरी कर दिया है। वहीं 10th में तीसरी भाषा R3 के लिए कोई बोर्ड एग्जाम ना होकर सारा मूल्यांकन पूरी तरह से स्कूल पर आधारित रहेगा। वहीं दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय ने कल सार्वजनिक स्थानों पर पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस ना छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। और कल भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। रेनबो कानपुर से कनेक्ट हैं आप, प्रोग्राम चल रहा है।

नरेंद्र मोदी जी ने डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। वन जीरो टू पॉइंट टू एफएम रेनबो कानपुर से कनेक्ट हैं आप। प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग कानपुर।

यू आर लिसनिंग प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कानपुर 102.2 एफएम रेनबो कानपुर से। आइए दोस्तों थोड़ा स्क्रॉल करते हैं हिस्ट्री के पेजेस को और निकल पड़ते हैं टाइम ट्रेवल पर। जानते हैं क्या है स्पेशलिटी आज के दिन 20 मई की इतिहास के पन्नों में। दोस्तों आज ही के दिन 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत के समुद्री मार्ग की खोज करते हुए कालीकट पहुंचे थे। और आज ही के दिन 17 देशों ने पेरिस में मीटर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए, जिसे आज विश्व मेट्रोलॉजी दिवस के रूप में याद किया जाता है। और विलियम शेक्सपियर की कविताओं के पहले संग्रह का लंदन में प्रकाशन भी आज ही के दिन यानी कि 20 मई को हुआ। आज ही के दिन सेलिब्रेट किया जाता है विश्व

विश्व मधुमक्खी दिवस। वहीं भारत की आजादी में अहम भूमिका निभाने वाले लाल बाल पाल की टिकड़ी में से एक विपिन चंद्र पाल ने इस फानी दुनिया को अलविदा कहा आज ही के दिन। और हिंदी जगत के प्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म भी आज ही के दिन हुआ। 102.2 FM रेनबो कानपुर से प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग कानपुर।

0: मेहरबान कदरदान बच्चे बूढ़े और जवान, सौ बात की एक बात है सही, सिर्फ पैसे भेजने के लिए QR स्कैन करते हैं या पिन डालते हैं, पैसे मिलने के लिए नहीं।
1: RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से।
2: FM रेनबो कानपुर से प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग कानपुर। आप सुन रहे हैं FM रेनबो कानपुर, जहां देश दुनिया के साथ बातें अपने कानपुर की, आपके एहसासों की और जिंदगी की हर छोटी बड़ी हलचल की। तो डालते हैं एक नजर अपने शहर कानपुर की कुछ खास अपडेट्स पर। तो दोस्तों, कानपुर अब दिव्यांग जनों को छोटी छोटी समस्याओं और सामान्य जानकारी के लिए अब विभागीय कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे आपको। जी दोस्तों, फ्यूल की बचत और सुविधा को ध्यान में रखते हुए जिला दिव्यांग कल्याण विभाग ने व्हाट्सएप हेल्पलाइन और दूरभाष सेवा शुरू की है। तो अब दिव्यांगजन समस्या आवेदन संबंधी जानकारी या आवश्यक दस्तावेज व्हाट्सएप 8189038785 पर भेज सकते हैं और फोन नंबर 0512-2984802 पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, CSJMU इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट में समर कैंप लगने जा रहा है। कैंप आज से यानी कि 20 मई से 9 जून के बीच दो श्रेणियों में होगा। और एक जरूरी अपडेट दोस्तों आपके लिए, जी हां, कैस्को कैंप लगाकर दूर करेगा आपकी बिजली से रिलेटेड समस्या। 20 व 21 मई को दहली सुजानपुर, 22 मई को जाजमऊ और 23 मई को दबोली हेल्प डेस्क में मेगा कैंप लगेगा। वही दोस्तों, बात अपने कानपुर की, तो शहर को हीट वेव से बचाने के लिए नगर निगम सिटी हीट एक्शन प्लान पर काम शुरू कर चुकी है। इस क्रम में शहर में पानी का छिड़काव किया जा रहा है। खराब हैंड पंपों की मरम्मत शुरू हो चुकी है। इसके अलावा टैंकरों से जलापूर्ति भी की जा रही है। और दोस्तों, अपने

कानपुर शहर का अल्ट्रावायलेट इंडेक्स 11 पार कर चुका है। जी हां, तेज धूप की चकाचौंध रोशनी सिर्फ आंखों को ही नहीं बल्कि त्वचा व अंगों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। विशेष ख्याल रखिए अपना और अपनों का। जुड़े रहिए 102.2 FM रेनबो कानपुर से।

को ले जाएंगी आज के खूबसूरत दिन की तरफ। 102.2 FM रेनबो कानपुर से कनेक्ट है, आप प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग कानपुर।

जी हाँ, आप कनेक्ट हैं एफएम 102.2 रेनबो कानपुर से। अब वक्त हो चला है खेल की दुनिया में झांकने का। दोस्तों, कल आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स की जयपुर सवाई मानसिंह स्टेडियम में टक्कर हुई। जी हाँ, आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स की जयपुर सवाई मानसिंह स्टेडियम में टक्कर हुई, जहां राजस्थान रॉयल्स ने शानदार खेल दिखाते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। वहीं दोस्तों, अब शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। वहीं टैलेंट स्पीड हंट से तेज गेंदबाजों की तलाश करेगा यूपीसीए। जी हां, इसके माध्यम से 16 से 24 साल के युवा तेज गेंदबाजों की रफ्तार को परखा जाएगा और सबसे तेज गेंदबाजों को यूपीसीए ट्रायल कैंप और टीम का हिस्सा बनाएगा। फिलहाल आज के प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कानपुर का जो अब हिस्सा बनने जा रहा है वो है ये खूबसूरत सा ट्रैक फ्रॉम 102.2 एफएम रेनबो कानपुर।

हमारे भी हर एहसास में श्रोताओं आप रहते हैं और इसीलिए हम चले आते हैं आपसे मिलने, आपसे बातें करने और कुछ अहम जानकारी देने। फिलहाल वक्त है 102.2 रेनबो कानपुर पर, म्यूजिक और मस्ती का सिलसिला लगातार जारी है और अब वक्त आ चुका है जानने का मौसम का हाल। तो चलिए वेदर अपडेट शेयर करते हैं आपसे ताकि आपका दिन पूरी तरह सेट और बैलेंस्ड बना रहे। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय एवं भारत मौसम विभाग के अकॉर्डिंग आगामी 5 दिनों में वर्षा की कोई संभावना नहीं है और 20 मई से 24 मई तक लू का प्रकोप बने रहने की पॉसिबिलिटी है। तो कोशिश करें कि दिन में 11 बजे से 4 बजे तक अगर बहुत जरूरी ना हो तो बाहर ना निकलें। हल्के रंग के सूती कपड़े पहने, सर ढक कर रखें और आंखों में गॉगल का यूज करें। खुद को हाइड्रेटेड रखें और अपना साथी अपनों का भी विशेष ख्याल रखें। सुनते रहें 102.2 FM रेनबो कानपुर।

जैसा हो अपना और अपनों का विशेष ख्याल रखिए और सुनते रहिए FM 102.2 रेनबो कानपुर। फिलहाल प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कानपुर को यही वाइंड अप करने की दीजिए RJ सारिका शुक्ला को इजाजत। देश दुनिया की खबरों के लिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर। नमस्कार, चार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप, आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 1.6% की वृद्धि होगी। नागर विमानन महानिदेशालय ने इस वर्ष के शुरू में तकनीकी गड़बड़ी के बाद एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की आगे की जांच के आदेश दिए। और आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया।

0: तैयारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया गया है।
1: इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: नॉर्वे की दो दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ द्विपक्षीय बैठक की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: ओस्लो दौरे में हुए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित परिवर्तन, नीली अर्थव्यवस्था, जहाज निर्माण, स्वास्थ्य और रक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए नॉर्डिक देशों को आमंत्रित किया। नेताओं ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले सहित सभी प्रकार के आतंकवाद की स्पष्ट और कड़ी निंदा की। सारे प्रधानमंत्रियों ने भारत नॉर्डिक देशों के सहयोग को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अगला शिखर सम्मेलन फिनलैंड में हेलसिंकी में आयोजित किया जाएगा। संगीता गुड़बोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जिनेवा में 19वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण, डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार और वैश्विक स्वास्थ्य एकजुटता के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वैश्विक स्वास्थ्य का पुनर्निर्माण एक साझा दायित्व विषय पर आयोजित सभा में श्री नड्डा ने संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण पर आधारित सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में भारत की प्रगति का उल्लेख किया।
3: India is accelerating towards universal health coverage.
4: भारत गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच का विस्तार करके सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके लिए हमने 185,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए हैं। इसके अलावा हम महामारी की तैयारियों और आपातकालीन राहत के लिए मजबूत और सुदृढ़ सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
3: Pandemic preparedness and emergency responses.
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की यह योजना 1 जून से प्रभावी होगी। एक रिपोर्ट।
4: इस योजना के अंतर्गत राशि पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। पात्र महिलाएं आयकर का भुगतान नहीं करती हों और किसी भी स्थायी सरकारी नौकरी में कार्यरत न हो। नए आदेश के अनुसार लक्ष्मी भंडार योजना के सभी वर्तमान लाभार्थी स्वतः ही अन्नपूर्णा योजना में स्थानांतरित हो जाएंगे। नए आवेदकों के लिए अन्नपूर्णा योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने कहा है कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने से करीब 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। इससे देश के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में 1.6% की बढ़ोतरी हो सकती है। समिति के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद पीपी चौधरी ने कल शाम गुजरात के गांधीनगर में पत्रकारों को ये जानकारी दी।
7: में जो इनपुट मिला है उसमें हमने और कहा इसको और इम्प्रूव करो और एक रोल मॉडल के रूप में हम पूरे देश में सारे सरकार को हम भेजेंगे, भाई इस रूप में आप हमें अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करके दो। जैसे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट करे, इंडस्ट्रीज में क्या लॉस होता है, प्रोडक्शन का कितना लॉस होता है, लेबर एक तरह से दूसरी तरह माइग्रेट करती है, सबको कहा अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करें और उसका संकलन करके आगे दे सके।
0: नागर विमानन महानिदेशालय ने एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की जांच मूल उपकरण निर्माता केंद्र पर महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में करने का निर्देश दिया है। महानिदेशालय के अनुसार एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान का संचालन इस वर्ष 2 फरवरी को लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे से बेंगलुरु के लिए उड़ान AIC-132 संचालित करने के बाद रोक दिया गया था। एक रिपोर्ट।
8: यह कार्रवाई पायलट डिफेक्ट रिपोर्ट में दर्ज एक प्रविष्टि के बाद की गई थी। इसमें कहा गया था कि बायां ईंधन नियंत्रण स्विच थोड़ा सा दबाने पर रन से कट ऑफ स्थिति में फिसल जाता है और चयनित स्थिति में

0: ठीक से लॉक नहीं होता है। महानिदेशालय ने कहा कि एयर इंडिया ने मूल उपकरण निर्माता की निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार और महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में ईंधन नियंत्रण स्विच का निरीक्षण और कार्यात्मक परीक्षण किया। निरीक्षण परिणामों और उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा के बाद निष्कर्ष निकाला गया कि ईंधन नियंत्रण स्विच यांत्रिक रूप से डिजाइन के अनुसार कार्य कर रहा था और इकाई को सेवा योग्य घोषित किया। हालांकि महानिदेशालय ने निगरानी के अंतर्गत निर्देश दिया है कि ईंधन नियंत्रण स्विचों का भविष्य में निरीक्षण किया जाए। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया जाएगा। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। और अब खेल समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
2: आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने कल रात लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना भी बनी हुई है। राजस्थान रॉयल्स ने 221 रन का लक्ष्य 7 विकेट के नुकसान पर 5 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। वरिष्ठ भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने भारतीय हॉकी खिलाड़ियों के फिटनेस स्तर की सराहना करते हुए इसे खेल के लिए समर्पण की पहचान बताया है। कोहली ने कहा कि क्रिकेटरों की फिटनेस भारतीय हॉकी खिलाड़ी की फिटनेस के 15% के बराबर भी नहीं है। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय दल की पहली सूची की घोषणा कर दी गई है। यह प्रतियोगिता इस महीने की 25 तारीख से 6 जून तक गोवा में आयोजित की जा रही है। उधर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के अंकित और रेलवे के जयेश पाटिल पर 3 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। दोनों खिलाड़ियों का डोपिंग टेस्ट पॉजिटिव आया था। अंकित ने राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में 3रा स्थान जबकि पाटिल ने 5वां स्थान प्राप्त किया था। दोनों खिलाड़ियों ने आरोपों को स्वीकार कर लिया जिसके परिणाम स्वरूप उनकी अयोग्यता अवधि में 1 वर्ष की कमी हुई है।
1: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में बढ़ता तापमान हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। एक रिपोर्ट।
3: राज्य के बुंदेलखंड इलाके का बांदा जिला लगातार 3रे दिन भी देश का सबसे गर्म क्षेत्र बना हुआ है, जहां अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। राज्य के अन्य हिस्सों में भी भीषण गर्मी से राहत नहीं मिली है और कई स्थानों पर दिन का अधिकतम तापमान 44 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है और रात के समय भी तापमान 30 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है। पारा बढ़ने से आम जनजीवन पर तो असर पड़ा ही है, पशु पक्षी भी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए राज्य में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मध्य प्रदेश भी भीषण गर्मी की चपेट में है। राज्य में पहली बार पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
4: धन्यवाद विशाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे यात्रा लोकसत्य सहित कई अखबारों में है। भारत नॉर्वे के बीच अंतरिक्ष, हेल्थ, डिजिटल क्षेत्रों सहित 12 समझौते। भारत नॉर्डिक समिट में पीएम मोदी के शब्द। नवभारत टाइम्स में है, आतंकवाद पर हो एक रुख, कोई समझौता नहीं, कोई दोहरा मापदंड नहीं। प्रधानमंत्री मोदी की इटली यात्रा पर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों का साझा लेख। दैनिक जागरण में है, रणनीतिक साझेदारी के युग में भारत और इटली शीर्षक से छपे लेख के अनुसार भारत का तेजी से बढ़ता नवाचार तंत्र और कुशल पेशेवरों की बड़ी संख्या तथा इटली की उन्नत औद्योगिक क्षमता दोनों देशों के सहयोग को स्वाभाविक और रणनीतिक सहयोगी बनाती है। आवारा कुत्तों पर सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सभी अखबारों के मुख पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, खूंखार कुत्तों को सजाए मौत। शीर्ष न्यायालय ने कहा, बच्चों और बुजुर्गों के जीवन को भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ सकते। राजस्थान पत्रिका ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को दिया है, भयमुक्त जीवन लोगों का अधिकार। नक्सलवाद की तरह 3 वर्ष में हर केस खत्म करने का लक्ष्य, गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान दैनिक भास्कर में है।
1: धन्यवाद आकर्षिता। और अब अंत में मुख्य समाचार।

एफएम रेनबो कानपुर 102.2 की फ्रिक्वेंसी पर मैं हूं आपके साथ आपकी सारिका। और अब सजने जा रही है शुरू की एक ऐसी महफिल जहां हर धुन में होगी यादों की खुशबू, हर गीत में होगा बीते दौर का जादू। तो तैयार हो जाइए कानपुर पुराने सुनहरे नगमों के साथ दिल को फिर से गुनगुनाने के लिए, क्योंकि शुरू हो रहा है प्रोग्राम सुरों की पुरानी महफिल।

जी हाँ, थोड़ी सी बेवफाई फिल्म का गीत था, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। 102.2 FM रेनबो कानपुर से प्रोग्राम चल रहा है सुरों की पुरानी महफिल, और कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब आपको सुनवाते हैं अखियों के झरोखे से फिल्म का गीत, जिसे गाया है हेमलता ने।

इस गीत के साथ ही कार्यक्रम शुरू की पुरानी महफिल अब यहीं समाप्त होता है। दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत सारिका शुक्ला को। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के बाद प्रोग्राम रस बहार को लेकर बहुत जल्द मिलते हैं।

20 मई की सुबह के 9:31। हवाओं में अब भी इसे गर्मी का एहसास है और धूप में आने वाली तपिश का एहसास। वेल दोस्तों, कुछ बातें मौसम कह रहा है, कुछ शहर की रफ्तार और कुछ बातें जिंदगी धीरे धीरे हमारे दिलों तक पहुंचाना चाहती है। जी, सफर में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो, सफर में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो। नमस्कार दोस्तों, मुस्कुराती सुबह और खूबसूरत एहसासों के साथ मैं

देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए जी, फूलों से सजी वादियां, रंगों से भरे ख्वाब और संगीत में घुली हुई एक मीठी भीनी सी खुशबू। वेल दोस्तों, आज पूरी दुनिया वर्ल्ड बी डे सेलिब्रेट कर रही है। जी हाँ, ये दिन हमें प्रकृति के उन छोटे छोटे जीवों की अहमियत याद दिलाता है जो बिना किसी शोर के हमारी धरती को खूबसूरती और जीवन से लबरेज कर जाते हैं। दोस्तों, मधुमक्खियाँ सिर्फ शहद नहीं देती बल्कि फूलों, फसलों और हरियाली के बीच एक खूबसूरत रिश्ता भी बनाती हैं। दोस्तों, जब एक मधुमक्खी एक फूल से दूसरे फूल तक जाती है ना, तो वो अपने साथ सिर्फ पराग नहीं ले जाती बल्कि वो जीवन को आगे बढ़ाने का काम भी करती है। धरती पर रंग बिरंगे फूल, हरी भरी फसलें और प्रकृति की मुस्कुराहट कहीं ना कहीं इन छोटी छोटी सी मेहनतकश साथियों से जुड़ी हुई है। और ये जो अगला गाना प्ले कर रही हूँ, ये इन्हीं साथियों के लिए है।

सच फूलों के रंग, उनकी खुशबू और प्रकृति की सॉफ्टनेस दिल को ना एक अलग सुकून दे जाती है। 102.2 FM रेनबो कानपुर से प्रोग्राम चल रहा है रस बहार, और इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं सारिका के साथ। और दोस्तों, इन्हीं फूलों के बीच गूंजती है मधुमक्खियों की प्यारी सी गुनगुनाहट, जो हमें सिर्फ शहद ही नहीं देती बल्कि हमारी लाइफ को एक ब्यूटीफुल सा मैसेज भी देती है। दोस्तों, शहद की मिठास मोस्टली हर किसी को पसंद आती है। इसकी एक छोटी सी बूंद भी स्वाद में अपनापन घोल देती है। लेकिन क्या ये मिठास

ये स्वीटनेस सिर्फ शहद में ही होनी चाहिए? सोचिए सोचिए, टाइम लग रहा है ना आपको, चलिए मैं ही बता देती हूँ जी। तो ये मिठास, ये स्वीटनेस हमारी बातों में भी होनी चाहिए, ये सॉफ्टनेस हमारे बिहेवियर में भी, और अपनापन हमारी आवाज में भी होना चाहिए, जो किसी के भी चेहरे में स्माइल ला सके। क्योंकि एक अच्छे और संस्कारी सिटीजन की आइडेंटिटी सिर्फ उसकी सक्सेस से नहीं, बल्कि उसके बोलने के तरीके, उसके बिहेवियर और दूसरों के प्रति रिस्पेक्ट से भी होती है। ये स्वीट वर्ड्स कई रिश्तों को जोड़ भी देते हैं दोस्तों, और अच्छी सोच सोसाइटी को और भी ब्यूटीफुल बना देती है।

जी आज गर्म हवा के झोंके मौसमों को लूट गए। 102.2 FM रेनबो कानपुर से प्रोग्राम चल रहा है रस बहार। दोस्तों, जैसे ये नन्ही बीज मिठास के साथ साथ नेचर का बैलेंस भी बनाए रखती है ना, और शायद यही सीख हमारी जिंदगी के लिए भी बहुत जरूरी है। जिस तरह से ये नन्हे जीव प्रकृति के बैलेंस का पूरा ख्याल रखते हैं, उसी तरह हमें भी अपनी लाइफ

लाइफ में बैलेंस बनाना होगा। जी हाँ, काम और आराम के बीच बैलेंस, प्रकृति और विकास के बीच बैलेंस, साथ ही हमारी जरूरतों और जिम्मेदारियों के बीच बैलेंस। और आज जब वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे भी मनाया जा रहा है, तो ये दिन हमें सही माप और संतुलन की भी याद दिलाता है, क्योंकि जिंदगी सिर्फ तेज रफ्तार से चलने का नाम नहीं दोस्तों, बल्कि हर चीज को सही संतुलन के साथ जीने का नाम भी है। जिस तरह से एक परफेक्ट मेजरमेंट हर चीज को वेल बैलेंस बनाता है, उसी तरह लाइफ में सही बैलेंस रिश्तों, प्रकृति और समाज तीनों को खूबसूरती से जोड़कर रखता है।

0: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रा के दौरान अगर टीसी टिकट मांगे तो दिखा दीजिए, लेकिन कोई भी ओटीपी पिन या पासवर्ड मांगे तो उसे तुरंत भगा दीजिए।
1: आरबीआई कहता है ओटीपी या पिन के लिए कॉल या मैसेज आए तो थोड़ा ध्यान से।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: रेनबो कानपुर से प्रोग्राम चल रहा है रस बहार। वेल दोस्तों, जो सिलसिलेवार चीजें हमारी जिंदगी में, हमारे देश में, हमारे शहर कानपुर में चल रही हैं, जी जैसे मई का महीना इस बार अपने कई रंग दिखा रहा। कभी ठंडी हवाएं, कभी उमड़ते घुमड़ते बादल, तो कभी अचानक तपिश भरी धूप और कभी धूल भरी हवाएं। जी हाँ, मौसम के मिजाज थोड़ा बदले बदले से हैं जनाब, पर वही बदली बदली सी लग रही है हमारी और आपकी लाइफस्टाइल भी। हम भाग रहे हैं, थक रहे हैं और शायद सोच भी रहे हैं। एक और मेट्रो प्रोजेक्ट शहर को नई रफ्तार, नई पहचान दे रहा, तो दूसरी ओर बढ़ता ट्रैफिक, धूल और भागदौड़ हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बनता जा रहा। सुबह घर से निकलते ही टाइम पर पहुंचने की चिंता, स्कूल ऑफिस बिजी रूटीन, बाजारों की भीड़ और हर चेहरे पर आगे बढ़ने की जल्दी। लेकिन लेकिन लेकिन जी, इस फास्ट लाइफ के बीच में भी जरूरी है हम अपनी सिटी कानपुर, अपने एनवायरनमेंट और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए थोड़ा सा समय जरूर निकालें, क्योंकि डेवलपमेंट तभी खूबसूरत होता है जब उसके साथ सेंसिटिविटी और बैलेंस जुड़ा हो।

और शायद यही वजह है दोस्तों कि अपने बदले बदले रूप में ये जो मौसम है ना, ये भी हमसे कुछ कहना चाहता है। जी हाँ, ये कहता है कि मॉडर्न लाइफ की इस दौड़ में थोड़ा सा कनेक्शन नेचर से भी रखिए, क्योंकि जब हम सुबह घर से निकलते हैं तो सिर्फ अपने सपने ही नहीं, अपने शहर की हवा, पानी और आने वाले कल की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी साथ लेकर निकलते हैं। आज जरूरत है कि हम पानी की वैल्यू को समझें। कहीं टैप खुला छोड़ देना, जरूरत से ज्यादा पानी बहा देना या बारिश के पानी को यूं ही वेस्ट होने देना हमारी परेशानी बन सकती है। जरूरत है बारिश के पानी को रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए और घरों में स्प्रिंकलर्स या जरूरत के हिसाब से पानी सेविंग करें। जी हाँ, क्योंकि नेचर और मॉडर्न लाइफ के बीच एक छोटा सा बैलेंस आने वाले कल को बेहतर बना सकता है। 102.2 FM रेनबो कानपुर से कनेक्ट हैं आप।

ऐसा बैलेंस जहां डेवलपमेंट भी हो और ग्रीनरी भी, टेक्नोलॉजी भी हो और फ्रेश एयर भी। दोस्तों कानपुर जैसे फास्ट ग्रोइंग सिटी में हर आदमी हर साल सिर्फ अगर एक पौधा ही लगाए तो आने वाले जनरेशन को क्लीन एयर और बेटर एनवायरनमेंट दे सकता है। दोस्तों एक छोटा सा पेड़ सिर्फ छाया नहीं बल्कि शहर की सांसों को आराम भी देता है। और देखिए ना, क्लीन सिटी की जो शुरुआत है वो भी तो हमसे ही होती है। कचरा इधर उधर ना फेंकना, प्लास्टिक का कम यूज करना और शहर को साफ बनाना। जी हाँ, ये स्मॉल हैबिट्स बड़े चेंजेस लेकर आती हैं हमारी लाइफ में, क्योंकि रियल मॉडर्न लाइफ वही जहाँ लोग प्रोग्रेस के साथ अपने मोहल्ले, अपने शहर और अपने देश का ख्याल रखते हैं।

102.2 एफएम रेनबो कानपुर से प्रोग्राम चल रहा है रस बहार। दोस्तों, मॉडर्न लाइफ ने हमें स्पीड दी है, मानते हैं ना, कंफर्ट दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें नेचर से थोड़ा दूर भी किया है। ऐसे में जरूरत है बैलेंस की।

प्रोग्राम चल रहा है रस बहार। दोस्तों आज के दौर में जब मॉडर्न लाइफ तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है तो हमारे देश हमारे शहर के लिए सबसे जरूरी चीज बन जाती है बैलेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी लगातार इस बात पर जोर देते हुए कहा है कि हमें सस्टेनेबल लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए, यानी जहां डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के बीच बैलेंस बना रहे। कम फ्यूल का यूज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा यूज, अननेसेसरी ड्राइविंग से बचना। जी हाँ, हाल ही में देश में ईंधन की बचत को लेकर कई अहम मुद्दे भी उठाए गए और साथ में कई अहम कदम भी उठाए जा रहे हैं। जी हाँ, सर्वोच्च न्यायालय ने भी फ्यूल सेविंग को ध्यान में रखते हुए वर्चुअल सुनवाई, कार पूलिंग और कई कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम पर जोर दिया। साथ ही अपने शहर, अपने यूपी, अपने देश में प्रशासनिक कामकाज को लेकर एक नया ट्रेंड साफ दिखाई दे रहा है। सादगी, ईंधन की बचत और डिजिटल व्यवस्था की ओर बढ़ता कदम। अनावश्यक वाहन काफिलों को कम किया जा रहा है, वहीं आजकल आम दिनों की तुलना में साइकिल भी चल निकली है जनाब। जी हाँ, क्योंकि चेंजेस सिर्फ रूल्स बनाने से नहीं बल्कि उन्हें फॉलो करने से आते हैं। तो दोस्तों कह सकते हैं कि जब हम बैलेंस रखते हैं अपनी लाइफस्टाइल और गवर्नेंस में, तभी डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट दोनों साथ साथ आगे बढ़ते हैं। फिलहाल हम आगे बढ़ रहे हैं प्रोग्राम के आखिरी गीत की तरफ।

जी दोस्तों, हमारी जिंदगी भी एक खूबसूरत बैलेंस है, जहां एक तरफ नेचर की शांति है तो दूसरी तरफ शहर की भागदौड़। अगर हम दोनों के बीच थोड़ा सा बैलेंस बना लें तो हर दिन और भी सुकून भरा होगा। मैं हूं आपकी अपनी सारिका शुक्ला, दीजिए इजाजत प्रोग्राम रस बहार से। फिलहाल एक छोटे से अंतराल के बाद मिलती हूँ आपसे भक्ति संगीत के कार्यक्रम अर्चना के साथ।

सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निःशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

इस भक्ति रचना के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब यहीं समाप्त होता है। दीजिए इजाजत, हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, सुबह के 10 बज रहे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर कल रात रोम पहुंचे। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इस दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौते पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली यात्रा को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा कि उनकी इस यात्रा का मुख्य ध्यान भारत और इटली के बीच सहयोग को और प्रगाढ़ करने पर रहेगा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे के दूसरे दिन आमजन, व्यापारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। राहुल लोधवारी में वीरापासी मूर्ति का अनावरण करेंगे। यहीं पर वो बहुजन स्वाभिमान सभा में प्रतिभाग भी करेंगे। आज अमेठी के गौरीगंज के में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक का भी उनका कार्यक्रम है। प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक भीषण गर्मी और लू चलने की मौसम विभाग की चेतावनी के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में आ गया है। उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि लू, तेज धूप और गर्मी के कारण अचानक बीमार होने वाले मरीजों को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। इसके लिए सभी चिकित्सालय परिसरों में मरीजों और तीमारदारों के पर्याप्त पेयजल, छाया, पंखे, कूलर तथा गर्मी से बचाव की अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। जौनपुर जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन की अध्यक्षता में कल सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा विभिन्न विभागों की प्रगति की गहन समीक्षा की गई। फैमिली आईडी कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान बीडीओ खुटहन को कार्यक्रम की प्रगति में सुधार लाने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किए जाने तथा लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण कराया जाए। अमरोहा में बीती रात गजरौला थाना क्षेत्र में दिल्ली लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर तेज रफ्तार कार को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में कार में सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हैं। मृतकों में 3 लोग पश्चिम बंगाल के निवासी बताए जा रहे हैं, जबकि 1 व्यक्ति बरेली का रहने वाला था। हादसे में घायल दोनों लोगों को हायर सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। इसी के साथ ये बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। तब तक सुनते रहिए FM रेनबो।

0: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
3: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय

0: उत्पादों को अपनाएं। यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देवधामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
0: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
3: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
4: जनाब अली,
3: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।

107.7 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम सुगंध माटी के सुनने वाले सभी श्रोतन के राम राम प्रणाम नमस्कार खंबा गड़ी केम छो एफएम रेन में सुनने वाले नीक नीक रसिक श्रोताओं को आज हम जाना तो यो कि हम कौन है। जी हाँ, आपके रेडियो दोस्त आपके हम सफर रत्ना शुक्ला आप सभी के बीच में आई गई है। तो त्योहार सबके खाते तोरे देश के री मिट्टी के खुशबू। जी हाँ, मिट्टी के माटी के खुशबू गौनई के री माध्यम से लई के आई गई है आप सभी के बीच में। और सबसे पहले यू भजन यू गौनई आप तक हम पहुंचावती है। सुनो

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती हैं नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों के खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब अली।
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।
3: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
4: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
3: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
5: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
6: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं। यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
5: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
6: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

कार्यक्रम सुगंध माटी की। हाँ, सुगंध माटी की में अब हम का कहे जा रहे हैं आप सब लोगों से जानते हो, वो कुछ ऐसी बात है कि अपन भारत देश की बात करें तो यहाँ भले भाषा बदले तनिक दूरी पर मुला गले लगाव का मिले जुले के त्योहार मनाए का रिवाज निभावे का जो बिरिया होते ना वो सब एकजुट हो के दस्तूर अब तक ना ही बदला। आप दिया खो रहो कल के लिए खुमारी अभी तलक जिया माँ गूंजत है। कल के लिए अगर बात करी तो कल जो उन बड़ा मंगल की है ना वही की बात हम करते हैं। जी हाँ, तो बड़ा मंगल की अगर बात हम करते हैं तो कई बते दिन जगह पर प्रभु हनुमान जी के बड़ा मंगल का जश्न मनावा गया। भक्ति भाव के साथ आस्था के साथ सब मिले जुले रहे, भजन कीर्तन किए रहे। तो वो जो खुमारी है अपन सब देश की माटी की खुशबू ले के जो यू त्यौहार यू रिवाज जो मनावा गया उसके बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं कह, बस यू गीत सुनो।

श्रोता पण श्रोता पंचन आप सभी लोग सुन रहे हो।

0: तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
0: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

और अब चलते हैं रुक करत हैं उस माटी की तरफ जहाँ की बोली माँ मिस्री सी मिठास है। हाँ, जहाँ की बोली में मिस्री सी मिठास है और बात बात में दुलार, जहाँ की नदी की लहरें भी लोकगीत गाती हैं, जौन करेजा माँ उतर जावत है। और वही की बात का कही या ये दो जनन भी मुस्की मार के बोली बोले जाला, आई सुना जाए।

0: रात की बहती तन्हाइयों के बीच महकते हुए दिलकश तराने,
1: खोया खोया चांद, खुला आसमान,
0: रजनीगंधा। हर रात 10 बजे सिर्फ रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।

और बात कर रहे थे लोकगीतन की, सुगंध माटी की कार्यक्रम का। यह लोकगीतन व संस्कार संस्कृति मौसम के वास है। और अब जो उन गीत हम आपको सुनवाए जा रहे हैं ना, नायिका के बारहों महीनवा माँ अपन प्रीतम के विरह में जिया के पीर काव काव

होत है और बहुत ही कैसे कैसे वो अलग अलग महीनवा में कैसे कैसे पीर महसूस करत है। ये अनमोल विधा के गीत हम आप सब लोगों के तीर पहुंचावे जा रही हैं। एक ध्यान से सुनो और ये गीत का बहुत दिल से आनंद उठाओ।

0: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
0: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ।

और वक्त बता दिए 10:46 हुआ है, और कभी कभी जो बाहर ताप में जो हवा चलाते ना वो टूडियों में भी झांकते। हमारे भारत की असली खाती की अगर हम बात करें तो हर क्षेत्र की संस्कृति अपन माटी के गीत के जरिए अपनी खुशबू दूर तक पहुंचा देते थे, सबका अपना बना लेते हैं ना। तो जैसे रंगीलो राजस्थान, जहां का जर्रा जर्रा ऐतिहासिक कहानियां कहता है, अपनी रंगीली मिठास से जोड़ता है, और जहां ये जो एक पंक्ति है, जो सिर्फ एक पंक्ति नहीं जो पुकारती है पधारो हमारे देश, ये सिर्फ एक पंक्ति नहीं है, चूंकि ये आवाज़ है दिल के रास्ते से निकलकर हम सभी से जुड़ती है और हम सभी को अपना रंग और अपना संस्कृति से जोड़ती है।

यो बहुत नीक नीक गवनई रहा, और उसके बाद अब हम आगे बढ़ाते हैं। काहे से कि वक्त के हिसाब से अगर चले तो 10:53 हुई गवा है, और अब हम ये बेरिया है कि आपके मेल का शामिल कर लें। तो भैया मनु सेठ का लिखिन है, भैया मनु सेठ लिखिन है, माटी के सुगंध कार्यक्रम में रत्ना बहिनी का प्रणाम और हमारे नानी के राम राम, अच्छा नानी के हमरहो प्रणाम कह दियो। मनु भैया अवधि भोजपुरिया भाषा में भी गजब करेला, बड़ा बड़का मीठ मीठ आप बोलत बानी, और गवने भी बड़का नीक नीक बजवौलू बानी, मजा आवत बानी सुने माँ ये प्रोग्राम। तो मोनू सेठ वही आपके बहुत बहुत दिल से हम शुक्रिया कहते हैं। नानी का हमारे प्रणाम पहुँचाइयो, पठे दियो। वही के बाद अब हम जल्दी मेल शामिल कर ली। तेज बहादुर यादव जी का लिखे ने, राम राम कैसन हो रत्ना शुक्ला मैम, हम बहुत नीक हैं, ये कार्यक्रम में जुड़ के बहुत मधुर मधुर गीत सुने के और सुनवाए का मौका मिला था, तो हम बहुत नीक हो जाते। उसके बाद सुबेरन से सभी कार्यक्रम बहुत सुंदर प्रस्तुत हो रहे हैं, और अब सुगंध माटी के माँ बहुत सुंदर सुंदर और मधुर भक्ति गीत के साथ शुरुआत भई रही, बहुत नीक रहा। सीताराम जी से हम राम राम राम राम कहियो जी, तेज यू आपन के राम राम, हमरो राम राम, तुहार राम राम, सभी पहुंच जाए ऊपर तक। और तेज बहादुर यादव ममता यादव लिखे ने, गांव मऊ शर्की जिला रायबरेली उत्तर प्रदेश से, अभी हम गुरुग्राम हरियाणा में सुनते हैं, और बहुत बहुत आभार धन्यवाद। तो आप हो के बहुत बहुत तेज बहादुर यादव जी सब परिवार धन्यवाद। सोनू परवाना जी आचल सेठ जी लिखे ने, राम राम दीदी जी, बहुत मजा आ रहा है प्रोग्राम में, बहुत खूबसूरत गीत बजावत हो आप, और हम ये समय ट्रेन में सफर कर रहे थे। अच्छा ट्रेन में सफर कर रहे हैं, और भोले बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं, साथ में हमारी बड़ी भौजी भी सुन रही हैं अनीता सेठ जी। तो आंचल जी, अनीता जी और जत्ते लोग सुन रहे हैं, सभी के बहुत बहुत धन्यवाद एफएम रेनबो की तरफ से। और का लिखिन है सोनू परवाना जी लिखिन है, माटी के सुगंधन कार्यक्रम सभी तक आपन खुशबू भेज रहा है, सभी तक गाँव में दादी नानी चाची भौजी भैया दादा सबका बहुत नीक लागत है, और अब हमारे दोस्त व्यवहारी भी ये प्रोग्राम में जुड़ गए हैं, तो ये तो बहुत धन्यवाद कि आपके व्यवहारिक दोस्त भी ये कार्यक्रम में 100.7 MHz कार्यक्रम सुगंध माटी के में जुड़ गए हैं। और मनोज तिवारी जी, बाल गोविंद जी, रामचंद्र भागचंद्र प्रेमचंद्र, उमा शंकर जी लिख रहे हैं, रत्ना भाई ने एकदम जबरदस्त

चला था बा यू प्रोग्राम सुगंध माटी की। बहुत बहुत सभी लोगों के धन्यवाद। मिसेस गीता सेठ का लिखे ने, मिट्टी की खुशबू केवल एक प्राकृतिक एहसास नहीं बल्कि हमारी जन्मभूमि संस्कृति और संस्कारों का गहरा प्रतीक है। कि जीवन जुड़ा हुआ स्मृति की वो डोर है जो हमें हमारी जड़ों से बांध कर रखती है, जैसे रेनबो के परिवार की तरह जोड़ कर रखा है। रेनबो ने परिवार की तरह जोड़ कर रखा है। FM दीवानी गीता सेठ जी, आपको हम तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहते हैं इतनी अच्छी बात लिखने पहुँचाने के लिए। और MK राजी का भी मेल आएगा वहा है, लखीमपुर खीरी से। कछु लिखे नहीं, बस मेल करें हैं। सुधन बाबा का भी मेल आ गया है। और कारकन सब अच्छे लग रहे हैं, बस इतना लिखे हैं। उसके बाद अब चलो नीक गवने सुनवावा जाए आप सबे का। और बखत बहुत कम बचा है तो गवने का कहा थे। थिरकावे में डांस करे में बिल्कुल भी सकुचायो नहीं, कहे से कि बहुत मौके से ये यू गीत सुने के मिला थे।

और देखो और नाम जुड़ गया है, यू मेल कर दी है शिवा बानो जी और अंसारी हुजबा अंसारी श्रीनगर लखीमपुर खीरी से लिखी हैं। वही के बाद मोहम्मद आसिफ जी का भी मेल आ गया है और तेलंगाना से सुन रहे हैं देश ये है संदेश। अच्छा इन्होंने अगले प्रोग्राम के लिए इन्होंने संदेश भेज दिया है, तो चलिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेल करने के लिए। सुनते रहिए सुगंध माटी के प्रोग्राम का ये गीत, तो उसके बाद मिलते हैं न्यूज़ ब्रेक के उस पार। स्टे ट्यून्ड विद एफएम रेनबो।

0: हेलो डियर लिसनर्स, वेलकम टू द शो हमनवा। आज प्रोग्राम हमनवा को लेकर मैं हूं आपके साथ, आपकी अपनी सारिका, और मेरी हमनवा है मेरी को होस्ट कम दोस्त रितु। तो सबसे पहले नमस्कार है रितु तुम्हें और हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स को भी।
1: नमस्कार नमस्कार सारिका, तुम्हें भी और हमारे सभी सुनने वाले श्रोताओं को भी।
0: वैसे रितु, कुछ टाइम पहले ही तुम बाहर से आई हो अभी स्टूडियो में और मुझे ज्वाइन करने प्रोग्राम हमनवा में, है ना। और जैसे कि मैं तो सुबह से ही स्टूडियो में अपने लिसनर से कनेक्टेड थी, तो सबसे पहले ये बताओ कि बाहर के क्या है मिजाज।
1: मई सारिका, तेज धूप ने आज फिर शहर को बाहों में भर लिया है, हवा भी गर्म है और सड़कें तपती दिखाई दे रही हैं। और देखो ना, मौसम ने भी शहर को हीट वेव के अलर्ट मोड में डाल दिया है, साथ ही अपने कानपुर का अल्ट्रा वायलेट इंडेक्स भी 11 क्रॉस कर चुका है।
0: राइट ऋतु, और मौसम विभाग ने भी कानपुर समेत कई जिलों के लिए हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। धूप आज भी पूरे तेवर में इथलाती नजर आएगी और लू के थपेड़े आज से लगभग 24 मई तक लोगों को सताते रहेंगे, ऐसा अनुमान है।
1: तो भाई, लू से बचने के लिए करना ये है कि पानी खूब पीजिए, सिर ढककर रहिए, कोशिश कीजिए दोपहर में बाहर ना निकलें, अपना और अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि जिंदगी की रफ्तार तभी खूबसूरत लगती है जब सेहत भी मुस्कुराती है।
0: बिल्कुल सही कहा रितु, तो इसी मुस्कुराहट के साथ क्यों ना शेयर किया जाए वो टॉपिक्स जिन पर आज हम बात करने वाले हैं।
1: बिल्कुल, आज वर्ल्ड बी डे पर बात करेंगे उन छोटी छोटी मधुमक्खियों की जो हमारी प्रकृति और जीवन का बड़ा हिस्सा है।
0: साथ ही रहीमन निज मन की व्यथा में सुनेंगे कुछ दिल को छू लेने वाली बातें।
1: साथ ही सोशल मीडिया की चमक दमक और आज के युवा की सोच पर होगी चर्चा कि कैसे बनता है वर्चुअल और रियल लाइफ का कनेक्शन।
0: फिर होगी अपने मेहनत से अपनी पहचान बदलने वाले स्वयं सहायता समूह से मुलाकात।
1: पर जिस रेसिपी का हमारे लिसनर्स को रहता है खास इंतजार, उसका नाम, उसका स्वाद और स्वाद का तड़का जो आपको मिलेगा वो फिलहाल रहेगा सीक्रेट।
0: पर जो इस वक्त सीक्रेट नहीं रहेगा रितु, वो है प्रोग्राम का पहला गीत जो लेकर आ रहा है म्यूजिक मूड और मस्ती का परफेक्ट पैक।

0: रहा है वजन, और ऋतु जैसा कि देख रही हो कि बाहर जो हीट वेव है लोगों को परेशान कर रही है, लू के थपेड़े चल रहे हैं, तो ऐसे में हमारे लिसनर से हमें एक क्वेश्चन पुट अप करना है ना
1: भाई। वो क्वेश्चन ये है कि सोशल मीडिया और अपनी रियल लाइफ के बीच आप कैसे संतुलन बनाते हैं, हमसे शेयर कीजिए हमारे ईमेल एड्रेस पर।
0: बिल्कुल, आप हमें अपने ईमेल भेजकर शेयर कर सकते हैं कि सोशल मीडिया में क्या होता है, कई बार हम स्क्रॉलिंग करते हैं और अपना बहुत सारा टाइम बर्बाद कर देते हैं, तो उससे कैसे बचते हैं। सोशल मीडिया की अच्छी चीज़ों को तो हम ले लेते हैं, लेकिन ये जो हमारा टाइम वेस्ट कभी कभी होता है उससे कैसे आप बचते हैं। हाँ, आप हमें अपनी मेल भेज सकते हैं और हमारा जो ईमेल एड्रेस है उसे हम आपसे बता देते हैं, नोट कर लीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है aarkansomedia@gmail.com। इस पते पर आप हमें अपने मेल भेज सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं।
1: बस, और सारिका हमें उनके अपने श्रोताओं के मेल का है इंतजार, लेकिन फिलहाल बढ़ते हैं हम नवा प्रोग्राम में आगे और आज के दिन की बात करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: हर वर्ष 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों को मधुमक्खियों और अन्य परागण करने वाले जीवों के महत्व के प्रति जागरूक करना है। देखने में छोटी सी मधुमक्खी प्रकृति के विशाल चक्र में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। यदि मधुमक्खियां ना हो तो केवल शहद ही नहीं बल्कि हमारी कृषि व्यवस्था, खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण संतुलन भी संकट में पड़ सकता है।
0: बिल्कुल सही कहा ऋतु तुमने। और मधुमक्खियां फूलों से रस एकत्रित करती हैं और उसी दौरान वे परागण का जो कार्य होता है वो भी करती हैं, तो ये प्रक्रिया पेड़ पौधों में फल फूल और बीज बनने में सहायता करती है। वैज्ञानिकों का भी ऐसा मानना है कि दुनिया की अधिकांश खाद्य फसलें किसी न किसी रूप में परागण पर निर्भर हैं, अर्थात हमारी थाली तक भोजन पहुंचाने में ये जो छोटे छोटे नन्हे दोस्त हैं ना मधुमक्खियां, इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है।
1: बिल्कुल सारिका, और हम अक्सर शहद को ही मधुमक्खियों का मुख्य उपहार मानते हैं, लेकिन वास्तव में उनका सबसे बड़ा योगदान पर्यावरण और कृषि के संरक्षण में है। फल सब्जियां तिलहन मसाले और अनेक फसलें मधुमक्खियों के कारण ही अच्छी तरह विकसित हो पाती हैं। इस प्रकार मधुमक्खियां मानव जीवन और प्रकृति के बीच एक मजबूत कड़ी है।
0: लेकिन ऋतु क्या है ना कि इतना सब होते हुए भी जो दुख की बात है वो ये है कि आज मधुमक्खियों का

0: जो अस्तित्व है वही खतरे में है। अत्यधिक कीटनाशकों का प्रयोग, वनों की कटाई, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और तेजी से बढ़ता शहरीकरण इनके जीवन को प्रभावित कर रहा है। यदि ये स्थिति बनी रही ना, तो आने वाले समय में कृषि उत्पादन और पर्यावरण दोनों पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।
1: बिल्कुल पड़ सकता है सारिका। और संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशंस ने भी मधुमक्खियों के महत्व को समझते हुए इस दिवस को वैश्विक स्तर पर मान्यता दी है। ये हम सभी के लिए चेतावनी भी है और जिम्मेदारी भी।
0: बिल्कुल जिम्मेदारी भी है ऋतु। और अब जो प्रश्न है वो ये उठता है कि हम मधुमक्खियों की रक्षा के लिए क्या कर सकते हैं। तो हम बता दें कि अपने श्रोताओं को कि हम अपने घरों और आसपास फूलदार पौधे लगा सकते हैं, रासायनिक कीटनाशकों का कम उपयोग कर सकते हैं, जैविक खेती को बढ़ावा दे सकते हैं और पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक भी कर सकते हैं। और इस तरह से छोटे छोटे जो प्रयास हैं वो मिलकर बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं।
1: बिल्कुल सारिका, सही कहा तुमने, बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं छोटे छोटे प्रयासों से। भारत में भी मधुमक्खी पालन रोजगार और ग्रामीण विकास का महत्वपूर्ण साधन बन रहा है। नेशनल बी बोर्ड तथा विभिन्न सरकारी योजना के माध्यम से मीठी क्रांति को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे किसानों की आय बढ़ रही है और पर्यावरण संरक्षण को भी बल मिल रहा है।
0: बिल्कुल। और मधुमक्खियां केवल प्रकृति का ही हिस्सा नहीं है ऋतु, बल्कि मानव जीवन की आधारशिला है। यदि मधुमक्खियां सुरक्षित रहेंगी तभी धरती पर हरियाली, भोजन और जीवन सुरक्षित रहेगा।
1: तो आइए इस विश्व मधुमक्खी दिवस पर हम सभी ये संकल्प लें कि हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे, प्रकृति से प्रेम करेंगे और मधुमक्खियों जैसे अनमोल जीवों को सुरक्षित रखने में अपना योगदान देंगे।
0: पर सुनते रहेंगे 102.2 FM रेनबो कानपुर।
2: अच्छा ये बात है, तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ। जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब शस्त्र देना। डन
3: डन
2: डन। अच्छा तो ये बताओ, बागों में बाहर है? मैंने पूछा, बागों में बाहर है? गर्मियों की निहार है? तो तुमको मुझसे प्यार है?

0: आज का दौर डिजिटल युग का दौर है। मोबाइल फोन और इंटरनेट ने युवाओं को हमारी हथेली पर ला दिया है। ऋतु, तो क्या कहोगी इस बारे में?
1: भाई, विशेष रूप से सोशल मीडिया ने युवाओं के जीवन को गहराई से प्रभावित किया है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और स्नैपचैट जैसे प्लेटफॉर्म आज युवाओं की दिनचर्या का अहम हिस्सा बन चुके हैं। सोशल मीडिया ने जहां अभिव्यक्ति और जानकारी के नए द्वार खोले हैं, वहीं इसकी चकाचौंध ने युवाओं के सामने कई चुनौतियां भी खड़ी कर दी हैं। क्या कहती हो सारिका?
0: बिल्कुल सही बात कह रही हो ऋतु। आज का युवा क्या होता है ना कि सुबह उठते सबसे पहले मोबाइल अपना चेक करता है। पहले हम क्या करते थे कि ईश्वर की आराधना करते थे, भगवान को याद करके उठते थे, उनके आगे मस्तक झुकाते थे, लेकिन वो सबसे पहले क्या करता है कि अपना मोबाइल चेक करता है। लाइक्स, कमेंट्स, फॉलोअर्स और ट्रेंडिंग वीडियोस उनकी सोच और व्यवहार को प्रभावित करने लगे हैं और सोशल मीडिया पर लोग अपनी जिंदगी का जो चमकदार पहलू है वो भी तो दिखा देते हैं, लेकिन जिससे देखने वालों को क्या लगता है कि दूसरों की जिंदगी उनसे कहीं ज्यादा बेहतर और खुशहाल है, और यही तुलना कई बार युवाओं में असंतोष और हीन भावना पैदा कर देती है।
1: बिल्कुल, और सोशल मीडिया के अनेक सकारात्मक पहलू भी हैं सारिका। आज युवा सोशल मीडिया के जरिए नई नई चीजें सीख रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस, मोटिवेशनल वीडियो, करियर गाइडेंस और समाचार आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं।
0: बिल्कुल, और साथ ही अगर हम देखें तो गायन है, नृत्य, अभिनय, लेखन या कला, हर प्रतिभा को सोशल मीडिया ने मंच दिया है। कई युवा अपनी मेहनत और हुनर के दम पर लोकप्रिय भी हुए हैं, और साथ ही दूर बैठे लोगों से संपर्क बनाए रखना पहले जितना अब कठिन नहीं रह गया है। तो सोशल मीडिया ने संचार को सरल और तेज बना दिया है।
1: बिल्कुल, सोशल मीडिया की चकाचौंध का दूसरा पक्ष भी कम गंभीर नहीं है सारिका। आज कई युवा वास्तविक जीवन से अधिक ऑनलाइन इमेज बनाने में लगे रहते हैं। महंगे कपड़े, घूमने फिरने की तस्वीरें और दिखावटी जीवन शैली को सफलता का प्रतीक मान लिया गया है।
0: बिल्कुल, और लगातार क्या होता है कि दूसरों से तुलना करने के कारण चिंता, तनाव और अकेलेपन

0: जो भावना है वो बढ़ जाती है ऋतु, और लाइक्स और जो क्या होता है कि फॉलोअर्स, इनकी संख्या आत्मविश्वास को प्रभावित करने लगती है। कभी क्या होता है कि कई लाइक्स आ जाते हैं, कई फॉलोअर्स आ जाते हैं, और अचानक से लाइक्स और फॉलोअर्स का कम हो जाना भी हमें डिप्रेशन में डालता है। घंटों तक रील्स और वीडियोज देखते रहना पढ़ाई, खेल और परिवार के समय को कम कर देता है, जिससे युवाओं की एकाग्रता तो प्रभावित होती ही है, साथ ही क्या होता है कि हमारा जो अपनों से कनेक्शन है वो भी
1: कम हो जाता है। बिल्कुल, फर्जी खबरें, अफवाहें और साइबर बुलिंग जैसी समस्याएं भी सोशल मीडिया के माध्यम से तेजी से फैलती हैं। कई युवा बिना सच्चाई जांचे ही जानकारी साझा कर देते हैं और बाद में प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं।
0: तो सोशल मीडिया एक साधन है, जीवन नहीं। और इस बारे में हमसे जो जुड़ रहे हैं हमारे श्रोता हैं, ये हैं प्रियांशु, ये अपने विचार साझा कर लेते हैं। आइए सुनते हैं कि ये क्या कह रहे हैं।
2: हाय, मैं प्रियांशु बोल रहा हूँ, आई एम बैंगलोर से। सोशल मीडिया आज हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। इसे कई सारे अच्छे इफेक्ट्स भी हैं, जैसे कि हमें नॉलेज मिलती है, नेटवर्किंग होती है, नई अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं और क्रिएटिविटी को प्लेटफॉर्म मिलता है। बट लेकिन अगर बैलेंस ना रहे तो सोशल मीडिया एक डिप्रेशन, एंजाइटी, टाइम वेस्ट की एक वजह भी बन जाता है। पर्सनली मैं कुछ छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो करता हूँ, जैसे कि अननेसेसरी नोटिफिकेशन को ऑफ कर देता हूँ, पढ़ाई के समय फ़ोन को थोड़ी दूरी पर रखता हूँ और कुछ ऐप्स में स्क्रीन टाइम लिमिट सेट कर देता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि दिन का कुछ समय कम्प्लीटली ऑफलाइन रहूँ ताकि फोकस बना रहे और माइंड भी फ्रेश रहे, क्योंकि सोशल मीडिया यूज़ करना गलत नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी है कि कौन कौन सी ऐप्स हमारे कंट्रोल में रहें और हम किस ऐप में कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। थैंक यू
1: सारिका। ऐसे ही अपने विचारों से हमसे जुड़ रहे हैं शुभम दीक्षित, तो आइए सुनते हैं उन्हें भी।
0: बिल्कुल,
3: हाय, माय नेम इज शुभम दीक्षित और मैं आज आपके साथ कुछ अपने थॉट्स शेयर करना चाहता हूँ। बेसिकली मीडिया, सोशल मीडिया और इंटरनेट के ऊपर अपने व्यूज एक्सप्रेस करना चाहता हूँ मैं। सोशल मीडिया आज हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। यहीं से हमें सारी न्यूज़ मिलती है, सारी क्रिएटिविटी, जितनी भी थिंकिंग हो सकती है, या मिलने जुलने का जो एक प्लेटफॉर्म है वो अब फिजिकल से लेकर डिजिटल हो चुका है। और कभी कभी मोटिवेशन भी हम सोशल मीडिया से सीख कर लेते हैं। तो सोशल मीडिया हमारे एक कह सकते हैं लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट बन चुका है। और एक तरह से देखें तो सोशल मीडिया एक तरह से हमारे लिए टाइम पास का जरिया भी बन चुका है। कई लोग डूम डे स्क्रॉलिंग किया करते हैं, बिना किसी वजह के स्क्रॉलिंग करे जा रहे हैं। तो मैं अपने आप को कंस्ट्रेंट रखने के लिए एक सिंपल रूल फॉलो करता हूँ। मैं ये मानता हूँ कहीं ना कहीं कि यू शुड यूज सोशल मीडिया, सोशल मीडिया शुड नॉट यूज यू। और इस चीज़ को मैं अपने कोर में रखते हुए अपने सोशल मीडिया का जो यूसेज है उसको कंट्रोल और चेक एंड बैलेंसेज में रखता हूँ। मेरी आप सभी से भी गुजारिश है कि सोशल मीडिया एक अच्छी चीज़ है, उसको एक पॉजिटिव वे में यूज़ करें, अपना बिजनेस बढ़ाने में, अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाने में, अपने कनेक्शन बढ़ाने में यूज़ करें। बट डोंट लेट इट यूज़ यू। आपको वो अपना एक मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म बनाए, आपको ऐसे भी नहीं होने देना है। थैंक यू सो मच।
0: बड़े अच्छे ही विचार हमसे प्रियांशु और शुभम ने साझा किए, और सोशल मीडिया से रिलेटेड जो हमने अपने श्रोताओं से क्वेश्चन किया था कि वो अपने जो रियल लाइफ है और सोशल मीडिया है इसमें कैसे बैलेंस बनाते हैं, तो ऐसा ही एक मैसेज हमारी स्क्रीन पर पॉपअप हो रहा है और ये आया है अमेठी से भाई मोनू सेठ का।
1: और सारिका ये लिखते हैं कि आधुनिक युग तकनीकी और विज्ञान के वरदान से जीवन को भौतिक रूप से अत्यंत आसान बनाता है, लेकिन साथ ही भागदौड़, असीमित प्रतिस्पर्धा और डिजिटल अति निर्भरता ने मानसिक तनाव व अकेलेपन जैसी गंभीर परेशानियां भी पैदा कर दी हैं। ये सिक्के के दो पहलुओं की तरह है। आप विज्ञान और तकनीकी के प्रभाव की मदद से घर बैठे दुनिया के किसी भी कोने में पलक झपकते ही संपर्क साध सकते हैं। साथ ही आधुनिक उपकरणों और परिवहन ने शारीरिक श्रम को बहुत कम कर दिया है, जिससे यात्रा और दैनिक कार्य बेहद सुविधाजनक हो गए हैं। और आगे लिखते हैं कि इंटरनेट ने शिक्षा और जानकारी तक सभी की पहुंच को आसान बना दिया है। मतलब इन्होंने फायदे तो लिखे हैं।
0: बिल्कुल, और साथ में इन्होंने जो लिखा है, इन्होंने कहा लिखा है कि इसके कुछ नुकसान भी हैं, जैसे कि बच्चों में ऑटिज्म की प्रॉब्लम देखने को आजकल मिल रही है, वहीं आंखों की रोशनी पर भी प्रभाव पड़ता है। लगातार अगर हम स्क्रीन के टच में रहते हैं तो आंखों की रोशनी भी कमजोर होने लगती है, और जो हमारे रिश्ते हैं वो भी कहीं ना कहीं कमजोर पड़ने लगते हैं, क्योंकि वहां पर जो कमी आ जाती है वो आ जाती है आपसी

0: इस संवाद की। तो बहुत अच्छी बात शेयर की है मोनू सेठ जी आपने। फिलहाल अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक में आगे रितु।
1: लेकिन मुझे लग रहा है कि टॉपिक से पहले एक गाना सुन लेते हैं।
0: हाँ बिल्कुल, वो तो अगर नहीं सुनाया तो शायद हमारे श्रोताओं को उतना मजा नहीं आएगा, तो एक खूबसूरत सा गाना हो जाए।

0: बड़ा पुराना, पर इसे और भी गहरा बनाने आ रहा है एक खास बहाना।
1: जी हाँ, FM रेनबो कानपुर के कार्यक्रमों पर अब आपकी राय, आपकी पसंद और आपके

0: बड़ा पुराना पर इसे और भी गहरा बनाने आ रहा है एक खास बहाना।
1: जी हाँ, FM रेनबो कानपुर के कार्यक्रमों पर अब आपकी राय, आपकी पसंद और आपके सुझावों का रहेगा हमें इंतजार। लेकर आ रहे हैं हम अपना फीडबैक शो मेल मिलाप।
0: हमें बताइए आपको हमारे प्रोग्राम्स कैसे लगते हैं, क्या और सुनना चाहते हैं आप, तो नोट कीजिए हर महीने के चौथे बुधवार दोपहर 3:45 पर होगा हमारा आपका मेल मिलाप।
1: अपनी प्रतिक्रियाएं हमें लिखकर भेजें इस पते पर, कार्यक्रम मेल मिलाप, विज्ञापन प्रसारण सेवा, आकाशवाणी कानपुर, बेना झाबर रोड, कानपुर, पिन कोड है 208002।
0: हमें ईमेल करें, हमारा ईमेल एड्रेस है fmmelmilaap@gmail.com पर, यानी कि fmmelmilaap@gmail.com। भूलिएगा मत, हर महीने का चौथा बुधवार दोपहर 3:45 सिर्फ FM रेनबो कानपुर पर मेल मिलाप।
2: आपके दिल की धड़कन, आपका अपना हेलो कानपुर प्रोग्राम हम लेकर आ रहे हैं हर रविवार और सोमवार को शाम 4 से 5 तक। सुनिएगा जरूर ओनली ऑन 102.2 FM रेनबो कानपुर की म्यूजिकल हार्ट बीट।
3: तो उठाइए फोन और लगाइए कॉल हर बुधवार और गुरुवार को सुबह 10 से 12 के बीच। आपकी आवाज बनेगी रेनबो कानपुर की आवाज।
2: अपनी आवाज को हम तक पहुंचाने के लिए फिलहाल नोट कीजिए हमारा फोन नंबर। हमारा फोन नंबर है 0512-254-1818,
3: यानी 0512-254-1818। तो हमें रहेगा
2: आपके फोन कॉल्स का इंतजार।
4: 102.2 FM रेनबो कानपुर से कनेक्ट हैं आप, प्रोग्राम चल रहा है हम नवा, और आज इस कार्यक्रम को लेकर सारिका और ऋतु है आपके साथ।
5: रहीमन ने जो मन की व्यथा मन ही राखो गोए, सुनी अठ लई है लोग सब बांट न लई है कोए। सारिका ये दोहा किसका है ये तुम्हें बताना है।
4: भाई ऋतु, इसका नाम इस दोहे में ही है, तो रहीमन निज मन की व्यथा, मतलब कि ये दोहा रहीम दास जी का है, और इस दोहे में रहीम दास जी ने मानव जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य बताया है। ये कहते हैं कि अपने मन की जो पीड़ा है या दुख है हर किसी को हमें नहीं बताना चाहिए, क्योंकि संसार में क्या होता है, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो वास्तव में हमारे दुख को हमारे दर्द को समझते हैं। अधिकतर लोग क्या होता है, केवल सुनते हैं, कुछ लोग मजाक बनाते हैं और कुछ लोग हमारी कमजोरी का फायदा उठाने लगते हैं।
5: बिल्कुल सही बात कही है रहीमदास जी ने। आज का समय सोशल मीडिया और दिखावे का समय बनता जा रहा है सारिका। लोग अपनी निजी परेशानियां भी सबके सामने प्रकट कर देते हैं, लेकिन हर व्यक्ति हमारा शुभचिंतक नहीं होता है। कई बार लोग हमारी भावनाओं को समझने के बजाय उसका उपहास कर देते हैं। ऐसे में ये दोहा जो है वो हमें सावधान रहने की सीख देता है।
4: बिल्कुल, लेकिन ऋतु इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है कि हमें कभी किसी से अपने मन की जो बात है वो शेयर नहीं करनी चाहिए। इसका वास्तविक जो मैसेज है वो ये है कि हमें अपनी भावनाएं केवल उन्हीं लोगों से शेयर करनी चाहिए जो विश्वसनीय हो, संवेदनशील और सच्चे हमारे हितैषी हों।
5: बिल्कुल,
4: जीवन में विवेक और संयम का होना क्योंकि बहुत ही जरूरी है, और ये विवेक और संयम उस व्यक्ति में कूट कूट घर भराओ नहीं।
5: बिल्कुल, और रहीमदास जी का ये दोहा जो है वो हमें आत्म संयम, धैर्य और मानसिक मजबूती की प्रेरणा देता है। ये सिखाता है कि हर परिस्थिति में सोच समझकर व्यवहार करना चाहिए, हमें अपने दुखों से घबराना नहीं चाहिए बल्कि साहस और धैर्य के साथ उनका सामना करना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जब हम दुखी होते हैं तो हम घबरा भी जाते हैं, और हम सोचते हैं कि हम अपने दिल की बात सामने वाले को बता देंगे तो हमारा मन जो है वो हल्का हो जाएगा, लेकिन हमेशा ये ऐसा होता नहीं है।
4: बिल्कुल, और उसकी जगह हमें क्या मिलता है कि हमारा ही मजाक बन जाता है, और तब हमें एहसास होता है कि जो हमने किया, अपने मन की बात दूसरों से शेयर कर दी जिसको हमें नहीं बताना था, तो शायद वो गलत था। तो कुल मिलाकर सार यही है कि जीवन में अपने मन की जो बात है हर किसी से

0: ना शेयर करें, बल्कि सही व्यक्ति की पहचान करें और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें।
1: और अब हम प्रोग्राम में आगे बढ़ रहे हैं और सुनवाते हैं अपने श्रोताओं को ये बढ़िया सा ट्रैक।

0: और अब बात करते हैं जन्मदिन की। तो सुमित्रा नंदन पंत का नाम सारिका तुमने भी सुना होगा और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने भी सुना होगा। उनकी आज जयंती है। तो सुमित्रा नंदन पंत जो हैं वो हिंदी साहित्य के छायावाद युग के प्रमुख स्तंभों में से एक थे। उन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। उनकी कविताओं में प्रकृति, सौंदर्य, मानवता, प्रेम और आध्यात्मिक चेतना का अद्भुत संगम मिलता है।
1: बिल्कुल रितु। और पंत जी का जन्म 20 मई 1900 को उत्तराखंड के कौसानी नामक सुंदर पर्वतीय क्षेत्र में हुआ था और हिमालय की प्राकृतिक छटा का गहरा प्रभाव इनके काव्य पर भी पड़ा था। और यही कारण है कि इनकी रचनाओं में पर्वत, झरने, फूल, पवन, चांद और प्रकृति के अनेक रूप जीवंत दिखाई देते हैं।
0: और उनकी जो प्रमुख कृतियां हैं वो हैं पल्लव, गुंजन, युगांत, चिदंबरा, ग्राम्या, और ये सभी शामिल हैं। चिदंबरा के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। और उनकी कविताओं के कुछ अंश हैं सारिका। छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। तो इन पंक्तियों में कवि प्रकृति की मोहकता और मानवीय आकर्षण के बीच द्वंद्व को व्यक्त करता है। और मानव तुम सबसे सुंदरतम, ये जो छोटी सी पंक्ति है पंत जी की, इसमें उन्होंने मानवतावादी दृष्टिकोण को दर्शाया है। वे मनुष्य को सृष्टि की सर्वोत्तम रचना मानते थे। साथ ही वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकलकर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। इन पंक्तियों में
1: बिल्कुल।
0: भी कवि ने क्या बताया है बताओ।
1: इन पंक्तियों में कवि ने बताया है कि कविता का जो जन्म होता है वो मानव की संवेदनाओं और पीड़ा से हुआ होगा, है ना।
0: बिल्कुल। और देखो एक लाइन और है, देखिए, हिमाद्री हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। इन पंक्तियों में राष्ट्र

0: प्रेम और हिमालय की महानता का अद्भुत चित्र दिखाई देता है।
1: बिल्कुल ऋतु, और हिमालय की महानता का अद्भुत जो चित्र है इनकी कविताओं में हमें हर जगह कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। हिंदी साहित्य में पंत जी का जो योगदान है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इन्होंने हिंदी कविताओं को नई संवेदनशीलता, सौंदर्य बोध और आधुनिक चेतना प्रदान की। और इनकी रचनाएँ केवल प्रकृति का वर्णन नहीं करती बल्कि जीवन के गहरे दर्शन को भी दर्शाती हैं।
0: बिल्कुल, और उनकी कविताएँ आज भी पाठकों को संवेदनशीलता, सौंदर्य और जीवन के प्रति प्रेम का संदेश देती हैं। उनकी कविताएं हिंदी साहित्य की अमूल धरोहर हैं और आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित भी करती रहेंगी।
1: तो सुमित्रा नंदन जी को शत शत नमन है एफएम रेनबो कानपुर 102.2 से।
0: हाँ, और सारिका, मैं ये कहना चाहूंगी कि देखो अभी गर्मियों की छुट्टियां हो गई हैं बच्चों की, है ना, तो हम चाहें या उनके पेरेंट्स चाहें तो बच्चों को साहित्य से जोड़ सकते हैं।
1: बिल्कुल, जैसे कि ऋतु अभी हमने बात की थी सोशल मीडिया की, तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा थोड़ा सा सोशल मीडिया से दूर रहे, बिल्कुल रखे, तो जरूरी है कि उसे साहित्य से जोड़ें।
0: बिल्कुल, और हमारे बहुत सारे कवि और लेखक ऐसे हैं जिनका साहित्य अगर बच्चे पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ उससे सीखेंगे जरूर।
1: बिल्कुल, चाहे वो प्रकृति के समीप जाएंगे या अपनी जो सांस्कृतिक विरासत है उसे समझेंगे, गहराई से समझेंगे, और जो किताबों का बुकिश नॉलेज है वो भी उनकी कहीं ना कहीं बढ़ती रहेगी।
0: बिल्कुल सारिका, और फिलहाल हम सुनवा देते हैं अपने श्रोताओं को ये ट्रैक।

0: जी बिल्कुल, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। 102.2 FM रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप, प्रोग्राम चल रहा है हम नवा। और ऋतु, अब बात उन महिलाओं की जो सिर्फ अपने सपने ही नहीं सवार रही बल्कि पूरे समाज को आत्मनिर्भर बनाने का नया अर्थ भी सिखा रही हैं।
1: स्वयं सहायता समूह यानी SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आज गाँव और शहरों में कई उम्मीद बनकर उभरे हैं ये ग्रुप्स।
0: बिल्कुल, छोटी छोटी बचत से शुरुआत करके ये समूह आज रोजगार, हुनर और आत्मविश्वास का बड़ा माध्यम बन चुके हैं।
1: जहाँ कोई घर अचार पापड़ बना रहा है, कोई सिलाई कढ़ाई से जुड़ रहा है, तो कोई छोटे छोटे बिजनेस के जरिए अपने परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत बना रहा है।
0: वैसे ऋतु, अपने कानपुर और आसपास के क्षेत्रों में भी कई महिलाएं छोटे छोटे समूह बनाकर अपने हुनर को नई उड़ान दे रही हैं।
1: बिल्कुल, और इसी दिशा में कानपुर में सखी केंद्र है जो महिलाओं के एम्पावरमेंट और अनेक अधिकारों और उनके अधिकारों के लिए लगातार काम कर रही है।
0: वहीं अगर हम बात करें श्रमिक भारती, जो एक ऐसा संस्था है जो खास तौर से महिलाओं, ग्रामीण परिवारों और कमजोर वर्गों को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रही है।
1: और इसकी शुरुआत 1986 में हुई। ये संस्था महिलाओं के लिए कई काम कर रही है, जैसे महिलाओं को SHG से जोड़ना, और इसी के द्वारा शक्ति महिला समिति समूह है जो 2007 में स्थापित हुआ और जो रनिया क्षेत्र में है।
0: बिल्कुल, और इस समूह ने मिलकर पता है क्या किया, इस समूह ने सोलर लालटेन चार्जिंग स्टेशंस शुरू किए, वहीं अन्य महिलाओं को ग्रुप से जोड़ा और बचत और छोटे छोटे ऋण के जरिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
1: तो सारिका कह सकते हैं कि SHG ये सिर्फ बचत समूह नहीं है बल्कि रोजगार, नेतृत्व, क्लीन एनर्जी की भी मिसाल बन रहे हैं।
0: बिल्कुल।

0: तो सारिका, तुमने ये बताओ, तुमने ये गाना क्यों सुनवाया?
1: कौन सा गाना?
0: यही तुमसे प्यारा कोई
1: मासूम
0: नहीं है,
1: नहीं
0: मासूम
1: है।
0: नहीं है
1: हाँ, बिल्कुल समझ रहे थे। तो तुम बारिश का जो मेंशन किया
0: हाँ,
1: गाने में,
0: बिल्कुल
1: उसकी बात कर रही हो। तो ये गाना इसलिए रितु मैंने प्ले किया क्योंकि शुरुआत में प्रोग्राम के तुमने जो गाना लिया था वो लिया था जलता है बदन, है ना। और वैसे भी देखो ना कि हीट वेव का जो ऑरेंज अलर्ट है वो है ही, लोग वैसे भी परेशान है, तो सोचा क्यों ना थोड़ी सी ऐसी बारिश वाले गीत से लोगों के दिलों को राहत दी जाए।
0: ये बात तो बिल्कुल तुमने सही कही है सारिका। और देखो अब हम अपने प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट पर पहुंच चुके हैं, मतलब कि रेसिपी। और गर्मी में अगर दिल मांगे देसी ठंडक का असली स्वाद
1: तो एक गिलास बेल का शरबत हो जाए जनाब।
0: सुकून भी, स्वाद भी और दादी नानी वाली फ्रेशनेस का एहसास भी। तो भाई इस बेल शरबत के लिए हमें जो चीजें चाहिए हैं वो मैं बता देती हूँ।
1: हाँ तो बिल्कुल बता दो रितु, लेकिन उससे पहले क्यों ना बता दें कि जो बेल की तासीर है वो ठंडी मानी जाती है, इसलिए इस मौसम में लोगों को अगर बहुत ज्यादा कुछ ड्रिंक लेने का मन होता है तो क्या होता है कि बेल का शरबत नजर आता है जिसमें फाइबर भी बहुत ज्यादा होता है और डिहाइड्रेशन से ये बचाता है और पेट की गर्मी और कब्ज से राहत देने के लिए लोग इसको लेना प्रिफर करते हैं।
0: बिल्कुल, और देखो इस समय लू चल रही है तो इस मौसम में तो विशेष बेल का शरबत बहुत ही फायदेमंद है।
1: बिल्कुल, और लोगों की डिमांड में भी रहता है। तो इंग्रेडिएंट्स हमारे लिसनर से शेयर कर दो रितु।
0: हाँ बिल्कुल, बेल का गूदा 1 कप चाहिए है, ठंडा पानी 3 से 4 गिलास, मिश्री या शक्कर आप डाल सकते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग, काला नमक 1 छोटा चम्मच, भुना जीरा पाउडर 1/2 चम्मच, बर्फ के टुकड़े, पुदीना पत्तियां गार्निशिंग के लिए।
1: और बनाने की जो विधि है वो मैं शेयर कर देती हूँ अपने लिसनर से। तो सबसे पहले क्या करना है, बेल के गूदे को पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और फिर हमें छान लेना है। अब इसमें मिश्री या शक्कर जो आपको सही लगे उसे आप मिला लें। अब काला नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और भुना जीरा डालकर अच्छे से मिला लें। फिर डालना है बर्फ के क्यूब्स और फिर क्या करना है,
0: ऊपर से पुदीना की कुछ पत्तियां गार्निशिंग के लिए डालनी है। बस तैयार है आपका ठंडा ठंडा बेल शरबत
1: जो हर घूंट में देगा देसी स्वाद और गर्मी से
0: राहत का एहसास। और चलते चलते सुनवाते हैं एक बढ़िया सा ट्रैक।

0: जी हाँ, तो अगली मुलाकात के वादे के साथ ही प्रोग्राम हम नवाज से दीजिए सारिका शुक्ला
1: और ऋतु निगम को इजाजत। स्वीकार कीजिए हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।

नमस्कार, दोपहर के 12 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार ज़ियांपोलो टोमासी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों को सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे के दौरान वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि टोमासी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशकों से अधिक पुराना है। प्रदेश सरकार द्वारा खरीफ अभियान 2026 के अंतर्गत अधिक फसल उत्पादन की रणनीति तैयार करने के लिए राज्य स्तरीय और मंडलीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठियों के आयोजन का कार्यक्रम जारी किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत मुख्य रूप से 21 मई को लखनऊ में लखनऊ मंडल की राज्य स्तरीय खरीफ गोष्ठी और आज

अयोध्या में अयोध्या और देवीपाटन मंडल की खरीफ उत्पादकता गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश के अधिकांश जिले भीषण गर्मी और लू की चपेट में हैं। बीते 24 घंटों में 48.2 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ बांदा देश भर का सबसे गर्म जनपद के रूप में दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने 21 मई तक प्रदेश को पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में लू का रेड अलर्ट जारी किया है। गर्मी को देखते हुए लोगों से सावधानी बरतने और जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलने की अपील की गई है। वहीं कानपुर में जिलाधिकारी ने समस्त शैक्षिक बोर्ड द्वारा संचालित प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 8 तक के समस्त विद्यालयों में 31 मई तक की अवधि के लिए ग्रीष्म अवकाश घोषित कर दिया है। शाहजहांपुर में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत जागरूकता और आवेदन कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया, जहां उन्हें योजना के तहत मिलने वाले ब्याज मुक्त ऋण की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और रोजगार के नए अवसर सृजित करना है। मैनपुरी में आज आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर रोडवेज बस आगे चल रहे ट्रक को ओवरटेक करने के प्रयास में पीछे से टकरा गई। इस हादसे में एक यात्री की मौत हो गई जबकि 20 लोग घायल हो गए हैं। सूचना मिलने पर पुलिस और यूपीडा की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान चलाकर बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला। सभी घायलों को इलाज के लिए सैफई पीजीआई भेजा गया है। इसी के साथ समाचारों का ये बुलेटिन ही समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 1 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देवधामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
0: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: घर से लेकर ऑफिस तक, बच्चों से लेकर बॉस तक, फैमिली से लेकर फैंटेसी तक, फैशन से लेकर फन तक, अगर आपको चाहिए इन चीजों की लेटेस्ट अपडेट, सो डोंट बी लेट।
4: सुनिए नारी शक्ति को समर्पित कार्यक्रम शत्रुपा, सोमवार से गुरुवार दिन में 12 से 1, 100.7 FM रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।
5: बारह बजकर 4 मिनट का समय। हाय हेलो नमस्कार, आपको कहने के लिए हाजिर हो चुके शिल्पी। जैसा कि रत्ना ने बताया, बाहर भाई बहुत धूप है। मतलब रत्ना ने मुझसे पूछा कि बाहर का आलम बताइए, तो मैंने कहा बाहर बहुत धूप है और ऐसा लग रहा था कि खूब सारे पेड़ रास्ते में हो, हम चले, हमें छांव मिले और हमें धूप का एहसास तक ना हो। और ये काम हम आप कर सकते हैं, यानी पेड़ों को, यानी पौधों को लगाने में ज़रा भी कंजूसी मत कीजिए, क्योंकि ये पौधे जब बड़े होकर पेड़ बनते हैं तो हमें छांव देते हैं और हमें बहुत सुखद एहसास होता है ऐसी तपती गर्मी में। वैसे तपती गर्मी में एहसास ठंडा का अगर आपको करना है तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें आप, यानी कुछ ऐसे ड्रिंक्स होते हैं जिन्हें पीकर आप बिल्कुल ताजगी का एहसास कर सकते हैं, और वो ड्रिंक्स आज लेकर आई मैं शत्रुपा में। वेल दोस्तों, वो तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आज ऐसे ड्रिंक्स हैं जिनमें किसी भी तरह आपको गैस जलाने की ज़रूरत नहीं, यानी हीट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं वो चीज़ें बताऊंगी जिसमें बस स्टे कूल एंड हाइड्रेटेड विदाउट यूजिंग हीट, यानी पर्यावरण की रक्षा के लिए हमें काफ़ी सारी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, सिर्फ पेड़ लगाने पर नहीं, लेकिन थोड़ा कोशिश कीजिए कि हम जो हमारे पास ईंधन है उनका भी यूज़ कम से कम करें, जिससे कि हमें, हमारे पर्यावरण को किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचे। अक्सर ऐसा होता है ना, हम किचन में बहुत सारा कचरा निकलता है और हम उसे एक ही साथ रख देते हैं, और ऐसे संदेश हमें अक्सर मिलते रहते हैं कि इन सब चीज़ों को डिवाइड करके रखें, लेकिन उस पर हम ध्यान नहीं देते। तो थोड़ा इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखना, यानी हमें जो भी काम करना है वो अपने भविष्य को लेकर ध्यान में रखें, यानी पर्यावरण की सुरक्षा अगर होगी तो हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज हम कौन कौन से ड्रिंक्स लाए हैं वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि भाई पेपर और पेन निकाल लीजिए या पेपर पेंसिल निकाल लीजिए और बस एक गाना एंजॉय कीजिए। जब तक आप ढूंढ लीजिए पेपर पेन और गाना सुनिए, और उसके बाद हम जो जो ड्रिंक्स लेके आ रहे हैं वो फटाफट आप नोट कीजिएगा और इस तपती गर्मी में ठंडक का एहसास लीजिएगा।

0: ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: शत्रुपा में हमारी आज की जो थीम है स्टे कूल एंड हाइड्रेटेड विदाउट यूजिंग हीट। और आज जो हम कुछ ड्रिंक्स आपको बताने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले है आप सबका फेवरेट और बहुत ठंडा देने वाला मसाला छाछ। मसाला छाछ बनाने के लिए जो आपको सामग्री चाहिए वो नोट कर लीजिए, जो इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड है वो आपको नोट करना है। पेपर पेन आपने ले लिया होगा तो बस फटाफट नोट कीजिए। सबसे पहले आपको लेना है एक कप दही, फिर आपको चाहिए एक कप ठंडा पानी और आधा टेबल स्पून भुना जीरा पाउडर या टीस्पून, आधा टीस्पून भुना जीरा पाउडर और आधा टीस्पून काला नमक ले लीजिए। और उसके बाद थोड़ा सा इसमें स्वाद बढ़ जाएगा अगर आप इसमें चुटकी भर चाट मसाला ऐड कर देंगे। और हाँ, ये जब गर्मियों में एक बहुत अच्छी चीज आती है और वो है पुदीना, जो आपके शरीर को बहुत ठंडक देता है, तो कुछ पुदीने की पत्तियां भी ले लीजिएगा। अब आपको क्या करना है, इस एक कप दही को, एक कप ठंडे पानी को, भुने जीरे पाउडर को, काले नमक को, चुटकी भर चाट मसाले को और पुदीने के पत्तियों को बढ़िया से ब्लेंडर में मिक्स कर लेना और तब तक मिक्स करना है जब तक वो स्मूथ ना हो जाए। बस जैसे ही वो स्मूथ हो बस ग्लास में निकालिए, ठंडा ठंडा पी लीजिए। और आपको बता दें कि बिना गैस के बढ़िया से तैयार हो गया आपका ये प्यारा सा ड्रिंक, जो आपको खूब खूब मजे देने वाला है गर्मी के दिनों में। और ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है, यानी कि फटाफट से तैयार हो जाएगा आपका ये ड्रिंक। तो बिल्कुल रिलैक्स रहिए और मज़े लीजिए इस खूबसूरत से, इस प्यारे से ड्रिंक के।

तो भैया जो रेसिपीज आप नोट कर लीजिएगा, इस पेपर को कहीं खोने मत दीजिएगा, क्योंकि बहुत संभाल के रखिएगा ऐसी मजेदार रेसिपीज जिन्हें आप तैयार करते हैं, और इन गर्मियों में बढ़िया आपको ठंडक मिलती है। सत्तू आप जानते हैं, सत्तू का गर्मी में बहुत सेवन किया जाता है और ये हमारे शरीर को बहुत ठंडक पहुंचाता है। तो सत्तू पेय जो होता है उसके लिए जो आपको चाहिए वो है 2 टेबल स्पून चने का सत्तू। ध्यान से देखिएगा, 2 टेबल स्पून चने का सत्तू, ठंडा पानी ले लीजिए, आधा टीस्पून नींबू का रस ले लीजिए और आधा टीस्पून काला नमक और जीरा पाउडर ले लीजिए। और इसके बाद आपको क्या करना है, सत्तू और पानी को आपको एक गिलास में अच्छे से मिला लेना है ताकि उसमें लम्स ना हो, यानी गांठें ना पड़ने पाए। और इसके बाद बाकी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं उनको भी उसमें अच्छे से मिला लीजिए और फटाफट पी लीजिए। और ये जो काला नमक और जीरा पाउडर थोड़ा थोड़ा हम जो डालते हैं वो एक तो टेस्ट बढ़ाता है और बाकी वो आपके पेट के लिए काफी हेल्दी रहता है। तो इन चीजों को ऐड करना मत भूलिएगा। और बढ़िया से सत्तू जो होता है वो इजीली डाइजेस्ट होता है, और सबसे बड़ी बात है कि गर्मी में आपके शरीर को ठंडक पहुंचाता है। तो सिर्फ एयर कंडीशन में या फिर कूलर में बैठने से कोई फायदा नहीं है, इन सब चीजों को अपनाइए जो आपके शरीर को अंदर से ठंडा रखें।

एक चीज जो इजीली हम सबके घर पे मौजूद होती है वो होता है गुड़। जी हाँ, गुड़ हर घर में होता है और गुड़ का शरबत आहा पी लीजिए तो क्या मजे आते हैं। तो चलिए गुड़ का शरबत बनाते हैं और बताते हैं आपको इसके लिए क्या चाहिए। आपको आपको चाहिए एक टेबल स्पून पाउडर्ड यानी आपको पाउडर किया हुआ गुड़ चाहिए, और उसमें एक गिलास ठंडा पानी ले लीजिए, नींबू का जूस ले लीजिए और एक चुटकी काला नमक ले लीजिए। अच्छा, आपको एक चीज बता दूं, ये जो गुड़ है वो ठंडे पानी में भी धीरे धीरे आप करते चलाते रहिए तो घुल जाता है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपको थोड़ा बहुत हीट की जरूरत है तो बहुत हल्का सा गुनगुना पानी कर लीजिए और बस उसमें गुड़ डालिए, वो डिजोल्व हो जाएगा हल्का सा चलाने पर। और उसके बाद उसमें आप एक गिलास चिल्ड वाटर डालिए, अच्छे से उसे चलाइए, उसके बाद इसमें लेमन जूस और नमक मिलाकर इसे बढ़िया पी जाइए। यकीन जानिए बिना शक्कर का यानी गुड़ का इतना अच्छा शरबत लगता है पीने में और आपकी गर्मी को भी शांत करता है।

90 वर्ष पूर्ण होने पर हार्दिक बधाई। आकाशवाणी की मधुर ध्वनि यूं ही जन जन तक ज्ञान, संस्कृति और प्रेरणा पहुंचाती रहे तथा सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का अपना ध्येय पूरा करती रहे, इसी आशा के साथ मैं SR बैनर्जी, पूर्व उप महानिदेशक आकाशवाणी, आकाशवाणी के परिवार तथा असंख्य श्रोताओं को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।

0: क्या है बदल, जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।
3: वेल, खरबूजा और तरबूज ऐसी चीजें हैं जो गर्मी में हम यूज करते हैं और हमें खा के बहुत मजा आता है। गर्मियों में अक्सर क्या होता है कि जब हम खरबूजा यूज करते हैं तो उसके जो बीज होते हैं वो हम उन्हें बेकार समझकर हटा के रख देते हैं, और कई लोग बीज रखते हैं और उसको छील के बकायदा पूरा स्टोर करते हैं और यूं भी खाने में उसे बहुत मजा आता है। लेकिन हम आपको बताते हैं, ये जो खरबूजे के बीज होते हैं उसके जो पल्प है उसको बेकार समझकर अगर आप फेंक देते हैं तो अब आप बिल्कुल भी मत फेंकिएगा, क्योंकि ये जो है वो शरीर को ठंडक देने वाला, न्यूट्रिशन देने वाला बेहतरीन शरबत इससे आप बना सकते हैं। तो बस आपका पेन पेपर तैयार है, मैं देख रही हूँ अपनी मन की आंखों से, और बस इंग्रेडिएंट्स आप नोट कीजिए। आपको क्या करना है, खरबूजे के बीज चाहिए पल्प के साथ, चीनी या शहद चाहिए स्वाद के अनुसार, और ठंडा पानी या फिर ठंडा दूध। जी हाँ, इसमें ऑप्शनल है, चाहे आप ठंडा पानी लीजिए या ठंडा दूध लीजिए। हाँ, जब ठंडा दूध लेंगे तो उसमें आप नींबू का रस ऐड नहीं करेंगे और पुदीने की पत्तियां नहीं ऐड करेंगे, काला नमक नहीं ऐड करेंगे, लेकिन जब ठंडा पानी आप लेंगे तो इसमें नींबू का रस रहेगा। ये भी ऑप्शनल है, अगर आपका मन हो तो लीजिए, ना मन हो तो ना लीजिए। पुदीने की पत्तियां और काला नमक आप स्वाद अनुसार ले लीजिएगा। अब आपको क्या करना है ये आप सुनिए कि इन बीजों से कैसे मजेदार शरबत बनाएं। ये जो आपके पके हुए खरबूजे को आपने काट कर इसके बीज के सारे बीज और पल्प आपको निकाल लेना है, और इन बीजों को और पल्प को एक मिक्सी में आपको डाल लेना है, और इसमें आपको क्या करना है कि एक दो चम्मच चीनी डाल लीजिए, पुदीने की पत्तियां डाल लीजिए और आधा कप पानी डालकर पीस लीजिए। अब क्या करना है, क्योंकि इसमें बीजों का छिलके हैं तो इसे आपको छानना है अच्छे से। छान कर आप बिल्कुल साफ सुथरा इसमें जूस निकाल लेंगे इसका, और उसके बाद इस छने हुए रस में ठंडा पानी मिलाइए। जब ठंडा पानी मिलाइए तो नींबू का रस, पुदीने की पत्तियां और काला नमक डालिए, और दूध मिलाइए तो दूध के साथ इसका ठंडा दूध मिलाइएगा और ठंडा ठंडा इसका आनंद लीजिएगा। तो ये जो खरबूजे के बीज अक्सर आप फेंक देते हैं, इनसे भी बहुत बेहतरीन शरबत तैयार होता है, और उसे खरबूजे का शरबत कहते हैं। तो भाई, इतने ढेर सारे शरबत मैंने आज आपको बता दिए, क्या क्या चीज़ें आपको लेनी है जिसके आपका शरीर बढ़िया ठंडा रहे इस गर्मी के मौसम में। क्योंकि भाई देखिए ना, तो बाहर सर ऊपर किया ही नहीं जाता, सर झुका के ही चला जाता, क्योंकि इतनी तेज धूप है कि बिल्कुल मन नहीं करता। तो कोशिश कीजिए कुछ ऐसी चीज़ें खाइए पीजिए जिससे आपका शरीर अंदर से रहे ठंडा।
4: Nice to have.

0: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है।

0: आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देवधामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
0: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

देखो देखो लिसनर, हम ये इतने शरबत लाए जी, बहुत ढेर सारे शरबतों की फेहरिस्त हो चुकी है और आप सोचेंगे खरबूजे की बात कर ली, तरबूज कहाँ गायब हो गया मैडम जी। चलिए भाई, खरबूजे के बाद तरबूज की बात कर लेते हैं। तरबूज बहुत प्यारा लगता है देखने में, जब आप अंदर से उसे काटते हैं रेड कलर का पार्ट, वाओ कितना जूसी होता है और कितना अच्छा लगता है। उसके आगे जो चीनी होती है वो तो लगता है बेकार है, ये कितने फ्रूट्स की जो चीनी होती है कितनी अच्छी लगती है, मीठापन। अब बात करते हैं कि आपको फ्रेश वाटरमेलन कूलर इसको कहा गया है, लेकिन आप कोई भी नाम दे सकते हैं और इसको इसलिए ये कहा गया है कि आपको कूल करता है इसलिए। और अब आपको क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, तो आपको जो सामग्री चाहिए वो है 1 कप क्यूब्ड तरबूज, ठीक है, क्यूब किए हुए तरबूज चाहिए, 2-3 पुदीने की पत्तियां चाहिए, नींबू का रस को ले लीजिए, चुटकी भर काला नमक, यानी काफ़ी सारी चीज़ें सेम है, बहुत ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी, बस तरबूज को ब्लेंड कर लीजिए, पुदीने की पत्तियां इसमें डाल लीजिए और इसे छानने के बाद लेमन जूस और काला नमक मिलाकर, इसके बाद बर्फ मिलाकर इसे सर्व कीजिए और ठंडे ठंडे तरबूज के जूस का आनंद लीजिए। इसके अलावा आपको बता देते हैं कि भाई एक चीज़ और होती है गर्मियों में जो मिलती है बेल, बेल का शरबत जो होता है, तो बेल बहुत ही फायदे की चीज़ होती है, आपके पेट के लिए बहुत मुफीद चीज़ है बेल। और आपको क्या करना है कि बेल लेना है और बेल में आपको पल्प निकाल के 2.5 ग्लास पानी में उसे थोड़ी देर सॉफ्ट करने के लिए रख देना है, करीब 15 मिनट तक भीगा रहने दीजिए और इसको उसी तरह निकालना है जैसे आप इमली के, जब इसको भिगोते हैं इमली को, उसके बाद उसके बीज निकाल के इमली का आप वो निकालते हैं, उसी तरह सेम प्रोसेस होता है कि इसको हाथों से मसल के इसका जो आपको पानी निकालना है यानी जो जूस निकालना है वो इसी तरह निकालना है, और इसके बाद इसको आपको छानना पड़ेगा ताकि किसी भी तरह की चीज़ ऐसी ना हो जो आपको जब आप पिए तो आपको दिक्कत करे। तो बढ़िया से इसे छान लीजिए, इसमें काला नमक, हल्की सी चीनी अगर आपका मन करे, वैसे ना भी मिलाइए तो काफ़ी है, काला नमक मिला लीजिए और इसे ठंडा करके बढ़िया से सर्व कीजिए, इसमें आप बर्फ के कुछ टुकड़े मिला दीजिए, फिर देखिए बढ़िया से शरबत तैयार हो गया और ये शरबत जो है वो भी आपको ताजगी देगा। साथ ही बेल का शरबत आप गर्मियों में यूं भी पीजिए क्योंकि ठंडा तो करता है, पेट की सारी बीमारियों की जो कहते हैं दूर भगाने की शक्ति होती है वो बेल में होती है। और अब मेरी नज़र गई इस घड़ी पर और ये मुझे बता रही है 12:54 हो गए, तो शिल्पी को अभी के लिए आपसे टाटा बाय बाय कहनी होगी क्योंकि नेक्स्ट प्रोग्राम होठों पे तेरी बात में एक बार फिर मैं रहूंगी आपके साथ। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड 200.7 FM रेनबो।

नमस्कार, दोपहर के एक बजे अब सुनिए मुख्य समाचार। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि गांवों के विकास से ही प्रदेश और राष्ट्र का विकास होगा। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 ग्रामीण भारत के समग्र उत्थान और आत्मनिर्भर गांवों के निर्माण की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। श्री मौर्य ने कहा कि यह अधिनियम केवल एक कानून नहीं बल्कि गांवों के कायाकल्प का महासंकल्प है। उन्होंने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे विकास की इस मुख्य धारा से जुड़कर गांवों को समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने में सहभागी बने। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शनिवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। उनकी पहली भारत यात्रा होगी। अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया कि रूबियो कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली की यात्रा करेंगे। नई दिल्ली से अमेरिकी दूतावास ने बताया कि रूबियो 26 मई को क्वाड समूह की बैठक में शामिल होंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे के दूसरे दिन आमजन, व्यापारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। राहुल गांधी ने लोधवारी में वीरापासी मूर्ति का अनावरण किया और बहुजन स्वाभिमान सभा में प्रतिभाग किया। आज अमेठी के गौरीगंज में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक का भी उनका कार्यक्रम है।

चित्रकूट के जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने बताया है कि जनपद में लगातार बढ़ रही गर्मी और हीटवेव के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। अस्पतालों में आने वाले मरीजों और तीमारदारों को गर्मी से बचाव के उपाय बताए जा रहे हैं, साथ ही ORS, ग्लूकोज और जिंक टैबलेट का वितरण भी किया जा रहा है। हीटवेव प्रभावित मरीजों के उपचार के लिए सुरक्षित विशेष वार्ड भी आरक्षित किए गए हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने अपील की है कि सुबह 10 से शाम 4 बजे तक अनावश्यक रूप से धूप में बाहर ना निकलें, पर्याप्त मात्रा में पानी और तरल पदार्थ लेते रहें और सिर ढक कर ही घर से बाहर जाएं। आईपीएल क्रिकेट में कल राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जॉयंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। वहीं गोरखपुर के रामगढ़ताल में चल रही 46वीं जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप में कल हीट्स मुकाबलों के पहले दिन दो वर्गों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ उत्तर प्रदेश शीर्ष पर रहते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इसी के साथ समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित होगा।

0: हेलो, मैं हूँ अरुषि निशंक, एक्टर, प्रोड्यूसर एंड सोशल एंटरप्रेन्योर. आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की.
1: आकाशवाणी की 90वीं सालगिरह पर हम कृतज्ञ हैं अपने श्रोताओं के, जिनका प्यार हमें एक सच्चे हमसफर की भांति अनवरत मिलता रहा. 100.7.
2: 1:03 का समय वायदे के मुताबिक शिल्पे हाजिर हो चुके प्रोग्राम होठों पे तेरी बात लेकर. और आज हम आपके होठों से कौन सी बात सुनना चाहते हैं वो हम आपको बताते हैं. भाई देखिए, ऐसा है कि हम जब बचपन में होते हैं तो बहुत मौज मस्ती करते हैं, यानी कुछ ऐसी बातें करते हैं जिसका हमें उस समय आभास नहीं होता है कि वो बात सही होगी या गलत होगी, लेकिन हम अपने आप को उस समय बहुत ब्रिलियंट समझते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसे बोल देते हैं बहुत कॉन्फिडेंटली कि हमें लगता है कि नहीं, हमने सब सही बोला है और सामने वाला हमें पकड़ेगा नहीं. ऐसा अक्सर होता है स्कूल्स में या माँ बाप से झूठ बोलते समय. तो मैंने सोचा कि चलिए चलते हैं एक बार बचपन की दुनिया में और आपसे जानना चाहते हैं कि कभी स्कूल में ऐसा हुआ है कि आपने कुछ ऐसा बहाना बनाया हो, आपका काम ना पूरा हो या कुछ ऐसी चीज़ जो आपने बना दी, आपने सोचा आपने बहुत परफेक्टली इसको करा क्रिएट, लेकिन आप पकड़े गए हैं. यानी कुछ ऐसे बहाने जो आपने तो बनाए बहुत सोच समझ कर, लेकिन आपको पकड़ लिया गया. अब वो बहाना टीचर से भी हो सकता है. इस अक्सर होता है कि बच्चे स्कूल जाने से पहले एक बहुत बढ़िया बहाना बनाते हैं और पेरेंट्स कभी कभी उस झांसे में आ भी जाते हैं. वो कोई बहाना या फिर पेरेंट्स से कुछ आपने ऐसी बात कही हो जो जिस पर आप पकड़ लिए गए हो और फिर बाद में आपको समझाया गया हो या थोड़ी बहुत मार भी पड़ गई हो. तो चलिए आज हमने सोचा इसी बारे में बात करते हैं और आप भी हमें बताइएगा कि ऐसे हादसे यानी ऐसे मौके आपके जीवन में कब आए. आप कहाँ बताएंगे ये मैं आपको बता देते हैं. fmakashwanilakhnow@gmail.com पर आप हमें मेल कीजिए और डिटेल में बताइए कि पूरा मामला था क्या असल में. यानी हम अपने लिसनर्स की थोड़ी स्टोरी भी बांटना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं ऑन एयर. सो अभी तो एक बढ़िया सा गाना प्ले कर देते हैं, उसके बाद इलाकाई खबरें होंगी और उसके बाद जारी रहेगा होठों पे तेरी बात का ये सफर आज शिल्पी के साथ 107 FM रेनबो पर.

0: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। सेंट्रल रीजनल काउंसिल की 26वीं मीटिंग कल छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में हुई। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की सदारत में हुई इस मीटिंग के बाद वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि मीटिंग में अवामी बहबूद, बेहतरीन इंतजामिया, मंतकाई तरक्की, इंसदाद तगजिये की कमी, स्कूल ड्रॉप आउट में कमी लाने, जिनसी जराइम में 100% कन्विक्शन यकीनी करने और रियासती सतही साइबर हेल्पलाइन जैसे अहम मौजू पर मानीखेज बातचीत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अवामी तहफ़ुज़ के मद्देनज़र रेबीज से मुतासर, लाइलाज बीमारी से मुतासर या बेहद खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन दिए जाने की इजाजत दे दी है। एक रिपोर्ट।
1: न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने कहा कि उन क्षेत्रों में कुत्तों को मौत का इंजेक्शन दिया जा सकता है जहां कुत्तों की आबादी खतरनाक स्तर तक पहुंच गई है और जहां कुत्तों के लगातार काटने और आक्रामक हमलों की घटनाओं से जन सुरक्षा खतरे में पड़ रही हो। न्यायालय द्वारा ये आदेश लावारिस कुत्तों के काटने और रेबीज के मामले से जुड़ी मीडिया की खबरों के बाद पिछले वर्ष 28 जुलाई को स्वतः संज्ञान के मामले में जारी किया गया।

0: है। इस बीच शीर्ष न्यायालय ने लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थल भेजने और नसबंदी करने के अपने पहले के आदेश को वापस लेने की मांग से जुड़ी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
1: रियासत में शदीद गर्मी से और लू से अवामी जिंदगी मुतासिर है। महकमा मौसमियात ने आने वाले दिनों में भी रियासत के ज्यादा से ज्यादा और कम से कम दर्जे हरारत में बतरीज इजाफे का इम्कान जाहिर किया है। रियासत के कई अजला में दर्जे हरारत 47 डिग्री सेल्सियस के पार जाने का कयास है। एक रिपोर्ट।
2: राज्य के बुंदेलखंड इलाके का बांदा जिला लगातार तीसरे दिन भी देश का सबसे गर्म क्षेत्र बना हुआ है, जहां अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। राज्य के अन्य हिस्सों में भी भीषण गर्मी से राहत नहीं मिली है और कई स्थानों पर दिन का अधिकतम तापमान 44 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। रातें भी असामान्य रूप से गर्म हो गई हैं और रात के समय भी तापमान 30 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है। पारा बढ़ने से आम जनजीवन पर तो असर पड़ा ही है, पशु पक्षी भी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। दिन चढ़ते ही सड़कें सूनी हो जा रही हैं और अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों की तादाद बढ़ गई है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए राज्य में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: शदीद गर्मी और लू के कहर को देखते हुए वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने जिला मजिस्ट्रेटों, महकमा सेहत, महकमा तवानाई और सभी मुतल्लिका राहत एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रहने के अहकाम दिए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 48.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हरारत के साथ बांदा पूरे मुल्क में सबसे गर्म जिले के तौर पर दर्ज किया गया। महकमा मौसमियात ने 21 मई तक रियासत के मशरकी और मगरबी हिस्सों में लू का रेड अलर्ट जारी किया है। महकमा मौसमियात के इंतबाह के बाद महकमा सेहत अलर्ट मोड में आ गया है। नायब वजीर ब्रजेश पाठक ने कहा है कि अस्पतालों में मुमकिन मरीजों की तादाद को देखते हुए एडिशनल बेडों का इंतजाम किया जाए। जिंदगी बचाने वाली दवाइयों समेत जरूरी अद्वियात का वाफिर जखीरा रखने के लिए कहा गया है। दरियास्तान जिला कानपुर शहर में जिला मजिस्ट्रेट ने सभी तालीमी बोर्डों के जरिए चलाए जा रहे प्री प्राइमरी से लेकर दर्जा 8वीं तक के सभी स्कूलों में फौरी निफास से 31 मई तक गर्मी की तातील का ऐलान किया है। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली में एक आला सतही मीटिंग में नीट यूजी के दोबारा इम्तिहान की तैयारियों का जायजा लिया। इम्तिहान के इनेकाद में पूरी ईमानदारी और शफाफियत की जरूरत पर जोर देते हुए जनाब प्रधान ने अहकाम दिए कि गुज़िश्ता इम्तिहान के अमल में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। जनाब प्रधान ने कहा कि दोबारा इम्तिहान सख्त हिफाजती कवानीन के तहत महफूज, बगैर किसी रुकावट के और पूरी तरह से पुख्ता तरीके से मुनक़िद किया जाना चाहिए। मरकजी सानवी तालीमी बोर्ड CBSE ने दर्जा 12वीं बोर्ड इम्तिहान 2026 की जांचशुदा कॉपियों की स्कैन की गई कॉपियों के लिए दरख्वास्त करने की आखिरी तारीख एक दिन और बढ़ा दी है। उम्मीदवार अब 23 मई तक अपनी दरख्वास्त जमा करा सकते हैं। और अमरोहा में गुज़िश्ता रात गजरौला थाना हलके में दिल्ली लखनऊ शाहराह 9 पर तेज रफ्तार कार को नामालूम गाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे हादसे में कार में सवार 4 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 2 दीगर जख्मी हो गए। मरने वालों में 3 अफराद मगरबी बंगाल के बाशिंदे बताए जा रहे हैं जबकि एक शख्स बरेली का रहने वाला था। हादसे में जख्मी दोनों अफराद को हायर सेंटर में दाखिल कराया गया है जहां उनका इलाज जारी है। दरियास्ता एक दीगर हादसे में आज अलग सुबह आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर हादसे में एक मुसाफिर फिर जहां भाग हो गया जबकि 20 दीगर जख्मी हो गए। यह हादसा तब पेश आया जब रोडवेज बस आगे चल रहे ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश में पीछे से उससे टकरा गई। सभी जख्मियों को सैफई PGI में दाखिल करा दिया गया है। मामले में जरूरी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।

1:16 पर इलाकाई खबरों के बाद स्वागत एक बार फिर आप सभी का। प्रोग्राम कौन सा है? होठो पे तेरी बात 100.7 FM रेनबो पर। शिल्पी आपके साथ है। और भाई देखिए, हमारे पास जो मेल आना शुरू हो गए, हमने आपसे कहा था मेल कीजिए। बचपन में आपने कई बार झूठ बोला होगा। हम सोचते हैं अपनी गलती को बचाने के लिए झूठ बोल लें। बचपन में तो इतनी समझ होती नहीं है और ऐसे झूठ बोले जाते हैं जो पकड़ लिए जाते हैं। तो हमने आज अपने लिसनर से ये कहा कि ऐसे

जो आपने झूठ बचपन में बोले हैं इनोसेंट से और आप पकड़ लिए गए, तो आपकी छोटी मोटी पिटाई हुई है या फिर आपको समझाया गया, तो उसके बारे में बताइए। सुल्तान रजा साहब का मैसेज आ गया है, अस्सलाम वालेकुम। तो वालेकुम सलाम लिख रहे हैं, मैं विषय नहीं सुन पाया, अब आपने सुन लिया होगा और आप हमें बताइए कि आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। और लिखा है, जब तक आप गाना प्ले कर चुकी थी, कुतुब खाना सब्जी मंडी बरेली से है ये सुल्तान रजा, इकबाल रजा, जीशान रजा, अफजल रजा, मुनीश रजा, सादिक रजा। तो चलिए, और साथ ही इन्होंने लिख के बहुत प्यारी सी बात भेजी है कि मन की सोच सुंदर है तो संसार सुंदर नजर आएगा। जिंदगी में कभी भी अपने किसी भी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। बात आपने बहुत अच्छी लिखी सुल्तान रजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप टॉपिक के बारे में भी लिखकर भेजिए। इसके बाद हमारे पास विकास जी का मैसेज आया है, हेलो मैम चरण स्पर्श। अरे विकास जी, आप तो हमारे लिसनर हैं और आप हमेशा हमें मैसेज करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गांव सलीद, तहसील सफीपुर, जिला उन्नाव से कार्यक्रम सुन रहा हूँ मैम। आप कार्यक्रम में आए, बहुत खुशी की बात है विकास जी, हमें और खुशी होती, उसके लिए तो शुक्रिया आपका। अगर आप हमें इस टॉपिक के बारे में भी कुछ लिख कर भेजते। सुधाकर जाधव जी का मैसेज आ गया है, सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे जाधव, कुमार संचित, कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, कुमार सर्वत, कुमार सानवी, कुमारी सानवी, कुमारी कल्पना देशमुख, और ये समस्त राजे जाधव देशमुख वायल परिवार है, ग्राम पंचायत कालेगांव जफराबाद से ये लिख रहे हैं, प्रेम पूर्वक नमस्कार। और साथ ही इन्होंने बहुत बड़ा सा एक हमें मेल किया है कि मैंने जिंदगी में पांचवी कक्षा में एक बार मास्टर जी को झूठ बोला था। मास्टर जी बोले कल क्यों स्कूल नहीं आए, तो मैंने बोल दिया कि सर मेरे घर पापा मम्मी का झगड़ा हो गया था और इसलिए मैं स्कूल नहीं आया। दूसरे दिन मास्टर जी हमारे घर आए और हमारे पिताजी को पूछा कि आपने कल झगड़ा क्यों किया अपने मम्मी आप दोनों ने, यानी मेरे मम्मी पापा ने, इसका बच्चों पर गलत असर पड़ता है। तो पिताजी ने बोला हमने तो कोई झगड़ा किया ही नहीं। फिर मास्टर जी बोले तो आपके बच्चे ने बोला कि आपकी मम्मी और पापा में झगड़ा हो गया है, तो आप दोनों में इस तरह वो कल स्कूल में नहीं आया। तो उसी दिन इनका झूठ पकड़ लिया गया और उस दिन से इन्होंने कसम खाई कि ये कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। तो अपने गुरुजी से भी इन्होंने कभी झूठ नहीं बोला और अपने माता पिताजी से भी झूठ बोलना छोड़ दिया। तो भाई आपने बचपन में ये सबक सीख लिया, बहुत अच्छी बात है, और आपने इतना लंबा बढ़िया सा मेल किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुलफशा सिद्दीकी जी का मेल आ चुका है संडीला से, गुड आफ्टरनून लिख रहे हैं। सो गुड आफ्टरनून गुलफशा, कैसी हैं आप? लिखा है मैम, मैं एक बार मुझे बहुत मार पड़ी थी। अच्छा किस लिए? तो किस्सा ये है कि जब हम छोटे थे तब हमारे घर पर हलवा बना था चने की दाल का। गुलफशा एक तो टाइम 1:19, उस पर से आप ये खाने पीने की बात कर रही हैं, मेरे मुंह में पानी आ गया तो मैं बोलूंगी कैसे। चलिए खैर आपकी बात पर मैं पढ़ती हूँ आपका पूरा मेल। तो चने की दाल का सूजी का बहुत ज्यादा बनता था, तो इन्होंने क्या किया खाली करती थी तो मैं क्या करती थी कि उसमें जो भी मेवा ऊपर से डाला जाता था वो चुरा कर मैं जब भी खा लेती थी, और अम्मा कहती थी ये किसने खाया, तो सबसे पहले बोल देती थी कि सारा इल्ज़ाम अपने छोटे भाई को लगा देती थी, छोटे भाई बहन को बता देती थी कि ये लोग खा जाते हैं। एक दिन इनकी अम्मी ने पकड़ लिया इनको रंगे हाथ, देख लिया कि ये जो है हलवे पर से सारे जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं ये खा रही हैं। उसके बाद आज भी इनको याद है कि इनको जो है थोड़ी सी देख लिया था अम्मी ने, और तो डाटा भी ज़रूर होगा। और उसके बाद फिर कह रही है अब मैं अपने बच्चों को भी बताती हूँ कि मैं ऐसा करती थी। तो गुलफशा आप करती थी, अब तो अभी आपकी आदत है कि बच्चे आपके करते हैं तो उनको क्या बताती हैं, आपने नहीं बताया कि आपके बच्चे अगर ऐसा करते तो आप क्या कहती हैं। एनीवेज बहुत प्यारी सी चीज़ है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बच्चों को कोई बढ़िया सी चीज़ बनती है तो बच्चों को यूँ भी बहुत मज़ा आता है कि आज तो कुछ अच्छा बना है और आज तो हम खाएंगे पक्का, चाहे जो भी हो, चाहे जितना मम्मी पापा दे दें, लेकिन वो जो चुरा के खाने का मज़ा होता है वो दूसरा होता है शायद। और देखिए हमारे पास मेल आ गया है, ये कौन है हम बता दें, पहले इनके हम पूरा पढ़ते हैं। लिखा है कि जब हम स्कूल जाते तो मास्टर जी बहुत मारते थे, इसलिए हमारा कहना है कि आज मारने वाले मास्टर जी ना आए। बस इतनी सी बात आपने लिखी। रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से रामराज, राजभानु, शंकर भैया, पप्पू पासी, मनीष, नीरज, बधु, बजरंगी। तो भाई काका जब हम स्कूल जाते तो मास्टर बहुत ही मारते थे, इसलिए हमारा कहना है कि आज मारने वाले मास्टर ना आए। तो इसके पीछे की स्टोरी आपने नहीं बताई हमें रामराज जी, अगर वो बताते तो और हमें मजा आता। तो चलिए अभी

मोर स्टोरी पढ़ेंगे लोगों की, क्योंकि मेल्स हमारे पास लगातार आ रहे हैं और हम बता देते हैं उन लिसनर्स को जो नहीं सुन पाए हैं, जैसे कि सुल्तान रजा साहब। तो भाई हम फिर से बता देते हैं कि आपका आज का टॉपिक ये है कि बचपन में हमने अक्सर ऐसे झूठ बोले होंगे जिसमें हम पकड़ लिए गए। अब होता तो बचपन बहुत ही प्यारा सा है, बहुत ही ऐसा होता है इनोसेंट सा। तो उसमें हम लोग को लगता है कि हम बहुत एक्सपर्ट हैं, लेकिन हमसे बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं जो बहुत स्मार्ट हैं हमसे, और ये हम भूल जाते हैं और इसीलिए सारी दिक्कत होती है। तो बचपन में आपने ऐसी कुछ मज़ेदार बातें बताइए, शेयर कीजिए कि हम भी आपके साथ उन बातों को तमाम लिसनर्स तक पहुँचाएँ।

जी मोनू सेठ जी का मेल आ गया है और ये लिख रहे हैं, बचपन याद दिलाकर रुला दिया भाई आपने। और बचपन जहां हम आजाद थे, कोई परेशानी नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई टेंशन नहीं, सिर्फ खेलना और माँ की लोरियों के साथ सोना। अब लिख रहे हैं क्लास 3 की बात है, जब हम तख्ती में लिखते थे, कई दिन स्कूल तो घर से निकल जाते थे लेकिन स्कूल नहीं, खेलने चले जाते तो ऐसे ही चलता रहता था। फिर मास्टर साहब को पता चल गया, फिर क्या नाना जी के कहने पर मास्टर साहब स्कूल में हमें बुलाया उन्होंने, और फिर जो तख्ती थी वो तख्ती पर हम खूब बरसी, झूठ कभी भी दब नहीं सकता है। भाई ऐसा हो जाता है क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं मोनू जी, और पढ़ाई लिखाई क्योंकि बहुत ज़रूरी होती है, बच्चों को लगता है कि अरे ये इतना सब मेहनत क्यों करें। और देखिए वीके गुप्ता जी यानी विनोद कुमार गुप्ता का गोला गोखरनाथ से मेल आ गया है, गुड आफ्टरनून लिख रहे हैं। सो गुड आफ्टरनून विनोद जी, लिख रहे हैं बचपन में हम अक्सर ऐसे बहाने बनाते थे कि सुबह उठते बिस्तर पर लेटे रहना और कहना मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा, और फिर पेरेंट्स क्या कहते थे, चाहे जितना दर्द हो तुम स्कूल जाओ देखा जाएगा। क्योंकि हमको लगता है हमें बहुत कुछ आता है लेकिन हम भूल जाते हैं कि ये जो बड़े बड़े बैठे हैं हमारे माता पिता, शायद इन्होंने भी बचपन में ऐसा कुछ किया होगा ना, मुझे माफ़ कीजिएगा, हो सकता ना भी किया हो लेकिन होता है।

बचपन ऐसा ही होता है। शिव पूजन लाल जी का मेला आ गया है। विलेज सन एक बार लखीमपुर खीरी से टॉपिक, एक बार जो टॉपिक है उस पर ये कहना चाहते हैं। एक बार मेरे पापा से के पॉकेट से पैसे चोरी हो गए थे। पूछने पर घर के सभी सदस्यों ने कहा मैंने नहीं लिए, और मेरा भी जो जवाब था वो सेम रहा। थोड़ी देर बाद एक कुछ चटपटी चीज़ खाने वाला कोई आया, और उसके बाद मैंने उसे खाया और 500 के नोट देते हुए मेरे पिताजी ने देख लिया, और फिर मुझे इतनी मार पड़ी कि देखिए कम से कम मैंने झूठ बोलना कम कर दिया। हाँ, कभी कभी बोलना पड़ जाता है। चलिए भाई, और भी लोगों के मेल आ रहे हैं और उनको भी हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बढ़िया सा गाना सुन लेते, क्या कह रहे हैं आप? चलिए प्ले करते हैं एक ट्रैक आपके लिए, खासतौर पर सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

जी, तो भाई मेल्स का सिलसिला लगातार जारी। विकास जी का मेल आ गया। उन्होंने लिखा है कि मैम, ऐसा होता था कि जब मेरा मन नहीं था स्कूल जाने का, तब मैं अपने दोस्तों से कहता था कि तुम आगे चलो, हम अभी आ रहे हैं, और बहाना करके हम स्कूल नहीं जाते थे। और मेरी जो बहन प्रिया थी, वो घर में शिकायत कर देती थी पापा से, फिर हमको भाई बाद में बहुत डांट पड़ती थी, कभी कभी मार भी पड़ती थी। और अमन नवाब जी का मेल आ गया है। हेलो डियर दी, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं अमन? हाई गर्मी लिख के भेज रही हूँ और मैं यहाँ पे क्या करूँ, आपकी गर्मी को महसूस कर रही हूँ कि भाई आप कितना परेशान है गर्मी में। लेकिन मैंने कहा ना कि मैं आपको ऐसे ऐसे गाने सुनाऊंगी कि थोड़ा गर्मी छू मंतर हो जाएगी। इन्होंने लिखा, मैंने अनगिनत झूठ बोले, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा झूठ पकड़ लिया जाता है और ऐसे में मुझे हंसी भी आ जाती है। जी हाँ, कुछ दिन पहले इन्होंने दादाजी का 500 का नोट सोफे के नीचे गिर गया और दादाजी ने मुझसे बोला निकालने को, तो मैंने हाथ में पीछे छुपा लिया और बोल दिया नहीं मिला। दादाजी ने बोला हाथ में क्या, दिखाओ, तो बस हंसी आ गई और चोरी पकड़ ली गई। बचपन में मैं जब झूठ बोलती तो मेरी बुआ मेरी झूठ पकड़ लेती थी, वैसे बोलती थी हंसी आई आई नाक पर आई और हंस देती थी। अमन नवाब संडीला से आपका मेल आया, आपका शुक्रिया और बहुत बढ़िया सा प्यारा सा आपने हमसे शेयर किया। और ये रोशनी रावत जी का मेल आ गया है। शिल्पी मैम कैसी हैं आप? भाई बहुत अच्छी हूँ रोशनी।

हमें लगता है हम आपसे सामने बिल्कुल बैठ के बातें कर रहे हैं, और मैं इमेजिन भी कर लेती हूँ रोशनी बैठी है और मुझसे पूछ रही, और शिल्पी मैम जी गुड आफ्टरनून, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच लिखने के लिए कि प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है. आज आपने जितने प्रकार के शरबत बनाने की विधि बताई है, मैं बनाने की कोशिश करूंगा. अरे वाह क्या बात है. और ये कौन सी रोशनी रावत है, ग्राम व पोस्ट बेमना, तहसील सफीपुर, जिला उन्नाव से, चंडीगढ़ से प्रोग्राम सुन रही है. टॉपिक के बारे में कुछ याद नहीं आ रहा, क्या लिखूं? मैंने भी बहुत सारे झूठ बोले होंगे, अब तो झूठ ना के बराबर बोलती हूं. अगर किसी को सच नहीं बताना होता है तो मैं झूठ बात को हंसकर टाल देती हूं. ये भी अच्छा तरीका है. अजीत कुमार जी का मेल आ गया.

0: मैं कुछ याद नहीं आ रहा क्या लिखूं। मैंने भी बहुत सारे झूठ बोले होंगे, अब तो झूठ ना के बराबर बोलती हूँ। अगर किसी को सच नहीं बताना होता है तो मैं झूठ बात को हंसकर टाल देती हूँ। ये भी अच्छा तरीका है। अजीत कुमार जी का मेल आ गया है और ये आया है गांव रसूल वकिया हसनगंज। 9 साल की उम्र होगी, घर से पैसे नहीं मिलते थे और घर भी कच्चा था, तो क्या करते थे ये, रोज गेहूं चुरा के दुकान पे बेच देते थे। एक दिन इनकी मम्मी ने इन्हें पकड़ लिया, बहुत पिटाई हुई, दुकान वाले से भी लड़ाई कर दी मम्मी ने, वो आज दिन बहुत याद है। और शायद अब झूठ नहीं बोलते होंगे, इस चीज़ से आपकी ज़िंदगी बदल गई होगी और अब आप झूठ नहीं बोलते होंगे। देखिए आपकी मम्मी ने कितना अच्छा मैसेज दिया कि चाहे कितनी भी तकलीफ हो लेकिन हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए, हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। और ये बात सही है, कभी कभी मजबूरी में बोलना पड़ता है, लेकिन ये है कि ऐसा झूठ जो किसी के लिए बहुत नुकसानदायक हो वो चीज़ बहुत ही ख़राब होती है। किसी का अगर हम झूठ बोल के नुकसान करते हैं तो वो बुरी बात होती है। तो वैसे कोशिश, कभी कभी लोगों की आदत पड़ जाती है कि मुंह से झूठ ही निकलता है, तो कोशिश कीजिए कि सच बोलिए, क्योंकि सच्चाई अगर आप किसी के सामने बयां कर देते हैं तो बात उस समय जरूर बिगड़ती है लेकिन आगे के लिए आसानी हो जाती। और हाँ, जो आप दोनों के मैसेज हैं यानी और भी हमारे लिसनर्स के मैसेज आ रहे हैं वो हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे।
1: हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
2: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए 5 यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देवधामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें, विजिट करें registration.tourist.uk.gov.in।
2: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

प्रोग्राम चल रहा है होटल पे तेरी बागात 107 एफएम रेनबो पर, शिल्पी आपके साथ है और हमारे साथ हमारे लिसनर्स के ढेर सारे मेल, बहुत ही बहुत धन्यवाद कहते हैं क्योंकि आप हमें इतने प्यार से इतनी मेहनत से मेल जो लिखकर भेजते हैं उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया कहते हैं। और ये मेल आ गया है हमारे पास ग्राम व पोस्ट मुंगीसापुर कानपुर देहात से रमेश्वर कठेरिया, उमा कांति कठेरिया, कमलेश जी, पुत्र वधु निशा और प्रज्ञा कठेरिया, वेद बाबू कठेरिया। और इन्होंने लिखा, होठों पे तेरी बात कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता शिल्पी जी को सादर नमस्कार। प्रोग्राम आप बराबर सुन रहे हो तो मेरा भी प्यार भरा आपको नमस्कार। और लिखा है, बहन शिल्पी प्रोग्राम आप अच्छी प्रस्तुति के लिए धन्यवाद, धन्यवाद आपको भी दिल से। और लिख रहे हैं, एक बार स्कूल में काम नहीं था तो हमने झूठ बोल दिया कि हमें बुखार आ गया है। स्कूल का काम इन्होंने नहीं किया था, इनका पूरा नहीं था, फिर इन्होंने झूठ बोल दिया हमें बुखार आ गया है। और फिर उसके बाद मास्टर साहब को जब पता चला तो बहुत पिटाई हुई। और बहुत पिटाई के बाद क्या वो हम नहीं पूछेंगे, उसके बाद शायद आपकी आदत छूट गई होगी, बुखार आता तो भी नहीं कहते उनकी बुखार आ गया। दीदी जी को नमस्ते, लकी वर्मा उधौरी बाराबंकी से। जब बचपन में कुछ चुरा के खा लेते थे तब चोरी पकड़ी जाती थी। ये तो बात होती, मैंने भी चुरा चुरा के चीजें खाई, ऐसी बात नहीं है, लगता था कि कुछ नहीं होगा। और मैं आपको बताती हूँ, मैं भी शेयर करती हूँ कि मैं जब अपनी मासी के घर जाती थी तो मैं और मेरा मासी का बेटा दोनों मिलकर खूब, जब मेरी मासी सो जाती थी दोपहर में थोड़ी देर, तो हम लोग किचन अटैक करते थे और सब चीज़ें ढूंढ ढूंढ के हम लोग खा लेते थे। उसके बाद मासी सोचती थी शाम को इन बच्चों को निकाल के दे तो देखती थी ऑलरेडी पहले ही चीज़ें गायब हो चुकी हैं। फिर हम लोग भी डांट पड़ती थी, मार भी पड़ती थी कभी कभी। जी सुल्तान रजा जी, आप आ गए वापस। और आपने लिख दिया कि जब बचपन में स्कूल जाया करते थे तो हमारा पढ़ने का मूड बिल्कुल नहीं होता था, और फिर घर वालों से कहा कि स्कूल में छुट्टी 3 दिन की पड़ी और जबकि स्कूल खुले रहते, और आपने कह दिया छुट्टी पड़ गई। फिर जब मम्मी स्कूल गई और माँ साहब से पूछा कि माँ साहब ने क्या छुट्टी है, उन्होंने कहा नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। फिर क्या था, मम्मी ने बिल्कुल घर पर हमें बहुत मारा, बहुत मारा। और उसके बाद क्या हुआ क्या बताएं, लेकिन उसके बाद से शायद इन्होंने झूठ बोलना छोड़ दिया होगा। तो भाई अभी कुछ और मेल्स हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे, और ये जो मेल्स पढ़कर और मज़ेदार बातें सुनकर आज कसम से बहुत मज़ा आ रहा है। लग रहा है सब लोग अपने बचपन की दुनिया में चक्कर लगा लगा के ढूंढ ढूंढ के चीज़ें ला रहे हैं। तो और भी लोग हों जो इससे जुड़ना चाहते हैं हमें मेल कीजिए। आपको बता दें FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर आप मेल कीजिए और बताइए आपके क्या एक्सपीरियंस हैं।

देखिए हमारे पास मेल बहुत दूर से आया, महेंद्र दीपन जी का, हमारे रेगुलर लिसनर हैं, और इन्होंने लिखा है, आदरणीय आरजे शिल्पी मैम जी सादर प्रणाम। अरे भाई आपको भी प्रणाम। और लिख रहे हैं, मैं महेंद्र दीपन गौरूड़ जिला नागौर राजस्थान से FM रेनबो पर बेहद खूबसूरत प्रोग्राम होठों पर तेरी बात सुन रहा हूँ। आज के विषय को सुनकर मुझे अपने बचपन की घटना याद आ गई जिसने मेरी मासूम सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। आज मैं अपनी आप बीती आप सभी श्रोताओं के साथ साझा करना चाहता हूँ। ये लिख रहा है, ये उन दिनों की बात है जब मैं स्कूल में पढ़ता था और बहुत गर्मी का मौसम था। हमारे एक पड़ोसी ने अपने खेत के चारों तरफ नए पौधे लगाए थे। एक दिन जब मैं स्कूल से घर लौट रहा था तो मैंने देखा कि तेज हवा और उड़ती रेत की वजह से वो छोटे छोटे पौधे मिट्टी में दब रहे थे। तो मुझे लगा इन बेजुबान पौधों की तकलीफ तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ, तो मैं घर जाना भूल गया और बैठकर वहीं पौधों को रेत से बाहर निकालने और उन्हें बचाने में लग गया।

लेकिन किस्मत का खेल देखिए, पड़ोसी आंटी ने मुझे देख लिया और उन गलत फहमी हो गई कि मैं पौधे बचा नहीं रहा हूँ बल्कि उन्हें उजाड़ रहा हूँ। उन्होंने तुरंत जाकर मेरे पापा से शिकायत कर दी। पापा ने बिना कुछ सोचे समझे उसी धूप में मुझे पेड़ से बांधकर पीट दिया। बाद में जब आंटी ने पौधों को सही सलामत देखा तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वो दौड़ते हुए आए और पापा से बोला, मुझसे गलती हो गई, मैंने बिना देखे बच्चे को पिटवा दिया। उस दिन धूप और मार के दर्द के बीच मेरे बाल मन को गहरी ठेस लगी और मैंने सोच लिया कि भलाई का जमाना नहीं रहा। और आपके शो के माध्यम से बस इतना कहना चाहता हूँ कि कभी कभी हमारी आंखों देखा सच नहीं होता। किसी को सजा देने से पहले पूरी बात जानना बहुत जरूरी, नहीं तो किसी बच्चे का भलाई पर से हमेशा के लिए भरोसा उठ जाएगा। और आगे लिखा है कि शानदार ढंग से प्रस्तुत करने के लिए आपको बधाई और आप मेरे संदेश को प्रोग्राम में जरूर शामिल करेंगे। तो भाई शामिल हो गया आपका ये मेल महेंद्र द्वीपंजी राजस्थान से। और ये मत सोचिए कि भलाई का जमाना नहीं रहा। अगर हर कोई इस तरह सोचने लगेगा तो आप ये सोचिए कि फिर दुनिया कैसे आगे बढ़ेगी, है ना। तो आप बिल्कुल भी निराश ना होइए, आज आप बड़े हो गए, अपने बच्चों को भी ये सबक दीजिए और साथ ही उन तमाम लोगों को यानी अपने समाज में भी ये संदेश दीजिए कि जो आपने हमें लिखा लिसनर से शेयर किया कि कभी भी जो आंखों देखी बात है पूरी सच नहीं होती, पूरी सच्चाई जानने के बाद ही रिएक्शन देना चाहिए। राधे श्याम जी कासगंज से, कैसे हैं आप? गुड आफ्टरनून लिखा, सो गुड आफ्टरनून शिल्पी जी, और आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्रोग्राम में सॉन्ग्स मस्त प्ले हो रहे हैं। हम वैसे तो मैं झूठ नहीं बोलता क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता किसी की जान की बात आ जाए तो झूठ बोलना भी सही है। ये बात तो सही है कि कभी कुछ ऐसी परिस्थितियों में झूठ बोलने की परमिशन है, यानी झूठ बोलिए, लेकिन अगर आपको किसी की जान बच सकती है तो बोलने में कोई हर्ज नहीं। ऐसा ही लिखा वसंत कुमार सिन्हा जी ने कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल सही, लेकिन एक झूठ बोलने से किसी की जान बचे तो बोलने में कोई हर्ज भी नहीं है, लेकिन झूठ बोल से बच के रहें तो अच्छा है। क्योंकि काट की हांडी एक ही बार चूल्हे पर चढ़ती है, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से और खुशबू आ नहीं सकती कभी भी कागज के फूलों से। वसंत कुमार सिन्हा जी, रेखा देवी शॉ, अजय कुमार गुप्ता, रिमी, तनुश्री गुप्ता, अभय कुमार सनातनी जी, आप नाम शामिल करने के लिए हमें धन्यवाद भी दे दिया है। लिखा है आपका शुक्रिया, धन्यवाद दे दीजिए। धन्यवाद आपका भी कि आप हमें इतने मन से खत लिखते हैं, यानी ये खत ही लिखना हुआ जो अब मेल के थ्रू हम तक पहुंचता है। और भाई 1:49 हो गए और 1:49 पर एक गाना आपको भेज रहे हैं, एंजॉय कीजिए।

यहाँ पर समय अब बहुत कम है, 1:54 हो गए हैं। वसंत कुमार सिन्हा जी का मेल हम पढ़ चुके थे लेकिन हम एड्रेस बताना भूल गए, दमदम एयरपोर्ट कोलकाता से। तो भाई एड्रेस बता दे, वकील अहमद जी का मेल आया है। सलाम वालेकुम, आपकी आवाज बहुत अच्छी लगती है, शुक्रिया वकील अहमद जी। और लिखा है कि हमने ऐसा नहीं किया, कुछ लोग स्कूल जाते थे और रास्ते से घूम आते थे, जब उसके मम्मी पापा बहुत हड़काए जाते थे। इस समय महेबागंज पुल पर है लखीमपुर, वकील अहमद मंसूरी कटका हथुरी जिला सीतापुर, साहिबा अंसारी शाजी अंसारी क्षमा परवीन रिंकी पिंकी महक अंसारी। चीज कुछ कनेक्ट नहीं हो रही, हमें लग रहा है कि कहीं पर आप हैं और चीजें सही से लिख नहीं पाए। एम के राज जी, शिल्पी मैम जी को शुभ दोपहरिया, गांव भानपुर हरौवा जिला लखीमपुर खीरी से लिख रहे हैं, शुभ दोपहरिया तो आपको है ही है। साथ ही कुछ लाइनें लिख दी, बचपन की याद आ गई है। लिखा है, होठों पे हंसी थी आंखें में शरारत, बस्तर टांगे घूमते थे पूरे भारत, पढ़ाई से भागना लगता था खेल, अब समझ आया था वही असली मेल, स्लेट पे अक्षर दवात में स्याही, मास्टर जी की छड़ी भी लगती थी गवाही, मिस करने को क्लास पेट दर्द का बहाना, पर आधी छुट्टी की घंटे थे सबसे पुराना खजाना, टाट पट्टी वाली क्लास दोती खास, इमली के पेड़ तले लगती थी आस, तब जो डांट थी वो चुपती थी, आज वही सबसे मीठी लगती थी, बचपन गया उड़ पर यादें रह गई, ब्लैक बोर्ड की तकदीरें दिल में कह गई, पढ़ाई अब बोझ लगती थी यार, अब जाने वो ही थी जिंदगी की पतवार। बिल्कुल सही बात और बहुत बहुत बहुत अच्छा आपने लिखा, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुनीश कुमार राज जी। और अब क्योंकि प्रोग्राम हमारा ख़त्म होने पर है, आप सब ने मेल भेजे, दिल से इसमें पार्टिसिपेट किया, इसके लिए आपको दिल से ढेर सारा शुक्रिया। प्रोग्राम होठों में तेरी बात को प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं और आपको एक गीत के साथ छोड़े जा रहे हैं, आप इन्जॉय कीजिए ये गीत और साथ ही नेक्स्ट प्रोग्राम जो आपका बहुत ही पसंदीदा हॉट मेल, उसमें मुलाकात होती है एक बार फिर मेरी आपसे। सो अभी के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड 100.7 FM रेनबो।

0: before when reports last came in. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome in a short while from now to boost economic cooperation. Prime Minister Modi and Giorgia Meloni outline roadmap for India-Italy strategic partnership, highlight several economic initiatives in a joint article. DRDO completes trials of drone-launched unmanned precision-guided missile. Defence Minister terms it a strategic milestone. Supreme Court rejects petition challenging centre's decision to undertake caste enumeration. Severe heatwave grips north and central India. Temperature breaches 44 degree mark at several places. And in IPL cricket, hosts Kolkata Knight Riders to take on Mumbai Indians at Eden Gardens. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में भारत इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलों का उल्लेख किया। डीआरडीओ ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल यूएलपीजीएम MP3 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी। कई स्थानों पर तापमान 44 डिग्री के पार। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के साथ साथ मौजूदा वैश्विक परिदृश्य पर भी व्यापक बातचीत करेंगे। दोनों देशों के बीच आज कई महत्वपूर्ण समझौते होने की संभावना है। दोनों नेता कई विषयों पर अपने विचार साझा करेंगे। आज की बातचीत से भारत इटली की मित्रता को और बढ़ावा देने पर चर्चा की जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के महत्व को दर्शाने के लिए रोम में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वे इटली के प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने संयुक्त लेख में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। दोनों नेताओं ने कहा कि ऐसे समय में जब वैश्विक व्यवस्था में गहन परिवर्तन हो रहे हैं, भारत इटली साझेदारी उच्चतम राजनीतिक और संस्थागत स्तरों पर नियमित आदान प्रदान से निर्देशित है। दोनों नेताओं ने कहा कि उनका सहयोग इस साझा समझ को दर्शाता है कि 21वीं सदी में समृद्धि और सुरक्षा राष्ट्रों के नवाचार करने, ऊर्जा परिवर्तन का प्रबंधन करने और कूटनीतिक संप्रभुता को मजबूत करने की क्षमता पर निर्भर करेगी। दोनों नेताओं ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता दोनों दिशाओं में व्यापार और निवेश के प्रवाह को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियाम पावलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की।

0: प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशक से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यूबैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा, रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस अत्यंत उपयोगी बैठक में दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। ये समझौता ज्ञापन भारत के राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय, कोरिया राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना सहयोग के बीच हुआ। रक्षा मंत्री ने कहा कि वे दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए उत्सुक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश ने आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये देश के रक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
1: ये परीक्षण आंध्र प्रदेश में कुरनूल के पास DRDO की टेस्ट रेंज में एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर दोनों तरह से किए गए। इस दौरान मिसाइल प्रणाली को एक एडवांस्ड इंटीग्रेटेड ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से संचालित किया गया। इन परीक्षणों से विभिन्न परिस्थितियों में मिसाइल की सटीक मारक क्षमता, विश्वसनीयता और प्रभावशीलता प्रदर्शित होती है। इस मिसाइल को हैदराबाद के रिसर्च सेंटर इमारत ने DRDO के साथ मिलकर विकसित किया है। पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित ये मिसाइल आत्मनिर्भर भारत पहल की बढ़ती उपयोगिता को दर्शाती है। इससे देश के भीतर रक्षा प्रणाली को और सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी। विजयवाड़ा से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ULPGM-V3 मिसाइल के सफल विकास परीक्षणों के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रक्षा सह उत्पादन भागीदारों और उद्योग जगत की सराहना की है। उन्होंने टैंक रोधी भूमिका के लिए हवा से जमीन मोड और ड्रोन, हेलीकॉप्टर तथा अन्य हवाई लक्ष्यों के लिए हवा से हवा मोड में इसकी प्रभावशीलता के बारे में जानकारी दी। श्री सिंह ने इसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के तहत जाति आधारित जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका आज खारिज कर दी। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। पीठ ने कहा कि इस तरह के आंकड़े एकत्र करने में कोई बुराई नहीं है और मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें सरकारी कानूनी पैनलों और विधि अधिकारियों की नियुक्तियों में महिला वकीलों के लिए 30% आरक्षण की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक ट्रस्ट की याचिका पर नोटिस जारी किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता उत्तर बंगाल का सर्वांगीण विकास है। उन्होंने कहा कि वो विकास परियोजनाओं की समीक्षा और सरकारी योजनाओं के प्रभावों की निगरानी के लिए हर महीने एक बार उत्तर बंगाल का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर बंगाल विकास मंत्री, उत्तर बंगाल सचिवालय, उत्तर कन्या सिलीगुड़ी में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक जनता दरबार का आयोजन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जनता दरबार के बाद दिन में 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक अधिकारियों के साथ प्रशासनिक समीक्षा बैठक होगी और उसके बाद उसी दिन दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक विकास मंत्री क्षेत्र के सभी सांसदों और विधायकों के साथ विकास कार्यों को गति देने के लिए समीक्षा बैठक करेंगे। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि सरकार स्मार्ट विनियमन और उत्तरदायी शासन के माध्यम से बाजार में निष्पक्षता बढ़ाकर नियामक बोझ को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व मापन दिवस 2026 के अवसर पर वर्चुअल रूप से आयोजित एक

0: कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये परिकल्पना की है कि भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता वैश्विक मानकों और पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र के महानिदेशक नवीन कुमार सिंह ने आज कहा कि देश के डिजिटल अर्थव्यवस्था से वर्ष 2030 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में लगभग 20% के योगदान देने की उम्मीद है। वे नई दिल्ली में फिक्की के साइबरकॉम के 7वें संस्करण के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मध्य प्रदेश के भोपाल में नोएडा की 33 वर्षीय महिला की संदिग्ध मौत का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर त्वरित निष्पक्ष और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। महिला आयोग ने 7 दिन में विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट भी मांगी है। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबू धाबी से काम कर रहा था। पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी का अंतिम संस्कार आज हरिद्वार में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन को राज्य के लिए अपूर्णीय क्षति बताया।
1: मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी जी का जाना पूरे राज्य के लिए और देश के लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है और उन्होंने सेना के अधिकारी के रूप में देश की रक्षा के लिए अपनी सेवाएं दी, अभूतपूर्व योगदान दिया। उसके बाद भारत सरकार में मंत्री के नाते और राज्य में मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने शुचिता, पारदर्शिता और अनुशासन और समय की पाबंदी, ऐसे बहुत सारे अनुकरणीय जो कार्य है अपने समय में किए, वो हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में लू की स्थिति बने रहने का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान के अधिकांश जिले भी इस समय भीषण लू की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने आज राज्य के 2 जिलों में लू की स्थिति को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जबकि 14 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
2: प्रदेश में भीषण गर्मी और गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। ज्यादातर जिलों में दिन का पारा 42 से 46 डिग्री वहीं रात का तापमान 46 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। इस बीच चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने अस्पतालों में हीट वेव प्रबंधन को लेकर सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए अलग से बेड आरक्षित रखने, जरूरी दवाइयां उपलब्ध कराने के साथ छाया और पेयजल का प्रबंध करने को कहा गया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: पंजाब और हरियाणा में भी भीषण गर्मी जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने दोनों राज्यों में गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
3: चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग के डायरेक्टर सुरेंद्र पाल ने आकाशवाणी को बताया कि आने वाले 3-4 दिनों में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान बढ़ेगा। दोनों राज्यों के पश्चिमी जिलों में लू की स्थिति रहेगी। पंजाब में ये जिले अमृतसर, फिरोजपुर, तरनतारन, मानसा, संगरूर, बठिंडा और मुक्तसर होंगे और हरियाणा में हिसार, रोहतक, झज्जर, भिवानी, गुरुग्राम और फरीदाबाद में सबसे ज्यादा गर्मी महसूस होगी। पिछले 24 घंटों में पंजाब में फरीदकोट 47.3 डिग्री सेल्सियस और हरियाणा में रोहतक 46.9 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म जिले रहे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज पेइचिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वार्ता से पेइचिंग और मॉस्को के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूती मिलेगी और संयुक्त राष्ट्र, दक्षिण अफ्रीका परिषद और ब्रिक्स जैसे मंचों के माध्यम से समन्वय बढ़ेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले महीने फ्रांस में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और कई यूरोपीय सहयोगियों में बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 101 अंक गिरकर 75,100 जबकि निफ्टी 24 अंक की गिरावट के साथ 23,594 पर कारोबार कर रहा था। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में भारत इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलों का उल्लेख किया। डीआरडीओ ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल ULPGM-V3 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गया है प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से, मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा पीहू स्वर्णकार और कमलकांत गुप्ता जी का भी मेल हमारे पास आ गया है। दीपा रिमझिम गुप्ता, सिमरीला नवाबारा से, मुकेश गुप्ता, श्रद्धा गुप्ता, आदिति, राधे गुप्ता, दीपक गुप्ता, अंकुर राघव गुप्ता जी, मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, राजेश, राजवल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तानवी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह और लिखा किसी भी गीत में शामिल कीजिए, जिला मुरादाबाद, ग्राम दूलापुर, उत्तर प्रदेश से मेल है। इसके बाद मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून के साथ किसी भी गीत में शामिल कीजिए। और आज अपने श्रोताओं का बहुत धन्यवाद दे रहे हैं कि आज हमारे कई श्रोताओं ने ये बात मेरी मानी है, जयराम खोरवाल जी को छोड़कर किसी ने भी डबल मेल नहीं की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शिवाजी नगर, बरली देशमुख, राजेश खोबरखेड़े, शिव सागर खोबरखेड़े, इंद्रबाई खोबरखेड़े, चकुली ताई खोबरखेड़े, लिखा है मैम प्रोग्राम में शामिल करने के लिए आपका शुक्रिया। और आप दोनों मैम जी का, भाई हम ही अकेले ही हैं और लिखा है सारे शहर में आप सब कोई नहीं, क्या बात है। पिंकू सोनी जी, मैम जी सादर प्रणाम। पिंकू सोनी है पारिजात धाम टिकैत नगर बाराबंकी से मेल कर रही हैं। आपका प्रोग्राम में सॉन्ग बहुत अच्छे बजते हैं, मेरा किसी भी सॉन्ग में मुझे शामिल करने के लिए करिए और बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका। मेरे दोस्त भी सुन रहे थे, कुलदीप जी उधौली से और आकाश शर्मा जी मुरारपुर दरियाबाद से। थैंक यू सो मच पिंकू सोनी जी। शाहजी बोड़के, श्री नंदा बोड़के, हनुमान बोड़के, उत्तम जामदड़े, स्वराज जामदड़े, अम्बेडकर नगर बकोड़ी से, इन सब ने हमें मेल किया, लिखा है प्रसारक जी नमस्ते, महाराष्ट्र से मेल आया है। जितेंद्र नामदेव जी लिखा है, इन्होंने लिखा है प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद शिल्पी मैडम, कोई भी गीत में शामिल कर लीजिए। और जितेंद्र नामदेव और ग्राम शेड्यूल विलेज एंड पोस्ट कनमौड़ी, कलमौड़ी मेरे ख्याल से हमने सही पढ़ा है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, मध्य प्रदेश से मेल आया। वीके गुप्ता जी, यानी विनोद कुमार गुप्ता जी का भी मेल आ गया है और लिखा है गुड आफ्टरनून, गोला गोकर्णा, लखीमपुर खीरी से नियमित श्रोता है, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, किसी भी गीत में हमको शामिल कीजिए और मेरे मित्र अजय कुमार मिश्रा को भी शामिल कर लीजिए। सतीश अनेजा जी का भी मेल आ गया है और इन्होंने हमें भेजा है चंडीगढ़ सिटी से, सतीश अनेजा, विमला अनेजा। और अब जल्दी से गाना वो सुनवा देते हैं जो आप ही में से किसी की पसंद का है।

भी छैया छैया चलने का मन करता है। जब आप पहिया पहिया चलते हैं तो आपको लगता है कि रास्ते में पेड़ों की छैया हो तो कितना अच्छा लगे। और ऐसा ही होना चाहिए अगर आप प्लांटेशन करते हैं, क्योंकि भाई हमें पर्यावरण दिवस मनाने से मतलब नहीं, 5 जून को हमें बहुत सारे एफर्ट्स भी उसके लिए करने पड़ते हैं और हमारे लिसनर्स जरूर करते हैं, क्योंकि भाई वो सुनते हैं 100.7 FM रेनबो। क्या कहते हैं आप जी? तो बस यूं ही हम भी सफर पर अपने चल रहे हैं, यानी हॉटमेल के सफर पर। हमारा ये सफर जारी है हमारे लिसनर्स के मेल के साथ, हॉटमेल प्रोग्राम 100.7 FM रेनबो पर। शिल्पी आपके साथ और शिल्पी के साथ ढेर सारे मेल। विपिन कुमार पांडे जी, अमर विहार कॉलोनी लखनऊ उत्तर प्रदेश से, गुड आफ्टरनून मैम, FM रेनबो 100.7 बहुत अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, सारे कार्यक्रम इसके बहुत अच्छे लगते हैं और मेरी कार में परमानेंट यही चैनल चलता है। थैंक यू सो मच विपिन। और इसके अलावा फरियाद हुसैन अंसारी, शारून नून अंसारी, शकील अहमद, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी, डीजे प्रधान, इन सब ने ग्राम अप्रोच हररपुर मटकली जिला बरेली से लिखा है। आर कुमार जी का भी मेल आ गया, बरिंगखेड़ा पंजाब से, मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, कोई भी गीत सुनवा दीजिए। और आफ्ताब अंसारी साहब, रियाज मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आप सभी ने लिखा है नमस्कार और प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, गाने बहुत अच्छे लग रहे हैं, थैंक यू सो मच। यानी हम सक्सेसफुल हो रहे हैं, अपने जो एफर्ट्स हमारे हैं कि हम आपको एंटरटेन करें, सो इसमें हम सक्सेसफुल पक्के तौर पर हो रहे हैं। थैंक यू सो मच, आपके जो हमें जब रिस्पांस मिलते तो और अच्छा लगता है। मसरूर हसर जी, आरजे जी आदाब, गांव कुमारखेड़ा सहारनपुर से, सैयद मसरूर, शहना हसन, नाजिया इब्राहिम, किसी भी गीत में शामिल कर लीजिए। और आफ्ताब अंसारी जी, आपका मेल हम शामिल कर चुके हैं। संजय डिंगिया जी का भी मेल आ गया, नमन डिंगिया, पार डिंगिया, बागपत उत्तर प्रदेश से आपका मेल है। मेहर अरोड़ा जी, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा, पंतपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मेल है। बबलेश पवार जी का भी मेल है, डैनी पवार, मनीष पवार, ये गांधी चौक बड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार हैं। और राम देवरा से दिनेश चौहान हैं, डांगरी से बाबू राम जयपाल हैं, और खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा रेडियो दीवाना लिखकर भेजा है हमें, और ये पारसमणि रेडियो श्रोता संघ है। और रामशंकर जी ने भी मेल किया, लिखा है नेम रमाशंकर, और इन्होंने गुड आफ्टरनून मैम लिखा है और लिखा है आप मुझे कोई भी गाना सुना दीजिए आप, लेकिन मेरा नाम जरूर ले लीजिएगा। तो रमाशंकर जी, मैंने आपका नाम ले लिया है कि लिख रहे हैं, क्योंकि मैं आज काफी दिनों बाद मेल कर रहा हूँ, तो भाई चलिए ठीक है, हमने आपका नाम ले लिया, अब आपकी कोई नाराजगी होनी नहीं चाहिए। अब्दुल गफार जी का भी मेल आ गया और हम आपका मेल पहले पढ़ चुके हैं अब्दुल जी। साई गायकवाड़ जी का मेल आ गया है और ये है ओम रेडियो श्रोता संघ कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से, नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़ और साई गायकवाड़। तो चलिए अब आप ही में से किसी की पसंद का गाना प्ले कर देते हैं, एंजॉय कीजिए।

जी 2:42 हो गए हैं, समय कम है। ढेर सारे मेल आए जा रहे हैं नरकरी बाजार जगराव से। सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मरोत्रा, गाव्या मरोत्रा भाई, सुचा सिंह पाठक जी का मेल आ गया है। इसके अलावा हमारे पास मेल आ चुका है आफ्ताब अंसारी जी का, ऑलरेडी आप कर चुके थे पहले, और हितेंद्र दास जी का मेल आया है। लिखा है, हेलो आकाशवाणी आरजे, नमस्कार, हाउ आर यू, प्लीज रीड आउट माई नी, और किसी भी सॉन्ग में आप इसे प्ले कर सकते हैं। तो चलिए भाई, हमने आपका नाम पढ़ा और ज़रूर इस आपकी पसंद शामिल होगी। और इसके बाद हमारे पास मेल आ चुका टीडी मल्होत्रा जी का, भी हम पढ़ चुके हैं इसको। ताज मोहम्मद जी का मेल आया है, अंस गुलाब साबिर राही महराज जहां आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से आपका मेल। संतोष जी का मेल आया, संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता भाकरे, शाहजी नगर, देगलूर, जिला नांदेड़, महाराष्ट्र से आपने हमें मेल किया है। इसके बाद पूजा पाल जी का मेल आया है, लिखा है, मैम मैं मिर्ज़ापुर संदना सीतापुर से हूँ, बट इस टाइम बिटौली लखनऊ से सुन रही हूँ। प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है और मैम आपकी आवाज़ भी अच्छी लगी, थैंक यू सो मच। और लिखा है सॉन्ग सुनवाना है, तो ज़रूर हम कोशिश करते हैं कि आपका जो मेल है शामिल हो और आपके पसंद का गाना जरूर बजे। और एम के राज जी, आपका तो मेल हमें मिल चुका और आपकी जो दो लाइन है वो हमने पढ़ भी दी है। उत्तम कुमार भगत जी का भी मेल आ गया है, श्वेता भगत की सुता सुर नवानंद सत्यानम बुढ़ागाशी पश्चिम बंगाल से, मुन्ना भगत, गुड्डी भगत जी। और इसके अलावा

बिट्टू गगनेजा जी का मेल आ गया है, 2 बजे मेल भेजा था, अभी तक शामिल नहीं भी कराया। लीजिए भाई शामिल हो गया, कभी कभी थोड़ा टाइम हो जाता है बिट्टू गगनेजा जी, बिल्कुल परेशान मत हुआ कीजिए, आपने दोबारा मिल गया, दोबारा शामिल हो गया। राम राम जी, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा जी, और जिनके पसंद के गाने प्ले हो गए हैं वो हमें थैंक यू भी लिख रहे हैं। तो भाई थैंक यू की क्या बात है, आप ही का प्रोग्राम है तो इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं, लेकिन हाँ आपने थैंक यू दिया, हमने दिल से इसे लिया। हिंदुस्तान रेडियो मित्र बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम और आशीष लिखा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रणधीर गुप्ता जी का मेल आ गया है, शुभ दोपहरिया रेडियो सखी, शिल्पी जी सप्रेम नमस्कार, कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच, किसी भी गाने में शामिल कीजिए। उखला संगम विहार दिल्ली से रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता, सत्यम गुप्ता और सुंदरम गुप्ता जी। मैं छविराम सिंह राजपूत जिला फरुखाबाद से आपका नियमित श्रोता बोल रहा हूँ, रेनबो मेरे दिल की धड़कन है और आपकी आवाज़ अच्छी लग रही है, थैंक यू सो मच। राजेश कुमार विद्यार्थी जी का भी मेल आ गया हूँ, इन्होंने गोकुल चौक गंग जलर सहरसा बिहार से मेल किया है, बहुत सारे नाम लिखे हैं। और मोहम्मद रिजवान जी का मेल आ गया, सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम सिस्टर को उन्होंने यानी हमको सलाम भेजा, मोहम्मद रिजवान। फरिंदा संडीला हरदोई, प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है और मैं ऑनलाइन सुन रहा हूँ, हाँ जी हाँ, न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर हमारा प्रोग्राम है। और इन्होंने जो भी गाने की रिक्वेस्ट भेजी, लेकिन चलिए आप ही में से किसी पसंद का गाना हम प्ले कर देते हैं, और मोहम्मद रिजवान जी अगला गाना आपकी पसंद का।

0: 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा,
1: विरासत और स्वस्थ मनोरंजन की अनूठी पहचान।
0: आकाशवाणी,
2: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर हार्दिक बधाई। आकाशवाणी की मधुर ध्वनि यूं ही जन जन तक ज्ञान, संस्कृति और प्रेरणा पहुंचाती रहे तथा सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का अपना ध्येय पूरा करती रहे। इसी आशा के साथ मैं SR बैनर्जी, पूर्व उप महानिदेशक आकाशवाणी, आकाशवाणी के परिवार तथा असंख्य श्रोताओं को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।
3: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की।
4: दो बजकर 50 मिनट हो गए, समय बहुत कम है हमारे पास। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू, और इसके अलावा हमारे पास मेल आ गया राजकुमार दूदी का, गांव फ्रांसी हिरसार से प्रमोद कुमार दूदी, पुष्पेंद्र कुमार दूदी जी। रामेश्वर जी का मेल आ गया, हॉटमेल कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता बहन शिल्पी को नमस्कार, किसी भी गीत में शामिल कर लीजिए, हमारा नंबर कब आएगा इंतजार कर रहे हैं। ग्राम पोस्ट मुंगीसापुर कानपुर देहात से हैं, पूरा कठेरिया परिवार है और आपका नाम शामिल हो गया रमा शंकर जी। इसके अलावा हमारे पास मेल आया रमा शंकर पॉल, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी लखनऊ से, गुड आफ्टरनून, मुझे गाना सुनवा दीजिए, इनको गाना सुनना है जी। चलिए मैं सुनवाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि हर किसी को लगता है कि मेरा मेल शामिल हो जाए, लेकिन थोड़े से कम मेल शामिल हो पाते हैं क्योंकि नाम भी आपके शामिल करने पड़ते हैं, नहीं तो कई लिसनर्स नाराज़ हो जाते हैं। हम सोचते हैं सबके नाम ज़रूर शामिल कर लें। दीपक कुमार जी का हाईकोर्ट लखनऊ से मेल आया है, मैम आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है और मुझे सॉन्ग सुनवा दीजिए। थैंक यू सो मच दीपक जी, कोशिश पूरी कर रहे हैं जिसके भी सॉन्ग, क्योंकि अब देखिए 2:51 हो रहे हैं तो हमारे पास समय अब बहुत कम है। प्रिंसी सिंह जी का मेल आ गया है और लिखा है विजय लक्ष्मी कुशवाहा, सांडी जनपद हरदोई से नमस्कार लिखा है और लिखा है गाना सुनवा दीजिए, मैम जी पानी पी लीजिए जी, क्योंकि इतने सारे मेल होते हैं तो पानी पीना बनता है, बिल्कुल सही बात आपने पकड़ी। प्रसारक जी नमस्कार, प्लीज एनी सॉन्ग धनौरी तेली वाला उत्तराखंड से, निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आले आयान बाबू। ये जो प्रिंसी सिंह जी ने बात लिखी ना, बहुत सही लिखी है, हमको लगता है गिलास रखा रहे मैं पानी पीती रहूं फिर भी लोग नाराज हो जाते हैं, लीजिए हमें मेल नहीं पड़ा, जबकि हम कितने सारे मेल पढ़ते कि चलिए सबके नाम जरूर पढ़ दें। संदीप मकर जी, ज्योति मकर जी, मन्नत मकर जी, और ये हैं कमत सहानी, पिंगा वाला चौक कुराया जुलंधर से। आकाश कुमार जी, अंचल वर्मा फ्रॉम हरदोई, गुड आफ्टरनून मैडम जी, प्लीज मैम मेरा भी सॉन्ग प्ले कर दीजिएगा, और मैम आपको और सभी सुनने वालों को डेडिकेट किया है सॉन्ग। रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, मुस्किरत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल, इन सब ने कस्बा बाड़ा जिला अंचल अम्बाला हरियाणा से मेल किया है। नवी हसन जी, शहनाज नवेद, रसीद, सुहेल हसन, अनम पश्यप, सिकंदरा राव से, मुबीन अब्बासी, इशरत परवीन, आपकी बहुत मेहरबानियों के नाम जरूर शामिल कीजिए, लीजिए आपके नाम शामिल हो गए। शुभ दोपहरिया के साथ तेज बहादुर यादव जी ने लिखा है गाने बहुत ही सुंदर आप सुनवाती हैं, अगर हो सके तो मेरा गाना सुनवा दीजिए चलिए गर्मी के लेके बहुत सारे गाने आ रहे हैं कि भाई गर्मी वाला कोई गाना सुनवा दीजिए जिसमें बहुत ऐसा चीज का जिक्र किया गया हो कि धूप बहुत तेज है। और रायबरेली उत्तर प्रदेश का मेल है गाँव मऊ शर्की से, लिखा है किसी भी गीत में शामिल कर लीजिए, अभी हम गुरुग्राम हरियाणा में सुन रहे हैं तेज

माधुरी यादव, ममता यादव, बच्चे हैं रोनित यादव, बेबी वनिका, हरजिंदर शिंदा जी, जसवीर जस्सी, सीता और गीता फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं, तो अब समय कम है, एक ही गाना शामिल कर सकते हैं। और क्योंकि रिक्वेस्ट अरविंद मोहनदास जी, आपका भी नाम ले लेते हैं, किशनगंज बिहार से आशा देवी के साथ आपने मेल किया है और अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि सबके नाम पढ़ लें। नीलू शर्मा जी, हाय शिल्पी दी, कैसी हैं, कार्यक्रम तहसील सफीपुर से सुन रही हूँ और गाना सुनवा दीजिए। और पीहू, रोशनी, बबीता सबको डेडिकेट कर रही हैं। तो अब समय हमें इजाज़त नहीं दे रहा कि और आपसे बातें करें या आपके नाम और लें, क्योंकि मेल लगातार आ रहे हैं। और फिलहाल गाना सुनवा देते हैं, क्योंकि लोग कह रहे हैं ना गर्मी बहुत है, तो गर्मी पे गाना सुनवाइए। तो चलिए आप एंजॉय कीजिए। इस गाने में एक मैसेज भी है कि भाई गर्मी बहुत है, तो 10 से 4 के लिए जैसे मना किया गया है कि इस समय धूप बहुत तेज़ होती है, तो थोड़ा अवॉइड कीजिए निकलने को और गर्मी में अपना खास ध्यान रखिए। इसी बात के साथ अभी मैं जा रही हूँ, लेकिन नेक्स्ट प्रोग्राम सतरंगी दुनिया में एक बार फिर मेरा आपका रहेगा साथ। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड।

102.2 की फ्रिक्वेंसी पर आपने ट्यून इन किया है एफएम रेनबो कानपुर को। गुड आफ्टरनून दोस्तों, म्यूजिक आवर प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पुनर्जन्म की, साथ ही पुनर्जन्म से रिलेटेड फिल्मों के गाने भी हम आपको सुनवाएंगे। तो पुनर्जन्म पर बेस्ड कोई फिल्म जो आपको बहुत अच्छी लगी हो आप हमें नाम बता सकते हैं। ऐसी ही किसी फिल्म का गाना अगर आप सुनना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताइए, हम आपको सुनवाएंगे। तो जल्दी से ईमेल आईडी नोट कीजिए, AIRKANSOMEDIA@gmail.com।

दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई इंसान पहली बार मिलकर भी अपना सा क्यों लगता है? क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या फिर किसी पिछले जन्म का रिश्ता? भारतीय दर्शन कहता है आत्मा कभी नहीं मरती। जैसा कि भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा नया शरीर लेती है। तो दोस्तों, पुनर्जन्म सच है या नहीं, ये बहस का विषय हो सकता है, लेकिन एक बात तय है, ये विचार हमें उम्मीद देता है, ये सिखाता है कि कुछ भी अधूरा नहीं रहता।

दोस्तों मनोज बंसल हांसी हरियाणा से इनका मैसेज हमारे पास आ चुका है। लिखते हैं, राजेश खन्ना और हेमा मालिनी अभिनीत फिल्म कुदरत बहुत अच्छी फिल्म है और मुझे लगता है कि मनोज बंसल जी ने ये फिल्म देखी है और इस फिल्म का गाना मनोज जी हम आपको ज़रूर सुनवाएंगे। बने रहिए हमारे साथ 102.2 की फ्रिक्वेंसी पर, जिसे आप सुन रहे हैं FM रेनबो कानपुर से। तो दोस्तों पुनर्जन्म की बात हो और महल फिल्म का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। ये फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा में पुनर्जन्म की शुरुआत है। एक वीरान महल, एक अधूरी प्रेम कहानी और एक आवाज जो बार बार पुकारती है, क्या वो सच है या सिर्फ एक भ्रम? और जब मधुबाला स्क्रीन पर आती हैं तो लगता है जैसे वक्त थम गया हो।

वेल गाइज, अगर आपने फिल्म मधुमति देखी है तो उसमें भी ये दिखाया गया है कि एक तूफानी रात, एक पुरानी हवेली और धीरे धीरे खुलता एक राज। ये फिल्म बताती है कि प्रेम और अन्याय दोनों ही आत्मा के साथ चलते हैं। तो अब हम आपके लिए लेकर आए हैं मधुमति फिल्म का ये गाना। तो आपको बताना है कि ये गाना किस पर

जयंती माला पर। और कुछ सपने दोस्तों सिर्फ सपने नहीं होते, वो किसी अधूरी हकीकत की झलक होते हैं। बात करें नील कमल फिल्म की, जिसमें एक लड़की बार बार एक ही सपना देखती है, एक महल, एक अधूरी शादी। क्या ये उसका भ्रम है या उसके पिछले जन्म की कहानी? बताइए हीरोइन का नाम और सुनिए नील कमल फिल्म का ये ट्रैक।

0: बारा देवी कानपुर से हमारे पास मैसेज आया है अदिति, शिप्रा, दिविशा, निविशा, अवि और हनु का। इन्होंने बिल्कुल सही बताया है कि नीलकमल फिल्म की जो हीरोइन है वो है वहीदा रहमान।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित तिवारी। यू आर लिसनिंग कानपुर शहर की म्यूजिकल हार्टबीट 102.2 FM।

0: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
1: ओके सैलरी, नहीं झुमके ना, पहले बचत,
2: पहले झुमके।
1: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
2: लेकिन झुमकों का क्या,
1: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
3: आरबीआई कहता है,
0: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
4: डियर रेनबो लिसनर्स, आपका और हमारा रिश्ता है बड़ा पुराना, पर इसे और भी गहरा बनाने आ रहा है एक खास बहाना।
5: जी हाँ, FM रेनबो कानपुर के कार्यक्रमों पर अब आपकी राय, आपकी पसंद और आपके सुझावों का रहेगा हमें इंतजार। लेकर आ रहे हैं हम अपना फीडबैक शो मेल मिलाप।
4: हमें बताइए आपको हमारे प्रोग्राम्स कैसे लगते हैं, क्या और सुनना चाहते हैं आप। तो नोट कीजिए, हर महीने के चौथे बुधवार दोपहर 3:45 पर होगा हमारा आपका मेल मिलाप।
5: अपनी प्रतिक्रियाएं हमें लिखकर भेजें इस पते पर, कार्यक्रम मेल मिलाप, विज्ञापन प्रसारण सेवा, आकाशवाणी कानपुर, बेना झाबर रोड, कानपुर, पिन कोड है 208002।
4: हमें ईमेल करें, हमारा ईमेल एड्रेस है fmmelmilaap@gmail.com पर, यानी कि fmmelmilaap@gmail.com। भूलिएगा मत, हर महीने का चौथा बुधवार दोपहर 4:15 सिर्फ FM रेनबो कानपुर पर। मेल मिलाप।

म्यूजिक आवर प्रोग्राम आप एंजॉय कर रहे हैं एफएम रेनबो कानपुर से 102.2 की फ्रिक्वेंसी पर। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में हम आपको सुनवा रहे हैं पुनर्जन्म पर बेस्ड फिल्मों के गाने। अगर आपकी भी कोई पसंद है तो हमें मैसेज कीजिए AIRKANSOMEDIA@gmail.com।

दोस्तों बिल्कुल सही पहचाना आपने, कर्ज फिल्म का गाना अभी आपने सुना। ऋषि कपूर पर फिल्माया गया था ये गाना। दोस्तों कभी कभी हमें लगता है ये पल पहले भी हम जी चुके हैं, इसे कहते हैं देजा वो। शायद ये दिमाग का खेल हो या फिर आत्मा की याद। दोस्तों एक बड़ा ही फेमस डायलॉग है, आप सभी ने जरूर सुना होगा, मेरे करण अर्जुन आएंगे। जी हाँ गाइज, ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं बल्कि एक माँ का अटूट विश्वास है। दो बेटे जिनकी हत्या हो जाती है और फिर वो लौटते हैं पुनर्जन्म लेकर के। और तो सुनिए इसी फिल्म का ये गाना।

Hi, this is Udit Narayan. You are listening 102.2 FM Rainbow शहर की म्यूजिकल हार्टबीट. दिल से जुड़े रहें और सुनते रहें शहर की म्यूजिकल हार्टबीट को.

0: कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: आपके दिल की धड़कन, आपका अपना हेलो कानपुर प्रोग्राम हम लेकर आ रहे हैं हर रविवार और सोमवार को
2: शाम 4 बजे से 5 बजे तक। सुनिएगा जरूर ओनली ऑन 102.2 FM रेनबो कानपुर की म्यूजिकल हार्ट बीट।
1: तो उठाइए फोन और लगाइए कॉल हर बुधवार और गुरुवार को सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच। आपकी आवाज बनेगी रेनबो कानपुर की आवाज।
2: अपनी आवाज को हम तक पहुंचाने के लिए फिलहाल नोट कीजिए हमारा फोन नंबर। हमारा फोन नंबर है 0512-254-1818
1: यानी 0512-254-1818। तो हमें रहेगा
2: आपके फोन कॉल्स का इंतजार।
1: FM रेडियो कानपुर से इस समय आप एंजॉय कर रहे हैं म्यूजिक आवर प्रोग्राम अपनी रेडियो दोस्त रितु के साथ। प्रोग्राम में बातें हो रही हैं पुनर्जन्म की। तो दोस्तों अब आते हैं एक ऐसी फिल्म पर जिसने पुनर्जन्म को नए जमाने के अंदाज में पेश किया। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण मुख्य भूमिका में हैं। ओम एक जूनियर आर्टिस्ट होता है जिसकी मौत के बाद पुनर्जन्म होता है एक सुपरस्टार के रूप में। उसे धीरे धीरे अपने पिछले जन्म की यादें आने लगती हैं और फिर वो अपने प्यार और मौत का सच सामने लाता है। बताइए फिल्म का नाम।

दोस्तों सही पहचाना आप सभी ने, ओम शांति ओम फिल्म का गाना था ये। दोस्तों कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। 102.2 की फ्रिक्वेंसी पर आपने ट्यूनिंग किया है एफएम रेनबो कानपुर को। और दोस्तों अब समय हो गया है प्रोग्राम को वाइंड अप करने का, तो म्यूजिक और प्रोग्राम से अपनी रेडियो दोस्त ऋतु को दीजिए इजाजत और आप एंजॉय कीजिए ये ट्रैक।

102.2 की फ्रिक्वेंसी पर आपने ट्यून इन किया है एफएम रेनबो कानपुर को। आपकी पसंद प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपकी ढेर सारी ईमेल फरमाइशें हम तक पहुंच चुकी हैं दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का आपकी पसंद प्रोग्राम।

करतब फिल्म का गाना अभी आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज में कफील आजर का लिखा गीत था और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत के लिए हमारे पास फरमाइश आई थी सोमनी जिला राजनाथ गांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी, मिलिंद कुमार, प्रणय कुमार, रुद्रांश प्रताप, रमेश साहू, तारा, विद्या साहू, जितेंद्र कुमार, किशन कुमार, सुनीता देवी, रिसीवन साहू, त्रिलोक कुमार, रणजीत सिंह साहू। और संघार से सुनना चाहा था आसिफ अली, बेबी आयशा, मोहम्मद हुजैफा। छत्तीसगढ़ रायपुर से नरेंद्र कुमार जाटव, संदीप और अनीता। डोंडी झांसी से प्रभा रानी जयपुरिया, देव शंकर डोम, राधिका रानी जयपुरिया। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, शीतल राजेश। पटेल नगर मालौट से डॉक्टर रमेश कुमार जजौरिया, गीता रानी, गगनदीप और आरजू और गुड्डू। और आपके पसंद प्रोग्राम में आ रहा है प्यार ही प्यार फिल्म का गाना, जिसे आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी ने। इंदिवर के लिखे गीत को संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन ने। इस गीत के लिए हमारे पास फरमाइश आई पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, असमानाज अंसारी, जेल रोड बक्सर से एस डी राज अंसारी, सुल्तान अंसारी, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा और सी टी दीवाना, गाँव फ्रांसी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र कुमार डूडी, देवगिरी भाटापारा से के आर साहू, आकाश, कमलेश, गन्नूलाल, मुरली क्षत्रिय, कैथल हरियाणा से सुनना चाह है जयवीर सिंह ठाकुर, अनिल शर्मा। और ये एक और फरमाइश दिखाई दे रही है जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोज

दुल्हन वही जो पिया मन भाए। जी हाँ दोस्तों, इसी फिल्म का गाना आ रहा है अब आपके रेडियो और मोबाइल सेट पर। यशुदास और हेमलता की आवाजें हैं, गीत और संगीत है रविंद्र जैन का। और इस गीत के लिए हमारे पास फरमाइश आई न्यू दिल्ली से कमलेश, मुकुल और सचिन की। बाघामुड़ा कोमा खान, छत्तीसगढ़ से प्रज्ञानंद देवांगन, नंदिनी प्रकाश, गायत्री यशवर्धन और यशस्वी देवांगन। राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से जुड़ चुके हैं हमारे साथ सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना गोंडाने, प्रणय, प्रसिद्धि, प्रतिभा और रमन शेंडे। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन कविता गौड़, राधा नामदेव, अनिल जैन, संजय ढिगिया, संदीप, दर्शन भाई। कुंभार गली कोलगांव से पांडुचंदन, उषा चंदन, प्रतीक्षा चंदन, प्रथमेश, पांडुरंग कुंभार। चलिए आप सभी की पसंद पर पहुंच रहा है अब तक दुल्हन वही जो पिया।

दुल्हन वही जो पिया मन भाए। जी हाँ दोस्तों, इसी फिल्म का गाना आ रहा है अब आपके रेडियो और मोबाइल सेट पर। यशुदास और हेमलता की आवाजें हैं, गीत और संगीत है रविंद्र जैन का। और इस गीत के लिए हमारे पास फरमाइश आई न्यू दिल्ली से कमलेश, मुकुल और सचिन की। बाघामुड़ा कोमा खान, छत्तीसगढ़ से प्रज्ञानंद देवांगन, नंदिनी प्रकाश, गायत्री यशवर्धन और यशस्वी देवांगन। राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से जुड़ चुके हैं हमारे साथ सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना गोंडाने, प्रणय, प्रसिद्धि, प्रतिभा और रमन शेंडे। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन कविता गौड़, राधा नामदेव, अनिल जैन, संजय ढिगिया, संदीप, दर्शन भाई। कुंभार गली कोलगांव से पांडुचंदन, उषा चंदन, प्रतीक्षा चंदन, प्रथमेश, पांडुरंग कुंभार। चलिए आप सभी की पसंद पर पहुंच रहा है अब तक दुल्हन वही जो पिया।

0: चमन पार्क दिल्ली से हमारे पास फरमाइश आ चुकी है डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना, डॉक्टर अदीबा की। गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, पूजा पायल, जगदीश जौहरी, कंचन कुसुम और सरोज सोनार। पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता कीर्ति और भूमिका अरोड़ा। मोरटक्का माफी जिला खंडवा से सुनना चाह है जगन्नाथ पटेल, कमला, अंतिम, ज्योति, शुभम, देवी किशन, भावना, मनमानस और कनिका पटेल ने। खंडवा रोड सनावत से शाहबाज, अरबाज, फरहाज, फरदीन, समीर और मोइन शेख। बागवान मंजिल छोटी बलिया से नूर, आयशा अहमद, इकबाल अहमद, अखलाक अहमद, आमना आसमा, राबिया, परी, आशु, जूही सदफ और छतरी टोल तेघड़ा बाजार बेगूसराय से अदीवा अफसरी, इस्माइल आजाद, नन्हे राजा, फयाज, फिरोज आलम, शाह आलम और वली आलम। आप सभी ने सुनना चाहा है चरस फिल्म का गाना, जिसे आवाज़ें दी हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। आनंद बख्शी के बोलों को सुरों में पिरोया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: गुड नाइट।
2: हाँ, गुड नाइट।
1: हाँ, गुड नाइट।
2: अच्छा, गुड नाइट।

नमस्कार, मैं हूं सिंगर अभय जोधपुरकर एंड यू आर लिसनिंग टू 102.2 FM रेनबो कानपुर। सुनते रहिए और म्यूजिकली बने रहिए FM रेनबो कानपुर के साथ। थैंक यू।

0: इतनी रात में SMS, KYC अपडेट कीजिए, नहीं तो अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। लिंक पे क्लिक करता हूँ, ब्लॉक ना हो जाए।
1: रुको, चेक किया, लिंक सिक्योर है, सेंडर आपका बैंक ही है। KYC अपडेट के लिए अनजान लिंक खोलना मतलब अनजान लोगों के लिए अपने अकाउंट का दरवाजा खोलना। झूठी जल्दबाजी में ना फंसिए और फर्जी KYC अपडेट लिंक से बचिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए। एक आवश्यक सूचना सुनिए, कला साहित्य शिक्षा खेल चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले पद्म पुरस्कार पद्मश्री पद्म भूषण और पद्म विभूषण के लिए भारत सरकार द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं अपने नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। नामांकन करते समय संबंधित व्यक्ति की उपलब्धियों और सेवाओं का स्पष्ट और विस्तृत विवरण सही प्रारूप में अंकित होना सुनिश्चित करें। पद्म पुरस्कारों से संबंधित नियम और विनियम padmaawards.gov.in पर देखे जा सकेंगे। एक बार फिर हम बताना चाहेंगे, padmaawards.gov.in पर आप नियम और विनियम इस अवार्ड से संबंधित देख सकते हैं। नामांकन करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2026। सूचना समाप्त हुई।

नींद हमारे ख्वाब तुम्हारे। जी हाँ, इसी फिल्म का गाना अभी आपने सुना आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। राजेंद्र किशन का लिखा गीत था और मदन मोहन का संगीत। और इस गीत के लिए हमारे पास फरमाइश आई थी चंद्रनगर राजकोट से कौशल्या जोशी, सोनाली जोशी, सुरेश जोशी, कबीरनगर डोंडी से देवशंकर बेलदार और प्रभा कुआत से सुनना चाहा था हाशिम आज़ाद, सुरेश सिंह, मीरा सिंह, इंदिरा चौक दिल्ली से अजीम वकार, माहिरा अजीम, नगमा अजीम, सौगा मगर लोट से अनिश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित कुमार, देविका रानी, गजेंद्र कुमार, हेयांश कुमार चंदन। और आपकी पसंद प्रोग्राम का अगला गीत है रोटी फिल्म से, जिसे हमने लिया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ें हैं। आनंद बख्शी का लिखा गीत, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। जवाहर नगर दुर्ग से हमारे पास फरमाइश आई है इस गीत के लिए आरसी कांबड़े, करुणा मीना, अश्वनी और विपुल कांबड़े की। परभणी महाराष्ट्र से रूपेश संघई, महेश प्रज्ञेश, प्रीतेश और समस्त परिवार। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल और पूजा परिहार। चार डोगरी पिपरिया जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ से दुर्गाराम साहू, अजय कुमार, इंद्राणी, माया, जयकिशन, योगेश, वासु, हेमा, राधिका। टोरवाल नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांडी, त्रिपिता कुमारी, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम, वामिका और वाणी थांडी। मूंदी चौक भागलपुर बिहार से दिलीप कुमार सोनी और कमल किशोर शाह। तो चलिए, आप सभी की पसंद पर पहुँचा रहे हैं रोटी फिल्म का ये ट्रैक।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में लीजिए सुनिए गैम्बलर फिल्म का गाना। नीरज ने इस गीत को लिखा है और धुन बनाई है एसडी बर्मन ने। इस गीत के लिए हमारे पास फरमाइश आ चुकी है एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता, गणेश, कार्तिक, परी, स्वाति, प्रयाग चौधरी और देविका चौधरी। और इसी के साथ होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से जुड़ चुके हैं जयराम खोरवाल, सचिन अमन, दीपांशु खोरवाल, मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, इशप्रीत शर्मा, तेलंगाना

0: जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से हमारे पास फरमाइश आ चुकी है। अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र, शेख मूसा, राजकुमार बोड़ाना, सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश और जगदाप, कासम कॉलोनी सनावत से यूनुष खत्री, शफी, इदरिश, नूर मीना, इरफान मीना, कासिफ मीना और सरगुजा मेन पार्ट से विनोद थापा, पूजा रानी, संदीप थापा और डॉली थापा, जेल रोड झांसी से सुमित मोगा, देव, राधिका और कबीर मोगा, सहारनपुर जंक्शन से सुरेश पासवान और आशा डुकर। आप सभी की पसंद पर हम आपके लिए लेकर आए हैं पत्थर के सनम फिल्म का गाना, जिसे स्वर दिया है मुकेश ने और मजरू सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा है और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: देखो देखो देखो।

0: डियर रेनबो लिसनर्स, आपका और हमारा रिश्ता है बड़ा पुराना, पर इसे और भी गहरा बनाने आ रहा है एक खास बहाना।
1: जी हाँ, FM रेनबो कानपुर के कार्यक्रमों पर अब आपकी राय, आपकी पसंद और आपके सुझावों का रहेगा हमें इंतजार। लेकर आ रहे हैं हम अपना फीडबैक शो मेल मिलाप।
0: हमें बताइए आपको हमारे प्रोग्राम्स कैसे लगते हैं, क्या और सुनना चाहते हैं आप। तो नोट कीजिए, हर महीने के चौथे बुधवार दोपहर 3:45 पर होगा हमारा आपका मेल मिलाप।
1: अपनी प्रतिक्रियाएं हमें लिखकर भेजें इस पते पर, कार्यक्रम मेल मिलाप, विज्ञापन प्रसारण सेवा, आकाशवाणी कानपुर, बेना झाबर रोड, कानपुर, पिन कोड है 208002।
0: हमें ईमेल करें, हमारा ईमेल एड्रेस है fmmelmilaap@gmail.com पर, यानी कि fmmelmilaap@gmail.com। भूलिएगा मत, हर महीने का चौथा बुधवार दोपहर 3:45 सिर्फ FM रेनबो कानपुर पर मेल मिलाप।
2: आपके दिल की धड़कन, आपका अपना हेलो कानपुर प्रोग्राम हम लेकर आ रहे हैं हर रविवार और सोमवार को शाम 4:00 से 5:00 तक। सुनिएगा जरूर ओनली ऑन 102.2 FM रेनबो कानपुर की म्यूजिकल हार्ट बीट।
3: तो उठाइए फोन और लगाइए कॉल हर बुधवार और गुरुवार को सुबह 10:00 से 12:00 के बीच। आपकी आवाज बनेगी रेनबो कानपुर की आवाज।
2: अपनी आवाज को हम तक पहुंचाने के लिए फिलहाल नोट कीजिए हमारा फोन नंबर। हमारा फोन नंबर है 0512-254-1818,
3: यानी 0512-254-1818। तो हमें रहेगा
2: आपके फोन कॉल्स का इंतजार।
4: आपकी पसंद प्रोग्राम आप एंजॉय कर रहे हैं एफएम रेनबो कानपुर से 102.2 की फ्रिक्वेंसी पर, और प्रोग्राम में अब आ रहा है हम साया फिल्म का गाना, जिसे आवाज दी है मोहम्मद रफी ने। शिवेन रिजवी ने इस गीत को लिखा है और संगीत दिया है ओपी नैयर ने। शास्त्री नगर बीट शहर से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं आशा सपकाल, किशन, सोनिया, साईराज और विशाल। सहारनपुर से आशा नारंग, सुरेश और सोनाली नारंग। मेहर रोड वेस्ट बंगाल से अभिजीत प्रसाद मेहरा, आभा सिंह सांगा, मिथुन सांगा और राधिका जाटव। डोनी खेड़ा से देवशंकर डोम और प्रभा डोमेन।

0: दमदमी एयरपोर्ट कोलकाता से हमारे पास फरमाइश आई है। बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी, अजय कुमार, रिम्मी, तनुश्री, पीहरा बाजार, झुमरी तलैया से शिवानी कुमारी, प्रियंका, अभय कुमार, गुड्डू, मुन्नी देवी, जयप्रकाश, रिया, जिया, टूसी, आयुषी, अनिरुद्ध, बसंतलाल, हीरा, मोती और पन्नालाल, पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक, सीमा साहू, रोहिदास चौक, पंढरपुर सिटी से प्रशांत शिंदे, सुनीता, यशराज, ऋषि, कृष्णा और शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी। आप सभी ने सुनना चाहा है सच्चा झूठा फिल्म का गाना, मोहम्मद रफ़ी की और लता मंगेशकर की आवाज़ें हैं। इंदीवर के बोल हैं और धुन बनाई है कल्याण जी, आनंद जी ने।
1: बेगुनाह

आपके पसंद प्रोग्राम के अंत में लीजिए सुनिए मेरा साया फिल्म का गाना, जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर ने। राजा मेहंदी अली खान ने इस गीत को लिखा है और मदन मोहन ने इस गीत को दिया है संगीत। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से हमारे पास फरमाइश आई है। मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अमान और परिवार के सभी लोगों की। वीरमगाम गुजरात से अजीत भावसागर, प्रमिला भावेश, सनी, जैस्मिन और सादिक जैमिन। अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, राजिया बेगम, मोहम्मद सादिक अंसारी। बहादुरगंज गाजीपुर से आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन, अब्दुल्लाह परवीन। पिंकावाला चौक गौराया, जालंधर से ज्योति मक्कार, मन्नत मक्कड़, भारत मक्कड़ और कमल सहानी की फरमाइश आई है। तो चलिए आप सभी की पसंद पर लीजिए सुनिए मेरा साया फिल्म का गीत है।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में प्रदेश के भविष्य की अर्थव्यवस्था से जुड़े तीन महत्वपूर्ण विषयों, उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर क्लस्टर, प्रोजेक्ट गंगा तथा गेहूं के इन हाउस प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए मंडी शुल्क एवं मंडी सेट्स में संभावित छूट जैसे महत्वपूर्ण विषयों की उच्च स्तरीय समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने यूपी डाटा सेंटर क्लस्टर की समीक्षा करते हुए कहा कि यह परियोजना उत्तर प्रदेश के एआई मिशन की बुनियाद संरचना तैयार करेगी। उन्होंने कहा कि डेटा सेंटर क्लस्टर केवल एनसीआर क्षेत्र तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी इससे जुड़ा जाए। उन्होंने लखनऊ को एआई सिटी के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्य करने के निर्देश दिए। प्रोजेक्ट गंगा की समीक्षा में उन्होंने निर्देश दिए कि जिन युवाओं को डिजिटल उद्यमी के रूप में चुना जाए, उन्हें गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दिया जाए। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में प्रदेश के सभी परिषदीय और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में भारत इनोवेट्स 2026 कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके अंतर्गत मई 2026 के दौरान विद्यालयों में शिक्षकों और छात्र छात्राओं की सहभागिता से विभिन्न नवाचार आधारित गतिविधियां कार्य कराई जाएंगी। कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालयों में विकसित भारत के नवाचार परिदृश्य विषय पर संगोष्ठी, डीप टेक्नोलॉजी विषय पर विशेष कक्षाएं तथा निबंध लेखन जैसी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के तहत जाति गणना कराने के केंद्र

सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को आज खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि यह मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि पिछड़े वर्गों के कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। पीठ ने कहा कि इस तरह के आंकड़े एकत्र करने में कोई बुराई नहीं है और मामले में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे के दूसरे दिन आजमन व्यापारियों व कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। राहुल गांधी ने लोधवारी में वीरा पासी मूर्ति का अनावरण किया और बहुजन स्वाभिमान सभा में प्रतिभाग किया। आईपीएल क्रिकेट टीम का आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 6 बजे प्रसारित होगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। 5:03 का समय और मैं उत्कर्ष आपके साथ लगातार जुड़ा हुआ हूँ। यूथ वेव कार्यक्रम में आप सभी ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विषय भाग के बारे में जाना, अच्छे अच्छे गाने सुने, गीत सुने। आज 5 बजे से जो कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू कर दिया है, आगाज कर दिया है, जिसका वो कार्यक्रम है टॉप 10, यानी कि टॉप 10 गाने मैं आपके लिए ऑलरेडी लेकर के आ गया हूँ, मेरी लिस्ट तैयार है। तो उसको शुरू करते हैं, उन गानों का मजा लेते हैं और एंजॉय करते हैं इस टॉप 10 की शाम को, यानी कि मेरे और उत्कर्ष के साथ।

दोस्तों 5:09 का समय और आप सुन रहे हैं टॉप 10 कार्यक्रम आपके पसंदीदा चैनल 100.7 FM रेनबो पर। मैं हूं उत्कर्ष आपके साथ और बहुत ही सूदिंग रिलैक्सिंग गानों की लिस्ट मैं आप सभी के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर करके लेकर के आया हूं। तो दोस्तों 10वें नंबर का गाना आप सभी ने सुना, 9वें नंबर का गाना ऑलरेडी क्यूड है और उसको आप सुनेंगे। उसको सुनने के बाद आप इंजॉय करिए, क्योंकि मेरा काम इतना है कि पूरे दिन की जितनी भी थकावट है आपकी, उस थकावट को मैं तब्दील कर दूँ कंफर्टिंग जोन में और बहुत ही रिलैक्सिंग आपका मूड बना दूं इन गानों के माध्यम से, इन गीतों के माध्यम से। तो सुनते रहिए आप 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

परसों 5:16 का समय और आप सुन रहे हैं टॉप 10 कार्यक्रम मेरे यानी उत्कर्ष के साथ आपके पसंदीदा चैनल 100.7 FM रेनबो पर। तो दोस्तों, तेरे हवाले के जो रूहानी जादू अभी आपने सुना, उस जादू को अगर हवा में बिखारा जाए तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा आनंद का एक एहसास अभी हम सभी को हो रहा होगा। और मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि आप सभी आनंद में डूबे और दिन भर की जो आपकी थकान है उस थकान से आप बाहर निकलें और इन खूबसूरत से गानों में डूबें ताकि आप रिलैक्स्ड हो सकें, आपका मूड जो है एकदम तरोताज़ा हो सके। तो

ख्वाब हकीकत बन जाते हैं तो मुझे लगता है कि दिल यही कहता है कि भैया अगला गाना जल्दी से प्ले कर दो, क्योंकि 8वें नंबर का गाना आपके रेडियो सेट्स पर तुरंत आने वाला है। मेरे यानी उत्कर्ष के साथ बने रहिए, 8 गाने अभी आपको और सुनने हैं, उनका आनंद लेना है और सुनते रहना 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
2: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
4: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. धड़कन लखनऊ की।

दोस्तों 5:28 का समय और आप सुन रहे हैं टॉप 10 गानों का यह सिलसिला। ये चौथे नंबर का गाना आप सभी ने सुना और मुझे लगता है कि आप सभी इन गानों को एंजॉय कर रहे होंगे और कहीं ना कहीं ये गाने आप सभी के मन में उतर रहे होंगे, दिल में उतर रहे होंगे और जो पूरे दिन भर की आपकी थकावट है वो आपकी थकावट को दूर लेकर के जा रहे होंगे, उस थकावट को छू मंतर कर रहे होंगे। तो मुझे लगता है कि गीतों का यही काम होता है, गीत हमको कहीं ना कहीं रिलैक्स करते हैं, हमारे मूड को ठीक करते हैं। तो मेरा यही काम है कि इन 10 गानों के माध्यम से मैं आपका मूड ठीक करूं, मूड को फ्रेश करूं और पूरे दिन की थकावट को दूर करूं। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 5वें नंबर के गाने की तरफ और उस गाने को एंजॉय करते हैं और मेरे यानी उत्कर्ष के साथ 100.7 FM रेनबो पर बने रहते हैं।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
0: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का

0: जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
0: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registration.tourist.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

दोस्तों 5:41 का समय और आप सुन रहे हैं टॉप 10 गाने हमारे 100.7 एफएम रेनबो के इस खास कार्यक्रम के अंतर्गत इस खास पेशकश में आप सभी छठे नंबर के गाने तक पहुंच चुके हैं और मुझे लगता है कि इन 6 गानों के दौरान आप सभी को बहुत ज़रा आनंद आया होगा, आपने बहुत ज़रा इन्जॉय भी किया होगा और मुझे लगता है कि इस एंजॉयमेंट को इसी तरीके से बरकरार रखना चाहिए। इस एंजॉयमेंट को कंटिन्यू करते हैं और अपने मूड को रिफ्रेश करने का जो ये सिलसिला है उसको आगे बढ़ाते हैं, 7वें नंबर के गाने की ओर बढ़ते हैं और बने रहिए मेरे यानी उत्कर्ष के साथ, क्योंकि भैया 7वें नंबर का गाना आपको बहुत ज़रा सूदिंग लगने वाला है, आपके मूड को एकदम रिफ्रेश करेगा और कुछ नहीं करना है आपको, सीट की जो बेल्ट है आपकी ना उसको एकदम कस करके रखिए और मेरे यानी उत्कर्ष के साथ बने रहिए।

भैया दोस्तों, 5:52 का समय और हम सभी पहुंच चुके हैं अपने 9 नंबर के गाने की तरफ। आइए उसको सुनते हैं, उसका लुत्फ उठाते हैं और एंजॉय करते हैं इस टॉप 10 गाने के सिलसिले को।

दोस्तों 5:56 का समय जो घड़ी की सुइयां हैं मुझे इशारा कर रही हैं कि भैया टॉप 10 गाने के ऐसे सिलसिले को यहीं पर रोका जाए, लेकिन उसको रोकने से पहले नंबर 1 का गाना मैं आपके रेडियो सेट्स पर लेकर के आ गया हूँ। उस नंबर 1 के गाने को आप सुनिए, उसका मजा लीजिए और मेरे यानी उत्कर्ष के पास वापस लौट करके जरूर आइएगा, क्योंकि अगला कार्यक्रम बहुत ही खास है। शामी अवध कार्यक्रम में मैं आपके साथ में जुड़ूंगा, बहुत सारी बातें करेंगे, लखनऊ के बारे में चर्चा करेंगे और बहुत सारे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे गीत भी सुनेंगे। मैं आपके लिए लिख करके जो लेकर के आया हूं, तो आपको कुछ नहीं करना है, कुर्सी की पेटी और भी जोर से आप बांध लीजिए, टाइट करके रखिए और मेरे यानी उत्कर्ष के साथ बने रहिए।

नमस्कार, आप सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इटली के रोम में वहां की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। इस बातचीत का उद्देश्य प्रमुख क्षेत्रों में दोनों देशों के संबंधों और मजबूत करना है। बैठक में व्यापार, निवेश, टेक्नोलॉजी, रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और रणनीतिक साझेदारियों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। दोनों नेताओं ने आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद दोनों नेताओं ने संवाददाता सम्मेलन में संयुक्त बयान जारी किया है। श्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल गोरखपुर के रामगढ़ ताल में आयोजित जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप के समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर श्री योगी विजेताओं को पुरस्कृत कर संबोधन के जरिए सभी खिलाड़ियों का मार्गदर्शन करेंगे। उत्तर प्रदेश रोइंग एसोसिएशन के सचिव सुधीर शर्मा ने बताया कि चैंपियनशिप में मेजबान यूपी सहित 20 राज्यों की टीमों से 273 खिलाड़ी व पदाधिकारी प्रतिभाग कर रहे हैं। प्रदेश के एमएसएमई मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने आज लखनऊ में विभागीय समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश को विकसित राज्य बनाने में एमएसएमई सेक्टर की भूमिका को और सशक्त बनाया जाए। श्री चौधरी ने कहा कि प्रदेश में उद्यमियों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक में विभागीय प्रगति की समीक्षा करते हुए बताया गया कि प्रदेश में वर्तमान में 96 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयां संचालित हैं, जिनके माध्यम से लगभग 3 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार एवं स्वरोजगार प्राप्त हो रहा है। साथ ही प्रदेश के कुल निर्यात में एमएसएमई क्षेत्र का योगदान लगभग 86% है। इस अवसर पर राज्य मंत्री हंसराज विश्वकर्मा भी उपस्थित रहे। आपदा प्रबंधन और राहत बचाव तैयारियों की जांच के लिए एनडीआरएफ ने आज प्रदेश के वाराणसी, गाजीपुर, मिर्जापुर, जौनपुर, लखनऊ, गोरखपुर, प्रतापगढ़ तथा मध्य प्रदेश के भोपाल और विदिशा में व्यापक मोबिलाइजेशन, ड्रिल एवं मॉक अभ्यास किया। वाराणसी में एनडीआरएफ के उप महानिरीक्षक मनोज कुमार शर्मा के निर्देशन में आयोजित अभ्यास में बाढ़, नाव दुर्घटना, भवन ध्वस्त, भूकंप तथा रासायनिक एवं जैविक आपदाओं जैसे विभिन्न परिदृश्यों पर राहत एवं बचाव कार्यों का अभ्यास किया गया। एनडीआरएफ की विशेष टीमों ने आधुनिक उपकरणों की मदद से राहत अभियान चलाया। अभ्यास में जिला प्रशासन, एसडीआरएफ, पुलिस, फायर ब्रिगेड एवं स्वास्थ्य विभाग सहित विभिन्न एजेंसियों ने सहभागिता की। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 7 बजे प्रसारित होगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

आदाब अर्ज़ है लखनऊ, मैं हूं उत्कर्ष और आप सुन रहे हैं शाम है अवध सिर्फ आकाशवाणी एफएम रेनबो 100.7 पर। शाम के 6 बज चुके हैं और 20 मई की इस सुहानी शाम में आप सभी का इस्तकबाल है। दिन भर की तपिश और धीरे धीरे ढल रही और गोमती के किनारे जो सूरज ढल रहा है ना, वहाँ से जो आ रही ठंडी ठंडी सी हवा है जो अजीब सा सुकून हमको दे रही है, और ऑफिस और क्लास की टेंशन, मैं आप सभी को सभी से चाहता हूँ कि भैया उस सुकून में कहीं ना कहीं आप खो जाएं, और ऑफिस की जो टेंशन है, जो आपकी क्लास की टेंशन है, उसको पीछे

दीजिए, क्योंकि एक घंटा सिर्फ आपके और लखनऊ के नाम होने वाला है। लखनऊ की बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, अपडेट्स दूंगा मैं आप सभी को ट्रैफिक के बारे में कि किस क्षेत्र में आप जाएं जहां पर आपको ट्रैफिक ज़्यादा मिल सकता है या कम मिल सकता है। तो इन सभी विषयों के बारे में बात करते करते हम लोग खूबसूरत गानों को भी सुनेंगे। तो दोस्तों, मेरे यानी उत्कर्ष के साथ बने रहिए और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं। यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
0: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है।

0: और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: यू आर लिसनिंग टू 100.7 FM रेनबो, द हार्ट बीट ऑफ लखनऊ।

दोस्तों 6:15 का समय और ऐसा शाम है वक्त के खास कार्यक्रम में मैं उत्कर्ष हूँ आपके साथ। आप सुन रहे हैं 107 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की। आइए सबसे पहले बात करते हैं आज के ट्रैफिक की। बुधवार की शाम में तो भैया जाहिर है सड़कों पर रौनक और रफ्तार दोनों ही मौजूद होंगी। इस वक्त हजरतगंज और 1090 चौराहे के आसपास ट्रैफिक जो है बहुत ज़्यादा भारी है। अगर आप वहां से निकल रहे हैं तो थोड़ा सा भैया समय लेकर के निकलें। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ और याद दिला दूँ कि गोमती बैराज वाला रास्ता 15 जून तक मरम्मत के लिए बंद है। तो अगर आप समता मूलक से उधर जाने की सोच रहे हैं तो अपना रूट डाइवर्ट ज़रूर कर लें और बहुत ज़रा हॉर्न मत बजाइए ट्रैफिक में रह करके। आराम से अपनी ड्राइव को एंजॉय करिए, मेरे यानी उत्कर्ष के साथ बने रहिए, अच्छे अच्छे गाने सुनिए। एसी का जो लुत्फ है आप गाड़ी के अंदर जो उठा रहे हैं उसका भी उठाइए, थोड़ी सी बाहर की हवा भी लीजिए। अगर बाहर की हवा थोड़ी सी ठंडी हुई है, क्योंकि मैं भैया अभी स्टूडियो में बैठा हूँ, मुझे नहीं पता बाहर का कैसा माहौल है, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। हेलो FM कार्यक्रम में आप बने रहिए मेरे यानी उत्कर्ष के साथ और सुनते रहिए 107 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।

0: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
0: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें, विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

दोस्तों 6:27 का समय और आप शाम अवध कार्यक्रम में मेरे यानी उत्कर्ष के साथ जुड़े हुए हैं, सुन रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की, जिसको आप कहते हैं। तो दोस्तों आइए बात कर लेते हैं हमारे लखनऊ के कुछ ऐसे शोज के बारे में, कुछ ऐसे इवेंट्स के बारे में जो अभी हाल ही में चल रहे हैं। शहर की ताज़ा हलचल, कैसरबाग के संगीत नाटक एकेडमी में क्लासिकल म्यूज़िक और फोक डांस का एक बहुत ही शानदार इवेंट जो है भैया चल रहा है। आज शाम वहाँ कुछ बेहतरीन युवा कलाकार अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। अगर आप शहर के शोर से दूर कला और सुकून की तलाश में हैं तो वहाँ का चक्कर ज़रूर लगाइएगा। हमारे शहर की यही तो खूबी है कि भैया यहाँ हर शाम किसी मुशायरे या महफिल में तब्दील हो जाती है। तो दोस्तों लखनऊ की अगर शाम को आपको एंजॉय करना है तो आप कैसरबाग ज़रूर जाएँ, हज़रतगंज जाएँ, ऐसे बहुत सारे इवेंट्स चलते रहते हैं जहाँ पर मुशायरे होते हैं और जो कि मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया, तो वहाँ पर जाएँ और ना शोज़ का, उन इवेंट्स का ज़रूर लुत्फ़ उठाएं। और अभी क्या करना है आपको, आपको पता है, आपको मेरे यानी उत्कर्ष के साथ बने रहना है, इन खूबसूरत खूबसूरत से गानों को सुनना है और जो अपडेट्स मैं आपको देते रहता हूँ उनसे भी अपडेटेड रहना है। तो दोस्तों 6:29 का समय, आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।

0: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: Keep listening to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की।

0: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
1: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
0: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।
1: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-444।
2: जी हाँ दोस्तों, 6:41 का समय और मैं उत्कर्ष हूँ आपके साथ। आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो के इस बहुत ही खूबसूरत से कार्यक्रम शाम अवध में। तो दोस्तों, इस शाम अवध के कार्यक्रम में हम लोग बहुत सारे बातों के बारे में चर्चा करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं और लखनऊ के बहुत सारे जो इवेंट्स हैं या जो लखनऊ के जो कुछ अपडेट्स हैं, चाहे वो ट्रैफिक हो, चाहे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हों जिनके बारे में हमको जानना ज़रूरी है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते हैं, हम आपको बताते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो मई का आधा महीना गुजर चुका है, ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं और रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स और हमारे युवा साथी। हवा में थोड़ा सा तनाव होना बहुत ज़्यादा लाजमी है, लेकिन मेरे युवा दोस्तों, एक मार्कशीट मैं आपको बता दूँ, आपकी ज़िंदगी का फैसला नहीं कर सकती। जो हो गया उसे पीछे छोड़ दीजिए। अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ तो उसको पीछे छोड़ दीजिए, उसको बात को जाने दीजिए और आगे की चीज़ों पर ध्यान रखिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको पढ़ाई नहीं करनी है, लेकिन आपको पढ़ाई के साथ साथ स्किल्स भी आप के अंदर डेवलप होने चाहिए। आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखनी हैं जो समय के हिसाब से ज़रूरी हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपको सीखना चाहिए, डेटा एनालिटिक्स के बारे में आपको सीखना चाहिए, जो समय का एक डिमांड है, जो टाइम की एक डिमांड है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए और उन डिमांड्स को ज़रूर फुलफिल करना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपने साथ अच्छा करिए, अपने जीवन में अच्छा करिए और इस शाम को खुद को रिबूट करने के लिए इस्तेमाल कीजिए और एक गहरी सांस लीजिए, कहिए सब ठीक है।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज डाइट प्लान और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।

जी हाँ दोस्तों, 6:53 का समय और आप सुन रहे हैं शाम अवद कार्यक्रम आपके पसंदीदा चैनल 100.7 FM रेनबो पर। मैं उत्कर्ष हूँ आपके साथ। और दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम लोगों ने बहुत सारी चर्चाएं की। एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट चर्चा मुझे लगता है कि आप सभी से मुझे करनी चाहिए। आज हम अपने शहर लखनऊ से बहुत ज़रा प्यार करते तो हैं, लेकिन कभी कभी इस शहर में, इस प्यार में हम एक छोटी सी चूक ज़रूर कर देते हैं। शाम को मरीन ड्राइव या पार्कों में घूमने के बाद हम अक्सर प्लास्टिक की बोतलें या कचरा वहीं छोड़ देते हैं। ये शहर हमारा घर है, इसे साफ रखना सिर्फ नगर निगम की ही नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगली बार कूड़ा हमेशा डस्टबिन में डालें। नवाबों के शहर की नज़ाकत हमारी साफ सफाई में भी दिखने चाहिए दोस्तों। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम सभी को ध्यान में रखनी चाहिए और इसको अपने जीवन में कहीं भी हम जाएं वहां पे लागू करना चाहिए। तो 6:54 का समय और इस घटना में आप सभी से इजाज़त भी लेना चाहूँगा कि इस शाम अवध कार्यक्रम को यहीं पर रोका जाए। लेकिन लेकिन लेकिन आप सभी को कहीं नहीं जाना है। अगला कार्यक्रम हेलो FM कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें आप सभी हमको कॉल करते हैं, हमसे बात करते हैं, अपना पसंदीदा गाना हमको बताते हैं और किसको किसको डेडिकेट किया आपने वो गाना, वो भी हमसे बहुत ज़्यादा शेयर करते हैं। आप तो, आपको कहीं नहीं जाना है। 100.7 FM रेनबो पर मेरे यानी उत्कर्ष के साथ बनकर रहना है। और इस आखिरी गाने को सुनिए, इंजॉय करिए और लौट करके मेरे पास यानी उत्कर्ष के पास वापस आ जाइए।

नमस्कार, अब सुनिए टॉप 10 समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर क्लस्टर प्रोजेक्ट गंगा और गेहूं के इन हाउस प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए मंडी शुल्क एवं मंडी सेस में संभावित छूट जैसे विषयों की समीक्षा की। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में आज जनभवन में जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया से संबंध शासकीय और वित्तीय पोषित महाविद्यालयों की समीक्षा बैठक हुई। उन्होंने विद्यार्थियों के समग्र विकास का विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल गोरखपुर में आयोजित जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप के समापन समारोह में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश रोइंग एसोसिएशन के सचिव सुधीर शर्मा ने बताया कि चैंपियनशिप में मेजबान यूपी सहित 20 राज्यों की टीमों से 273 खिलाड़ी और हिस्सा ले रहे हैं। प्रदेश के एमएसएमई मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने आज लखनऊ में विभागीय समीक्षा बैठक की। श्री चौधरी ने कहा कि प्रदेश में उद्यमियों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आज कुशीनगर में निर्माणाधीन कृषि विश्वविद्यालय का निरीक्षण कर जुलाई माह के अंत तक कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के बाद उन्होंने समीक्षा बैठक भी की। प्रदेश के खाद्य एवं रसद मंत्री मनोज पांडे की अध्यक्षता में आज खाद्य और रसद विभाग की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में विभागीय योजनाओं, गेहूं क्रय, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, राशन वितरण व्यवस्था तथा आमजन को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की समीक्षा की गई। प्रदेश में लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा कल 44 जिलों में 861 केंद्रों पर होगी। करीब 8,000 पदों के लिए होने वाली इस परीक्षा में लगभग 3,66,700 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा को लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रदेश में जारी स्वगणना का कल अंतिम दिन है। राज्य के जनगणना निदेशक और मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने लोगों से स्वगणना में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज रायबरेली दौरे के दूसरे दिन स्थानीय लोगों और व्यापारियों से मुलाकात की और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। अमेठी में भी उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू के चलते जन जीवन प्रभावित हो रहा है। बीते 24 घंटों में 48.2 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ बांग्लादेश भर में सबसे गर्म जनपद रहा। मौसम विभाग ने आगामी 2 दिनों के लिए लू चलने को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ टॉप 10 यही समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: जी दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। 7:04 का समय और इस समय वक्त हो गया है हेलो एफएम कार्यक्रम का। तो दोस्तों आइए जल्दी से बात करते हैं। हमारे साथ में एक लिसनर जुड़े हुए हैं, बहुत देर से हमारा इंतजार कर रहे हैं, कह रहे हैं भैया न्यूज जल्दी से खत्म करिएगा और हमसे बात करिएगा, हमारा पसंदीदा गाना भी बजाइएगा। तो आइए उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो हम सभी को कौन सा गाना सुनाना चाहते हैं। हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी, कौन सा बात कर रहे हैं? अपना नाम बताइए सबसे पहले।
1: आपको गुड इवनिंग।
0: गुड इवनिंग भाई साहब, कैसे हैं आप?
1: ठीक, बढ़िया है सर, आप बताइए कैसे हैं?
0: मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। अपना नाम बताइए सबसे पहले।
1: विनीत कुमार बोलेन, ग्राम अर्थापुर, पोस्ट रामगढ़, चीनी मिल, जिला सीतापुर से।
0: क्या बात है, विनीत कुमार जी सीतापुर से बात कर रहे हैं। सबसे पहले बताइए कौन सा गाना सुनेंगे आप और हमारे लिसनर्स को सुनाएंगे?
1: जीत फिल्म का है, दिल का क्या करे साहिब, हम उन्हीं पे मरते हैं।
0: दिल का क्या करें साहेब, क्या बात है।
1: दोस्तों को याद करें।
0: हाँ हाँ, बिल्कुल याद करिए।
1: आजाद सिमरी से है, हमारे रामगढ़ चीनी मिल के पास है। ओमकार सीतापुर से है, वहाँ पर भी अंसारी सीतापुर से है। संजय हरदोई से है, और संजू भी हरदोई से है। सुनील कुमार गोकुलपुर से है। संतोष कुमार मौर्य हरदोई कोथावा से है। ममता हरदोई से है। सुरभि सीतापुर से है। सीमा रावत राजाजी पुरम लखनऊ से है। गुलक्सा सिद्दीकी है चंडीला से। नवनीत मौर्या है लखनऊ से। हरिकेश मंसरा लखनऊ से हैं। रिंकी पिंकी राय बरेली से हैं। और जितने सुन रहे हैं सभी के लिए, आपके लिए।
0: क्या बात है, इतने सारे लोगों को आपने गाना डेडिकेट किया है। चलिए जल्दी से बजाते हैं इस गाने को और इस गाने का आनंद लेते हैं। क्यों विनीत जी, ओके, थैंक यू।

0: जी हाँ दोस्तों, 7:12 का समय आप सुन रहे हैं हेलो एफएम कार्यक्रम और मैं उत्कर्ष हूँ आपके साथ। तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको नहीं पता है कि आपको अपने दिल का क्या करना है तो मैं आपको बता देता हूँ। आपको अपना फोन उठाना है 0522 2238 852 या 2238 845 पर हमें कॉल करना है, हमसे बात करनी है, अपना पसंदीदा गाना बताना है और हमसे मीठी मीठी प्यारी प्यारी आवाज में बात करनी है। जो भी आप कहना चाहते हैं वो आप हमसे कह सकते हैं, हमें साझा कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए, हमारे साथ में ऐसे एक लिसनर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं, उनका पसंदीदा गाना जानने की कोशिश करते हैं, उसको बजाते हैं और उनसे कुछ मीठी मीठी बातें करते हैं। हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी
1: जी,
0: कौन सा बात कर रहे हैं
1: जी? सबसे पहले सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार।
0: जी नमस्कार जी, बताइए आगे।
1: जी जी सर, मेरा नाम है मोहम्मद फैज, रामपुर फुलवारी बाजार, जिला बाराबंकी से बात कर रहे हैं सर।
0: जी क्या बात है फैज जी, क्या बात है, बाराबंकी से आप बात कर रहे हैं। सबसे पहले बताइए कौन सा गाना सुनाएंगे आप हमारे लिसनर्स को?
1: जी जी, गाना तो सर जी बताएंगे, लेकिन अपने हालचाल बताइए, लखनऊ का मौसम बताइए सर, यहाँ इतनी आज गर्म पड़ गई है सर की पूछिए मत।
0: यार मौसम की अगर मैं बात करूँ तो भाई 4 बजे से पहले जब मैं बाहर था तो बहुत ज्यादा गर्मी थी, बहुत ज्यादा धूप थी। अभी तो मैं भाई स्टूडियो के अंदर हूँ तो थोड़ी सी गनीमत है। तो बाहर बहुत ज़रा मौसम ख़राब है, गर्मी बहुत ज़्यादा है और मैं चाहता हूँ कि भाई अगर बाहर आप निकलें तो बहुत ही हाइड्रेटेड रह करके पानी पी करके निकलें, ऐसे ना निकलें। जी बाराबंकी का बताइए, कैसा माहौल है, कैसा वहाँ का वातावरण है, कैसा मौसम है वहाँ पे?
1: जी बाराबंकी का सर जी हालचाल बहुत ही गर्म, इतनी गर्म पड़ रही है, इतनी गर्म पड़ रही है कि पूछे मत, 42-43 डिग्री हो गया है।
0: चलिए आप अपना ख्याल रखिए और बताइए कौन सा आप गाना सुनाएंगे हमारे लिसनर्स को?
1: अरे हम तो ख्याल रख

0: करते हैं साहब ने सभी सुनने वालों से, मेरा संदेश ये भी है कि सभी लोग मतलब पानी पीते रहे इस मौसम में।
1: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
0: आप भी पीते रहेगा देखिएगा, क्योंकि मतलब आप प्रोग्राम करने आते हैं
1: जी,
0: कोई बात ना आपको।
1: बिल्कुल मैं पानी पीता रहूंगा, आपकी जो जैसा आदेश रहेगा मैं उसका पालन करूंगा। क्यों फैज जी चलिए बताइए कौन सा गाना सुनाएंगे हमारे लिसनर्स को आप।
0: जी सर आज हम गाना सुनेंगे फलक तक चल साथ मेरे,
1: क्या बात है,
0: साथ चल, ये वाला सॉन्ग है सर।
1: मैं तो चाह रहा हूँ फैज जी आप ही ये गाना गा दीजिए, है ना, और तो ताकि हमारे लिसनर्स आप ही की आवाज में इस गाने को आनंद लें, है ना, और ठीक है चलिए इस गाने को मैं बजाता हूँ, इस गाने को आप एंजॉय करिए, जितने भी लोगों को आप डेडिकेट करना चाहते हैं उनका नाम जरूर आप मुझे लगता है कहेंगे अभी, है ना।
0: हेलो हेलो हेलो,
1: जी जी जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है।
0: सॉन्ग डेडिकेट करना चाहता हूँ सर।
1: बिल्कुल बिल्कुल डेडिकेट करिए आप।
0: ये सबसे पहले मेरे क्यूट से प्यारे वाले आरजे उत्कर्ष भाई को,
1: क्या बात है,
0: और उसके बाद मोहम्मद जावेद अख्तर भाई है, मोहम्मद आसिफ भाई है, रिंकी पिंकी है, समा परवीन आपा है, गुलाब साफी है, साहिबान सारी है, और बाबू भाई है, यासिर हमीद भाई है, और सुरखी है, और पर भाई है चौखंडी वाले, और उसके बाद मेरे भाई के भाई के, और मेरे पिताजी का नाम है मुबारक अली, और मोहम्मद सलमान भाई को बस।
1: चलिए बहुत अच्छी बात है, इन सभी को ये गाने डेडिकेट करते हैं, आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो। फैज जी आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके, धन्यवाद,
0: थैंक यू,
1: ओके,
0: थैंक यू सो मच।
1: सात बज के 20 मिनट से आप सभी सुनेंगे दिल्ली से, लखनऊ से, सॉरी माफ कीजिएगा, लखनऊ से रोजगार समाचार, यानी कि समाचार जो कि आप 7:20 से सुनते हैं, उनका लुत्फ उठाइए, उन जानकारियों के बाद में मैं अनी उत्कर्ष आपके साथ मौजूद रहूंगा।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से बुरा हाल। स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश। अगले 3 दिन तक जबरदस्त गर्मी की चेतावनी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट परीक्षा को लेकर सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ की अहम बैठक। गलत सूचनाएं फैलाने वाले नेटवर्क पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश। प्रदेश के 44 जिलों में कल होगी लेखपाल भर्ती परीक्षा। 3 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी होंगे शामिल। परीक्षार्थियों के लिए चलेंगी विशेष ट्रेनें। और प्रदेश में जारी स्वगणना का कल अंतिम दिन। 22 मई से शुरू होगी मकानों की गिनती। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू के चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है। आज 48 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ बांदा प्रदेश में सबसे गर्म जनपद रहा, जबकि हमीरपुर और प्रयागराज में पारा 46 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। मौसम विभाग ने आगामी 2 दिनों के लिए लू चलने को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। इसी क्रम में प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में आ गया है। उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने प्रदेश के सभी मंडलीय, जिला, संयुक्त शहरी और ग्रामीण चिकित्सा स्थानों में गर्मी से पीड़ितों को समुचित इलाज मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अस्पतालों में अतिरिक्त बेड, जीवन रक्षक दवाओं और आवश्यक औषधियों का पर्याप्त भंडार रखने के निर्देश दिए हैं। तेज गर्मी से वन्य जीवों को बचाने के लिए भी खास इंतजाम किए जा रहे हैं। इटावा सफारी पार्क के उपनिदेशक विनय सिंह ने बताया कि सफारी में शेरों के लिए एसी और खस की चटाई का प्रबंध किया गया है।
1: सफारी पार्क में जो भी वन्य जीव हैं, उनको गर्मी और लू से बचाने के लिए एक विशेष इंतजाम किए जाते हैं, जिनके अंतर्गत जो हमारे हाउस हैं, उनमें खस की चटाई लगाना, इसके साथ कूलर को लगाते हैं ताकि कमरे का टेम्परेचर मेंटेन रह सके। जो भी ब्रीडिंग वाली शेरनी है, उसके नवजात बच्चे रहते हैं, शावक रहते हैं साथ में, उनको एसी के माध्यम से उनके कमरे का तापमान मेंटेन किया जाता है।
0: गर्मी और लू से बचाव के लिए विभिन्न जनपदों में स्कूलों के समय में भी बदलाव किया गया है। फतेहपुर में जिलाधिकारी ने कक्षा 1 से 8 तक के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं मिर्जापुर में भी 15 जून तक स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। कानपुर में जिलाधिकारी ने कक्षा 8 तक के सभी विद्यालयों को 31 मई तक बंद रखने का आदेश दिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में आगामी नीट यूजी 2026 की दोबारा होने वाली परीक्षा के मद्देनजर केंद्रीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में श्री प्रधान ने परीक्षा को सुरक्षित, निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से संपन्न कराने के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। प्रधान ने ऐसे नेटवर्कों पर कार्रवाई के निर्देश दिए जिसमें फर्जी जानकारी फैलाने वाले चैनलों की सक्रिय पहचान, उन्हें ब्लॉक करना और हटाना शामिल है। शिक्षा मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को शिक्षा मंत्रालय, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि गलत सूचना पर तुरंत रोक लगाई जा सके और परीक्षा प्रणाली की अखंडता की रक्षा की जा सके। प्रदेश में लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा कल 44 जिलों के 861 केंद्रों पर होगी। करीब 8,000 पदों के लिए होने वाली इस परीक्षा में लगभग 3,66,700 अभ्यर्थी शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
2: लेखपाल भर्ती परीक्षा को लेकर कृषि उत्पादन आयुक्त दीपक कुमार ने तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि परीक्षा को शुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिन जिलों में सर्वाधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे, वहां विशेष सतर्कता बरती जाए। रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर अभ्यर्थियों और उनके परिजनों की सुरक्षा और सुविधा के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किए जाएं और होल्डिंग एरिया बनाए जाएं। उन्होंने सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखने के साथ ही लोकल इंटेलिजेंस को भी सक्रिय रखने के निर्देश दिए। गर्मी के मद्देनजर परीक्षा केंद्रों पर विद्युत आपूर्ति, पीने का पानी की व्यवस्था के अलावा

0: के अस्पतालों को भी अलर्ट मोड पर रखने को कहा गया है। परीक्षा की जिला और राज्य स्तर के कंट्रोल रूम से लगातार निगरानी की जाएगी। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी।
1: परीक्षार्थियों के आवागमन के लिए रेलवे द्वारा विशेष ट्रेनों का संचालन भी किया जा रहा है। रेलवे प्रशासन ने बरेली जंक्शन और मथुरा जंक्शन के बीच 2 स्पेशल ट्रेनों का संचालन करने की घोषणा की है। वहीं पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर लखनऊ परीक्षा स्पेशल ट्रेन का संचालन कर रहा है, जो 21 मई की रात 12:30 बजे गोरखपुर से रवाना होगी और सुबह 6:40 पर लखनऊ पहुंचेगी। वापसी में लखनऊ गोरखपुर अनारक्षित स्पेशल ट्रेन 6:15 बजे लखनऊ से चल कर 11:55 पर गोरखपुर पहुंचेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर क्लस्टर प्रोजेक्ट गंगा और गेहूं के इनहाउस प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए मंडी शुल्क में छूट जैसे विषयों की समीक्षा की। इस उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। एक रिपोर्ट।
2: यूपी डेटा सेंटर क्लस्टर की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना उत्तर प्रदेश के एआई मिशन की बुनियादी संरचना तैयार करेगी। उन्होंने कहा कि डेटा सेंटर क्लस्टर केवल एनसीआर क्षेत्र तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रदेश के अन्य हिस्सों को भी इससे जोड़ा जाए। प्रोजेक्ट गंगा की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन युवाओं को डिजिटल उद्यमी के रूप में चुना जाए, उन्हें गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दिया जाए। मुख्यमंत्री ने ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के तेजी से विस्तार और कार्यों में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने गेहूं के इन हाउस प्रसंस्करण को बढ़ावा देने की रणनीति की समीक्षा के दौरान मंडी टैक्स और मंडी शुल्क व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि प्रदेश की मंडियों को आधुनिक, स्वच्छ और आकर्षक बनाया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में जारी स्वगणना का कल अंतिम दिन है। राज्य के जनगणना निदेशक और मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने बताया कि नागरिकों को स्वगणना के लिए census.gov.in वेबसाइट पर जाकर अपने राज्य को चुनना होगा और फिर परिवार के मुखिया का नाम, मोबाइल नंबर या ईमेल के जरिए लॉगिन कर जानकारी भरनी होगी। मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी ने बताया कि गणना पर 11 अंकों का एक कोड प्राप्त होगा, जिसे प्रगणक के घर आने पर देना होगा, जिससे जानकारी का सत्यापन होगा। उन्होंने लोगों से स्वगणना में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत प्रदेश में 22 मई से मकानों की गणना शुरू होगी, जो 22 जून तक चलेगी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल विस्तार में कैबिनेट मंत्री बने भूपेंद्र चौधरी ने आज सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री के तौर पर कामकाज संभाल लिया है। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास में एमएसएमई की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य है कि अधिक से अधिक लोगों को इसके माध्यम से रोजगार प्राप्त हो।
3: और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के विकास में जिस प्रकार से एमएसएमई विभाग की भूमिका है और उस भूमिका में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार, स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हो, इसका प्रयास और इस लक्ष्य को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में 46% निर्यात इन्हीं इकाइयों के द्वारा उत्पादित सामानों का होता है, तो इसे आगे बढ़ाएं, इसका प्रयास हम लोग करेंगे। और उत्तर प्रदेश एक विकसित राज्य की ओर बढ़ रहा है, हमारा विभाग उसमें एक महती भूमिका निभाए, इसका प्रयास हम सब लोग मिलकर करेंगे।
1: प्रयागराज से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू करने को नागर विमानन महानिदेशालय ने मंजूरी दे दी है। प्रयागराज एयरपोर्ट के निदेशक राजेश चावला ने बताया कि जेवर एयरपोर्ट का संचालन शुरू होने के बाद प्रयागराज जेवर फ्लाइट की समय सारणी जारी की जाएगी। नई उड़ान सेवा शुरू होने से प्रयागराज से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाने वाले यात्रियों को काफी सुविधा होगी।
4: प्रयागराज एयरपोर्ट के ऊपर एक हफ्ते में 60 फ्लाइटों का आना जाना है। और अभी ये जो जेवर एयरपोर्ट जून से शुरू हो रहा है, इसमें अभी जैसे ही ये थोड़ा अभी तो कुछ कम फ्लाइटों से वहां से आना जाना शुरू होगा। इंडिगो की एक फ्लाइट शेड्यूल्ड है जो कि जेवर से प्रयागराज और प्रयागराज से जेवर जाएगी, क्योंकि तो अभी उसका पूर्णतः वो नहीं हुआ, शुरुआत नहीं हुई। जैसे ही वो जैसे जैसे फ्लाइट की संख्या वहां बढ़ती जाएगी तो हमारे यहाँ भी एक फ्लाइट आने का समर शेड्यूल में प्रोग्राम है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से बुरा हाल, स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश। अगले 3 दिन तक जबरदस्त गर्मी की चेतावनी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट परीक्षा को लेकर सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ की अहम बैठक। गलत सूचनाएं फैलाने वाले नेटवर्क पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश। प्रदेश के 44 जिलों में कल होगी लेखपाल भर्ती परीक्षा। 3 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी होंगे शामिल। परीक्षार्थियों के लिए चलेंगी विशेष ट्रेनें। और प्रदेश में जारी स्वगणना का कल अंतिम दिन। 22 मई से शुरू होंगी मकानों की गिनती। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: दोस्तों 7:30 का समय अभी आप सुन रहे थे लखनऊ से प्रादेशिक समाचार। उन सभी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आइए इस हेलो एफएम के खास कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आइए हमारे लिसनर से बात करते हैं। हमारा बहुत देर से जो इंतजार कर रही थी कि भैया न्यूज जल्दी से खत्म हो तो उनको बात करने का अवसर प्राप्त हो, हमें वो अपना पसंदीदा गाना बताएं और हमसे बहुत सारी बातें करें, तो आइए उनसे बात करते हैं। हेलो
1: हेलो, गुड इवनिंग सर
0: जी। गुड इवनिंग, कैसी हैं आप
1: जी? हम तो बहुत अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। सबसे पहले बताइए आपका नाम क्या है भाई
1: जी? हम गलत सिद्दीकी बोल रहे हैं संडीला से
0: जी। सिद्दीकी जी, कैसी हैं आप और संडीला कैसा है आपका?
1: संडीला भी बहुत अच्छा है, लड्डू भी बहुत अच्छे हैं और मौसम भी बहुत अच्छा है। इस वक्त तो थोड़ा ठंडा है।
0: इस समय थोड़ा सा जो है राहत मिली होगी गर्मी से, क्यों?
1: जी जी, छत के ऊपर जाओ थोड़ा ठंडा लगता है, नीचे तो बहुत गर्म लगती है।
0: हाँ, छत के ऊपर थोड़ा सा सोने में जो आनंद आता है ना गाँव में,
1: जी जी सर,
0: तो बहुत अच्छा लगता है। तो बताइए कौन सा गाना सुनेंगे आप?
1: हमको तुमसे प्यार है,
0: वाह,
1: टाइटल सॉन्ग।
0: क्या बात है, और किसको डेडिकेट कर रही हैं आप गाना?
1: सबसे पहले आपको, मेरे हस्बैंड है जिसान खान, शमा परवीन है, साहिब अंसारी है, सादी अंसारी है, निशा अंसारी है, ममता गौतम, सनीला, जितने लोग सुन रहे हैं सबको, और आने वाली बकरा ईद की सबको बहुत बहुत मुबारकबाद।
0: आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद और आपको एंजॉय करना चाहिए इस फेस्टिवल को अच्छे से।
1: जी सर, चांद तो निकल चुका है जी सर।
0: चलिए बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत मुबारकबाद
1: जी सर, कॉल उठाने के लिए थैंक यू।
0: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके। आपका गाना मैं बजाता हूँ और आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ।
1: थैंक यू, थैंक यू,
0: ओके, बाय बाय।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज डाइट प्लान और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
3: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं। यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
2: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
3: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
4: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
5: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
6: साठ बज के 39 मिनट का समय, आप सुन रहे हैं हेलो FM कार्यक्रम। मैं हूं उत्कर्ष आपके साथ और आइए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, हमारे अगले लिसनर से बात करते हैं। बहुत देर से भैया वो हमारा वेट कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं, उनका पसंदीदा गाना जानते हैं और वो क्या हमसे कहना चाहते हैं वो भी उन्हीं की आवाज़ में सुनते हैं। हेलो।
7: हेलो, नमस्ते सर जी।
6: जी नमस्ते, कैसे हैं आप?
7: जी बढ़िया है, ठीक है सर जी। गर्मी के मौसम में आपका प्रोग्राम एंजॉय कर रहे थे, लेकिन जब मेरी कॉल लग गई तो आपको एकदम हैप्पी और कूल सब चीज हो गए।
6: क्या बात है, चलिए आप कूल हो गए इस गर्मी में, और कॉल लगने के बाद अगर मुझे लगता है कि लोग कूल हो रहे हैं तो मुझे लगता है कि भैया सबका कॉल लगना चाहिए, है ना?
7: सबका कॉल लगना चाहिए और
6: बिल्कुल,
7: लेकिन कॉल लगती है तो अच्छा बहुत लगता है, सारी गर्मी दूर हो गई।
6: क्या बात है, गर्मी आपकी पूरी दूर हो गई। तो बताइए सबसे पहले अपना नाम तो बताइए हम सभी को।
7: जी हम मोहम्मद तालिब अंसारी बोल रहे हैं, राजा कटरा बाराबंकी से।
6: क्या बात है तालिब अंसारी जी, बाराबंकी से आप बात कर रहे हैं, तो बताइए कौन सा आप गाना सुनेंगे और हमारे लिसनर्स को सुनाएंगे?
7: जी हम आपका सुरूर मूवी का सॉन्ग सुनेंगे, या अली।
6: या अली आपका सुरूर, क्या बात है।
7: रेशमिया भाई साहब का गीत है। चलिए, रेशमिया भाई साहब के गीत सर जी बहुत कम सुनने को मिलते हैं अब, लेकिन जब कभी कभी दिन में सुनने को मिल जाते हैं, लेकिन दिन में हम कनेक्ट नहीं हो पाते हैं।
6: अच्छा अच्छा अच्छा,
7: मतलब सुन लेते हैं लेकिन हम जुड़ नहीं पाते। हाँ मेल तो हम जुड़ जाते हैं, लेकिन शाम को अब दिन बड़ा हो गया है,

0: तब भी, लेकिन अब सेकंड हाफ में हमको मौका मिल पाता है तो इसलिए उसमें हम किसी तरीके कोशिश करते हैं कि मेरी कॉल लग जाए।
1: क्या बात है,
0: बहुत अच्छा लगता
1: है। चलिए, आपकी इस डिमांड को ध्यान में रखा जाएगा और मैं सभी से कहूंगा कि भैया हिमेश रेशमिया के गाने को हम लोग प्ले करें और ज्यादा से ज्यादा प्ले करें, है ना
0: जी।
1: चलिए, इनके गाने को बजाते हैं। किसी को आप डेडिकेट कर रहे हैं ये गाना?
0: जी हम भाई हैं हमारे आशीष साबिर।
1: चलिए, बहुत अच्छी बात है, ये गाना प्ले करते
0: हैं। कॉल उठाया इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि हमने आपसे बात करी और आपने हमसे बात करी, है ना
0: जी। थैंक यू।
1: ओके, धन्यवाद आपका।

0: जी हाँ दोस्तों, 7:45 का समय और हेलो एफएम कार्यक्रम में आप सभी का बहुत देर से मैं स्वागत कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी हमें कॉल करें, हमसे बात करें, अपना पसंदीदा गाना बताएं, ताकि हमारी जो लिस्ट है ना गाने की, उसमें और भी बहुत सारे गाने इंक्लूड हो पाएँ, ऐड हो पाएँ। तो आइए, हमारे साथ में एक लिसनर जुड़े हुए हैं, मुझे लगता है जिनका पहली बार हमारे इस रेडियो सेट पर कॉल लगा है। उनसे बात करते हैं, उनका पसंदीदा गाना जानने की कोशिश करते हैं और वो हमसे क्या कहना चाहते हैं वो भी उन्हीं की आवाज़ में सुनते हैं। हेलो हेलो हेलो
1: हेलो
0: जी, कौन साहब बात कर रहे हैं भाई, जल्दी से अपना नाम बताइए।
1: जी हम सुशील कुमार बोल रहे हैं।
0: सुशील कुमार जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: जिला बाराबंकी, ग्राम सिंहसामा गांव से बोल रहे हैं।
0: क्या बात है, बाराबंकी से आप बात कर रहे हैं, तो बताइए आपका पहली बार कॉल लगा है क्या यहाँ पे?
1: नहीं, बहुत पहले मिला था, मतलब कभी कभी लगाते, टाइम मिलता तो लगाते हैं फोन।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, बहुत पहले आपका कॉल लगा था। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आज आपका कॉल लगा है, बहुत बहुत बधाई आपको। तो बताइए कौन सा गाना सुनाएंगे आप हम सभी को?
1: जी हम गाना सुनना चाहते हैं, कोई आएगा लाएगा दिल का चैन।
0: कोई आएगा लाएगा दिल का चैन, क्या बात है। चलिए, तो कोई आएगा जिसका इंतजार है अभी आपका जीवन में?
1: जी हम अपने वाइफ को सुना चाहते को।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, और किसी को डेडिकेट कर रहे हैं गाना?
1: जो लोग सुनना चाहते सबको सुना चाहते।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, गाना आपके लिए मैं प्ले करता हूँ, आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: जी दोस्तों, 7:52 का समय और घड़ी की जो सुइयां हैं वो बहुत तेजी से इशारा कर रही हैं कि भैया हेलो एफएम के कार्यक्रम को यहीं पे थामा जाए, यहीं पे रोका जाए। लेकिन उससे पहले एक जो हमारे आखिरी लिसनर हैं उनसे बात करते हैं, उनका पसंदीदा गाना प्ले करते हैं, फिर उसके बाद में अपनी जो कमान है इसको छोड़ेंगे और दूसरे जो हमारे एंकर ऑलरेडी स्टूडियो में आ चुके हैं उनका स्वागत करेंगे। तो आइए सबसे पहले हमारे लिसनर से बात करते हैं और उनका पसंदीदा गाना कौन सा है भैया उसको जानने की कोशिश करते हैं। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आपकी आवाज़ थोड़ी सी मुझे लगता है कि नेटवर्क में नहीं है, आप थोड़ा सा नेटवर्क में आइए या थोड़ा सा रेडियो से दूर हट करके बात करिए। हाँ, आपकी आवाज़ ठीक है लेकिन थोड़ी सी मुझे लगता है कि चलिए कोई बात नहीं, आप बताइए कहाँ से बात कर रही हैं, आपका क्या नाम है? क्या बात है साहिबा जी, लखीमपुर से आप बात कर रही हैं, कौन सा गाना आप सुनना चाहेंगे?
1: हाथों में मेहंदी लगी
0: है। क्या बात है, हाथों में मेहंदी लगी है, चलिए इस गाने को आपको प्ले करेंगे। आपके लिए बताइए किसको किसको डेडिकेट कर रही हैं आप ये गाना?
1: सबसे पहले अपने अम्मी रब्बू को डेडिकेट करना चाहते हैं, उन्हीं की पसंद का गाना।
0: चलिए,
1: आपके संसारी भाई है, सैद अंसारी भाई, अकील अहमद मंसूरी भाई है, बाबू अंसारी भाई है, जावेद अख्तर भाई है, साजिद अंसारी भाई है, सत्यम कुमार भाई है,
0: चलिए मैं भी शामिल हूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे ये बात जानकर के।
1: बकरीद की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारक हो बकरीद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी बकरीद की बहुत बहुत मुबारकबाद और शुभकामनाएं। और चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपका गाना बजाता हूँ, आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: डियर रेनबो लिसनर्स, आपका और हमारा रिश्ता है बड़ा पुराना, पर इसे और भी गहरा बनाने आ रहा है एक खास बहाना।
1: जी हाँ, FM रेनबो कानपुर के कार्यक्रमों पर अब आप
2: UG 2026 की दोबारा होने वाली परीक्षा के मद्देनजर केंद्रीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसीज के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में श्री प्रधान ने परीक्षा को सुरक्षित, निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से संपन्न कराने के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता

0: पर जोर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। श्री प्रधान ने ऐसे नेटवर्क्स पर कार्रवाई के निर्देश दिए जिनमें फर्जी जानकारी फैलाने वाले चैनलों की सक्रिय पहचान, उन्हें ब्लॉक करना और हटाना शामिल है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित नेशनल रिव्यू ऑफ स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 कार्यक्रम में प्रदेश के ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने प्रतिभाग किया। श्री शर्मा ने प्रदेश में स्वच्छता एवं नगरीय विकास के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। प्रदेश में लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा कल 44 जिलों के 861 केंद्रों पर होगी। करीब 8,000 पदों के लिए होने वाली इस परीक्षा में लगभग 3,66,700 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षार्थियों के आवागमन के लिए रेलवे द्वारा विशेष ट्रेन का संचालन भी किया जा रहा है। रेलवे प्रशासन ने बरेली जंक्शन और मथुरा जंक्शन के बीच 2 स्पेशल ट्रेन को संचालित करने की घोषणा की है। वहीं पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर लखनऊ परीक्षा स्पेशल ट्रेन का संचालन कर रहा है जो 21 मई की रात 12:30 बजे गोरखपुर से रवाना होगी और सुबह 6:40 पर लखनऊ पहुंचेगी। प्रदेश में जारी स्वगणना का कल अंतिम दिन है। राज्य की जनगणना निदेशक और मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने बताया है कि नागरिकों को स्वगणना के लिए census.gov.in वेबसाइट पर जाकर अपने राज्य को चुनना होगा और फिर परिवार के मुखिया के नाम, मोबाइल नंबर या ईमेल के जरिए लॉगिन कर जानकारी भरनी होगी। मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी ने लोगों से स्वगणना में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत प्रदेश में 22 मई से मकानों की गणना शुरू होगी जो 22 जून तक चलेगी। प्रयागराज से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू करने को नागर विमानन महानिदेशालय ने मंजूरी दे दी है। प्रयागराज एयरपोर्ट के निदेशक राजेश चावला ने बताया कि जेवर एयरपोर्ट का संचालन शुरू होने के बाद प्रयागराज जेवर फ्लाइट की समय सारणी जारी की जाएगी। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन रात्रि 10 बजे प्रसारित किया जाएगा।
1: डियर रेनबो लिसनर्स, आपका और हमारा रिश्ता है बड़ा पुराना, पर इसे और भी गहरा बनाने आ रहा है एक खास बहाना।
2: जी हाँ, FM रेनबो कानपुर के कार्यक्रमों पर अब आपकी राय, आपकी पसंद और आपके सुझावों का रहेगा हमें इंतजार। लेकर आ रहे हैं हम अपना फीडबैक शो मेल मिलाप।
1: हमें बताइए आपको हमारे प्रोग्राम्स कैसे लगते हैं, क्या और सुनना चाहते हैं आप, तो नोट कीजिए हर महीने के चौथे बुधवार दोपहर 3:45 पर होगा हमारा आपका मेल मिलाप।
2: अपनी प्रतिक्रियाएं हमें लिखकर भेजें इस पते पर, कार्यक्रम मेल मिलाप, विज्ञापन प्रसारण सेवा, आकाशवाणी कानपुर, बेना झाबर रोड, कानपुर, पिन कोड है 208002।
1: हमें ईमेल करें, हमारा ईमेल एड्रेस है fmmelmilaap@gmail.com पर, यानी कि fmmelmilaap@gmail.com। भूलिएगा मत, हर महीने का चौथा बुधवार दोपहर 4:45 सिर्फ FM रेनबो कानपुर पर मेल मिलाप। डियर रेनबो,
3: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आएं आज ही दूरदर्शन का DD फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका DD फ्री डिश।

0: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से, केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
0: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: फर्क साफ इतना ही है बाहर में और हम में। बाहर खुशबू का बायस है, खुशबुएं बसी हैं हम में। तनिक सा जाविया बदला, जख्म जख्म हो गए। यही जज्बा बजाहिर है खार में और हम में। फर्क इतना ही है बाहर में और हम में।

पर सवाल करते हैं, यही सवाल जीना मुहाल करते हैं हम, और दोजानू हो दुआएं मांगे आप बिना कमाल करते हैं। रुत पर सवाल करते हैं, ये सवाल जीना

आसान समझते हैं जमाने वाले, खाली स्थान समझते हैं जमाने वाले, ये बर्फ सा लहजा उतर आता है सारी गर्माहटों पर, मगर सबको कहां इंसान समझते हैं जमाने वाले, इतना आसान समझते हैं जमाने वाले।

हसरतें छिपाकर रोज नौकरी पे जाते हैं, हसरतें छिपाकर रोज नौकरी पे जाते हैं, ख्वाबों को मिटाकर रोज नौकरी पे जाते हैं। सबके हिस्से में नहीं होता आसमान का सफर, हम खुदी को कांधे पे उठाकर रोज नौकरी पे जाते हैं, हसरतें छिपाकर रोज नौकरी पे जाते हैं।

बर्फ बनाए हैं। जश्न होगा कि खम कर दिए हैं सर और लहू को बर्फ बनाए हैं। हमने माना कि हम में खामियां हैं, मगर आप भी तो खूबियों में अना लाए हैं। तरसती निगाहों ने अब तो रास्तों की खबर रखना भी त्याग दिया। तरसती निगाहों ने अब तो रास्तों की खबर रखना भी त्याग दिया। और वो समझते हैं आपने वादा किया है, मगर आप तो सिर्फ बना आए हैं। जश्न होगा कि खम कर दिए हैं सर और लहू को बर्फ बना आए हैं।

यहीं तक, सुनने के लिए, हमारा साथ निभाने के लिए शुक्राना। नमस्कार, 44 मिनट और 52 सेकंड हो चुके हैं। आपसे कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे समाचार संध्या दिल्ली से।

भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने दुर्लभ खनिजों, रक्षा, कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार

0: पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ते प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिन में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच जारी। अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं।
1: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
1: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
0: सुश्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया।
1: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूँ।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। श्री सिंह ने रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
2: 12 वर्षों के अंदर ही हम 40,000 करोड़ से ज्यादा का इस समय हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं तो 2 साल के अंदर 50,000 करोड़ के एक्सपोर्ट, डिफेंस आइटम्स के एक्सपोर्ट की जानकारी आपको मिल जाएगी। और हमारी गवर्नमेंट के रहते डिफेंस सेक्टर में एक मेजर चेंज आया है। भारत की पॉलिसी आज रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव है, और मेरा भी यह व्यक्तिगत रूप से मानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा

0: कि किसी कीमत पर किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया जाएगा और इसी सोच के साथ भारत इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को तेजी के साथ बढ़ावा दे रहा है।
1: रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की घोषणा की है। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने के एक समारोह के दौरान नाबन्ना में उन्होंने कहा कि अब घुसपैठियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाएगा, वहां से उन्हें देश से निकालने के लिए BDR के साथ इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने इसे नए तरीके को पहचानो हटाओ और देश से निकालो बताया। गुजरात सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक का समर्थन किया है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बनी संयुक्त संसदीय समिति ने आज गुजरात के गांधीनगर में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा की। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि विधेयक को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए।
2: हमने आज JPC को गुजरात सरकार की ओर से खास तौर पे ये नम्र निवेदन किया है कि वन नेशन वन इलेक्शन जल्द से पास हो, सभी राज्य के नागरिकों को एक समान हित मिले, सभी लोगों के काम जल्द हो पाए, मशीनरी सरकारी जो है उसका कम से कम समय बिगड़े, वही हित में आज हमने वन नेशन वन इलेक्शन को हमने हमारा सहयोग दिया है और हमने ये खास तौर पे विनती की है इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए।
1: इस बीच कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों ने एक राष्ट्र एक चुनाव का विरोध किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NEET UG पुनर्परीक्षा के सुरक्षित निष्पक्ष और सुचारू संचालन के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये बात कही। इस दौरान गुमनाम ऑनलाइन समूहों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर चिंता व्यक्त की गई। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में 5 आरोपियों को 2 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अदालत ने एक अन्य आरोपी की CBI हिरासत भी बढ़ा दी है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने जम्मू कश्मीर में एक सशक्त नवाचार इकोसिस्टम के निर्माण के लिए 500 नई अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। नई लैब अटल नवाचार मिशन के व्यापक सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम का एक प्रमुख घटक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। ईरान संघर्ष के कारण वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष भारत की विकास दर 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। इससे भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अर्थशास्त्री इंगो पिटले ने

0: कहा कि भारत की मजबूत उपभोक्ता मांग, सार्वजनिक निवेश और सेवा निर्यात में वृद्धि इसकी अर्थव्यवस्था को सहारा दे रही है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 118 अंक बढ़कर 75,318 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 41 अंक की बढ़त के साथ 23,659 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 30 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी ₹96.83 पर बंद हुआ।
0: और अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी कल तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने अगले 2 दिन के लिए पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कल राजधानी में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग के अनुसार कल दिल्ली में अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पिछले 24 घंटों में राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि कल दिन के समय राष्ट्रीय राजधानी में 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना है। सौम्य के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस बीच विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम में भारी वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के अंतर्गत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि ये राष्ट्र को एकजुट करने का सशक्त माध्यम है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से हो रहा है। फिलहाल बारिश के कारण मैच रुका हुआ है। मैच रुकने तक मुंबई इंडियंस ने 8 ओवर में 4 विकेट पर 57 रन बना लिए थे। उधर मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन सुपर 500 में आज अश्मिता चलिहा, देविका सिहाग और मालविका बंसोड महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। संस्कृति मंत्रालय ने वंदे मातरम फ्रेम्स राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 7 मई से बढ़ाकर 31 मई कर दी है। प्रतियोगिता 3 श्रेणियों में आयोजित की जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने महत्वपूर्ण खनिजों, रक्षा, कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening, this is Akashwani and I am VC Pramod with the news at 9. The headlines. India and Italy agree to elevate ties to special strategic partnership. Both sides ink 15 agreements to boost bilateral cooperation in key areas including critical minerals, defense and agriculture. Prime Minister Narendra Modi receives FAO's highest honour, Agricola Medal, dedicates award to farmers of India. West Bengal government announces immediate start of deportation proceedings against illegal Bangladeshi infiltrators under Citizenship Amendment Act. India to remain world's first growing major economy with 6.4% growth this year.

0: India despite West Asia conflict, says UN report. IMD issues red alert for severe heatwave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha for the next 2 to 3 days. And in IPL cricket, match between hosts Kolkata Knight Riders and Mumbai Indians underway at Eden Gardens. India and Italy today finalized 15 outcomes across diverse sectors. The agreements were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. The outcomes mark the elevation of bilateral relations to a special strategic partnership. Both sides also inked several memorandums of understanding to deepen cooperation in key areas including critical minerals, defense, agriculture, Ayurveda, science and technology, maritime transport and ports. India and Italy also agreed to strengthen coordination against tax crimes, money laundering and terror financing. In a press statement after the talks, Prime Minister Modi said the two sides deliberated extensively on enhancing bilateral ties.
1: पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
0: Mr. Modi said India-Italy Joint Strategic Action Plan 2025-29 will provide a practical and futuristic framework for bilateral ties. He said both sides are working towards establishing an India-Italy Innovation Center and noted that the India-Italy Defense Industrial Roadmap has opened new avenues for co-development and co-production in the defense sector.
1: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
0: Mr. Modi stressed that India and Italy are united in viewing terrorism as a serious threat to humanity and underlined the need for strong action against terror financing networks.
1: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
0: Speaking on the occasion, Italian Prime Minister Meloni emphasized the importance of ensuring freedom of navigation in the Indo-Pacific and strengthening cooperation across key sectors.
2: Italy and India share a joint vision on many of the huge challenges of our times, rules, economic security, the resilience of the value chains, the promotion of peace, inclusive development. It is extremely important to have freedom on navigation in the Indo-Pacific sector is where we share the same vision of a free, inclusive and open Indo-Pacific.
0: Prime Minister Modi also called on Italian President Sergio Mattarella and held discussions on further expanding the bilateral partnership in areas such as trade, technology, clean energy and culture. Later in the day, Prime Minister Modi was conferred the prestigious Agricola Medal by the Food and Agriculture Organization FAO at its headquarters in Rome. The medal was presented by FAO Director General Chu Dongyu. Receiving the award, Mr. Modi dedicated the honor to India's millions of farmers, livestock rearers, fish farmers, agricultural scientists and workers. Speaking on the occasion, the Prime Minister said the award reflects India's unwavering commitment to food security, sustainable development and human welfare.
1: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव

अंत नहीं है ये, लेकिन आपकी फरमाइश हम नोट कर लिए हैं, दोबारा आएंगे तो आपका ये गाना जरूर लेके आएंगे। रेनबो कैफे पेश करने वालों को हमारा आदाब। आपका ये कार्यक्रम मैं रोज सुनता हूँ, इस कार्यक्रम के गीत बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप हमारा ये कार्यक्रम रोज सुनते हैं तो अभी तक किसी ने आपको मेमो नहीं भेजा, बताया नहीं कि कार्यक्रम का नाम हो गया है पॉप टाइम। प्रोग्राम व पोस्ट हरहरपुर मटकली जिला बरेली से शाहरुन नूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद इदरीसी, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी और डीजे प्रधान कोई एक मनई ईमा लिख दो कि पॉप टाइम है प्रोग्राम के नाम, है ना, ये रेनबो कैफे नहीं है। आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार, कार्यक्रम बहुत ही पसंद आ रहा है, गांव में हमारी पास रेडियो है इसलिए बहुत से लोग एक साथ कार्यक्रम सुनने के लिए आ जाते हैं और समस्त ग्रामीण श्रोताओं की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये लिखा है हमें ग्राम अमृता मोहली सीतापुर से इंद्रपाल मिश्रा, विजयपाल यादव, प्रमोद श्रीवास्तव जी ने। तो आपसे एक हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि

0: एक आवश्यक सूचना सुनिए। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले पद्म पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण के लिए भारत सरकार द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं अपने नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। नामांकन करते समय संबंधित व्यक्ति की उपलब्धियों और सेवाओं का स्पष्ट और विस्तृत विवरण सही प्रारूप में अंकित होना सुनिश्चित करें। पद्म पुरस्कारों से संबंधित नियम और विनियम padmaawards.gov.in पर देखे जा सकेंगे। एक बार फिर हम बताना चाहेंगे, padmaawards.gov.in पर आप नियम और विनियम इस अवार्ड से संबंधित देख सकते हैं। नामांकन करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2026। सूचना समाप्त हुई।
1: बरेली से सुल्तान रजा, इकबाल रजा, जीशान रजा, अफजल रजा, मोनीस रजा, सादिक रजा, मम्मी पापा और छोटा सा अमान। तो अमान, आपको ढेर सारी दुआएं। सर जी, कैसे हैं आप? मैं शिवपूजन फ्रॉम विलेज सनगवा लखीमपुर खीरी से। प्रोग्राम एंजॉय करने में मजा हुआ, एंजॉय करने में मजा आ रहा है। मतलब आपने ये नया मुहावरा जो रचा है ना, मेरा नाम अंशिका गौर है और पॉप टाइम मुझे बहुत पसंद है, मैं रोज सुनती हूँ। मेरा सॉन्ग भी प्ले कर दो। आप रोज सुनती हैं तो अंशिका, ये वाले प्रोग्राम में फरमाइश नहीं ली जाती, लेकिन आपकी फरमाइश हम नोट कर लिए हैं। दोबारा जब भी आएंगे ना, ये वाला गाना जरूर बजाएंगे। तो शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए, एक एक गाने को इतने प्यार से सुनने के लिए। और हमारी ओर कुछ लिख करके भेजने के लिए बहुत सारे लोग हैं जो सुन रहे हैं पर कुछ लिख नहीं रहे। अरे हमारी तारीफ मत कीजिए, जो आपको पसंद हो, जो भी आरजेएस पसंद हो, जो भी प्रोग्राम्स पसंद हो, उनकी तारीफ करके भेजिए, हम सब पढ़ेंगे।

जितेंद्र नामदेव जी, बदनू नामदेव जी, अंजू नामदेव जी, आरोही नामदेव जी, विलेज एंड पोस्ट खनोधी डिस्ट्रिक्ट शहडोल एमपी से सुन रहे हैं हमें। मध्य प्रदेश से सुनने वाले श्रोताओं का स्वागत है। अबू धाबी यूएई से शेख जियाउर रहमान, मानपुर साबित जिला मुरादाबाद के हैं शेख अताउर रहमान, शेख हबीबुर रहमान, और इन्होंने गाना जो विश किया है वो गाना तो फिर आपको सुनना पड़ेगा प्रोग्राम हमारा रजनीगंधा। विनीत कुमार ग्राम अर्थापुर पोस्ट रामगढ़ चीनी मिल जिला सीतापुर, पॉप टाइम प्रोग्राम करने वाली सर जी को गुड इवनिंग, शुभरात्रि। आप प्रोग्राम सुपर लाजवाब करते हैं, आपका प्रोग्राम हम रोज सुनते हैं रेगुलर, बहुत अच्छा लगता है। और कुछ मित्र लोग हैं मेरे, ओमकार सीतापुर से, क्षमा परवीन अंसारी सीतापुर से, सुरभ सीतापुर से, सीमा रावत राजाजीपुरम लखनऊ से, संतोष मौर्य हरदोई से, और सब कुछ इन्होंने सब्जेक्ट में लिख दिया है, तो कुछ मैसेज हमको लग रहा है रह गया है आपके पास। अगर पूरा नहीं पढ़े हम तो सब्जेक्ट के बजाय नीचे लिखिए, है ना, सब्जेक्ट में से पॉप टाइम लिखिए। गुड इवनिंग नितिन सर जी, कहाँ चले जाते हैं सर जी? ब्रजेश सिंह दीपू इटहुआ कैसरगंज बैराज से, हम कहीं नहीं जाते, हम यही रहते हैं आपके दिल में। हॉट मेल वाली मेल भी यहीं भेजे दे रहे हैं, ये तो नगी जी हुजूर है, इतनी देर से हम चिल्ला रहे हैं पॉप टाइम पॉप टाइम पॉप टाइम है ये, तो यहाँ पॉप टाइम वाली मेल भेजिए ना जी, है। और हमारे पास में जावेद अख्तर जी ने लिख के भेजा है, गुड इवनिंग नितिन जी, पॉप टाइम कार्यक्रम में आप जब भी आते कौन सी फूंक मार देते हैं कि कार्यक्रम लहराने लगता है। बहुत बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी तारीफ आपने लिख दी है कि हम थोड़ा सा ना शर्मा रहे हैं अब। रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से शमसुल कमर्राही, बेगम रुखसार और रकीबा शाहीन के साथ जावेद अख्तर जी का ये वाला मेल पढ़ने के बाद अगर हम कोई और गाना बजाएं तो कैसे बजाएं, तो हम ये वाला गाना बजाएंगे आपके पास आएगा। अब कैसा लगा आपको ये हमें बताइए।

आज की रात ये सोने होने का प्लान तो कैंसिल समझो, क्योंकि अगला वाला गाना इस कदर वाइब्रेंट है ना कि सुनने के बाद नींद भी रास्ता भटक जाएगी। तो शो की स्पीड को 100 के पार ले जाते हैं, 100.7 कर देते हैं।

राज किशोर जी का प्यारा सा मेल मिल गया है हमें, और इन्होंने कहा है कि ईमानदारी से काम करने वालों के शौक भले ही पूरे ना हो लेकिन नींद जरूर पूरी होती है। बात तो सही लग रही है हमें। विजय लक्ष्मी कुशवाहा, सांडी जनपद हरदोई, रेडियो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, रेडियो का साथ हमेशा मेरे साथ रहे। नितिन सर जी नमस्कार, कार्यक्रम लग रहा है बिंदास, पॉप टाइम सब्जेक्ट में लिखा है आपने, ये बहुत प्यारा लगा मुझे। एडवोकेट वारिस अली खान साहब संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से लिखते हैं, शो बहुत अच्छा कर रहे हैं, मजा आ रहा है, बाकी लोगों के बारे में लिखिए, हमारे बारे में बहुत तारीफ हो गया है ना। और हमारे पास में ये प्यारी प्यारी जो मेल्स आ रही हैं, सजी धजी ओखला संगम विहार दिल्ली से रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता, सत्यम गुप्ता, सुंदरम गुप्ता जी ने बहुत ही प्यारा सा मेल भेजा है, ढेर सारे मतलब बहुत ढेर सारे खांड जैसे सुंदर प्यारे मीठे इमोजीज भरे हुए हैं इसमें।

0: House.
1: बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि वो कभी डांस नहीं करते, उनके लिए अगला गाना ओपन चैलेंज है। इसकी हुक लाइन और बेस ड्रॉप इतना सॉलिड है कि बिना थिरके तो आप रह ही नहीं पाएंगे। बताइएगा थिरके कि नहीं थिरके।

राजेश यदुवंशी जी ने 5 मेल्स एक के बाद एक, एक के बाद एक लगातार भेज दी हैं और उन्होंने लिखा है कि जज्बा रखो तो पत्थर भी पिघल सकता है, हौसला हो तो किस्मत भी बदल जाती है। आपका मैसेज रिसीव हो गया है लाउड एंड क्लियर। तो आज का सबसे स्पेशल मैसेज भी हमारे पास आ गया अरविंद कुमार दुबे जी, ग्राम धर्मदेवा पोस्ट छटहा, जिला मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश से। पॉप टाइम मैसेज सब्जेक्ट में लिख करके हमें मैसेज कर रहे हैं, नमस्ते एफएम रेनबो लखनऊ, प्रोग्राम अच्छा लग रहा है। आज मेरी दीपा और अरविंद की शादी की सालगिरह, कोई अच्छा सा गाना सुना दीजिए प्लीज। तो आपके लिए बहुत ही तगड़ा वाला गाना हम लेके आए हैं और ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है, तो सुनिए और गुनगुनाइए। गोविंद, प्रतिमा, प्रतिष्ठा, तन्वी, दीपा, श्याम कुमारी, अरविंद दुबे, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश से, आप सबके लिए। और अगर डांस करें तो हमारी मेल आईडी में आप वीडियो भी भेज सकते हैं अपना।

0: आपको आपकी आवाज अच्छी लगती है और आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे इंतजार रहता है। ये जो आप लाइंस बोलते हैं बहुत अच्छी लगती हैं। सॉन्ग प्रेजेंटेशन सुपर्ब, आउटस्टैंडिंग अहमद नवाब संडीला से, पॉप टाइम अहमद नवाब, सब कुछ इन्होंने सब्जेक्ट में लिख रखा है। आगे बात है नितिन जी, आपका जवाब कहां से ढूंढ के लाऊं? जबरदस्त नागिन गीत को पहुंचाया रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से, जावेद अख्तर साहब ने जवाबी मेल भी फायर कर दिया है। हेलो नमस्ते सर, आकाश लोधी लिखते हैं हमें मलिहाबाद से, बहुत अच्छा लग रहा है प्रोग्राम, गर्मी बहुत ज्यादा है, सच में गर्मी बहुत ज्यादा है भाई साहब, बहुत ही ज्यादा गर्मी है। और कच्चा आम, कच्चे आम का पन्ना गर्मी से बचाता है, ऐसे इन्होंने कच्चे आम का पन्ना लिख दिया था, हम घबरा ही गए थे। तो एक सॉन्ग सुना दीजिए, तो सॉन्ग वाला प्रोग्राम तो ये नहीं है, पर आपकी जो फरमाइश है ना हम नोट कर लिए हैं। मैं कैसा हूँ अजमत जी? तो मैं बहुत अच्छा हूँ, गर्मी बहुत पड़ रही है, सच बात है गर्मी बहुत पड़ रही है, लेकिन मौसम ही गर्मी का है तो क्या कीजिएगा। सुल्तान रजा कुतुब खाना सब्जी मंडी बरेली से हमें शुक्रिया लिख के भेज रहे हैं कि हमने उनकी मेल पढ़ ली है, तो आपका भी शुक्रिया कि आपने हमें मेल के भेजी है। गुलाबशा ने एक और मेल लिख दी है और चाय के लिए हमें न्योत दिया है, तो ये न्योता अभी तो हम स्वीकार नहीं कर पाएंगे, गर्मी बहुत है इसमें चाय कैसे पिएंगे हम, लेकिन आपने हमें याद किया और ये प्यारी सी मेल हमें भेजी, इस पर हम बारी बारी जा रहे हैं।
1: हेलो गाइस, कैसे आप?
2: सारेगा पदा निदा पगरेगा मगरेगा सागा।
3: नमस्कार, मैं हूँ अनूप जलोटा, यू आर लिसनिंग 102.2 FM रेनबो कानपुर।

नमस्ते कानपुर, मैं हूं मनोज मुंतशिर शुक्ला और आप सुन रहे हैं 102.2 FM रेनबो कानपुर, कानपुर शहर की म्यूजिकल हार्टबीट।

मोनू सेठ जी, आपसे शिकायत रहेगी कि आप बहुत बिजी रहते हैं तो मेल नहीं करते हैं। खैर मजाक कर रहे हैं हम, बहुत बिजी होने के कारण मेल बहुत देर में कर पाया, लेकिन गाने ने बता दिया कि आरजे भैया जी आए हैं। गर्मी का कोहराम जारी है, पानी की बोतल भी साथ रखें और सभी श्रोतागण अपने अपनों का और बेजुबानों का ख्याल रखें। किसी की मदद करने का मौका मिले तो जरूर मदद करें। तो बहुत बहुत बहुत शुक्रिया आपकी प्यारी सी मेल करने के लिए। अतुल कुमार यादव जी ने पूछा है कि नंबर बता दें हम इनको, तो 0522-2238-852 0522-2238-842 यानी 0522-2238-852 0522-2238-845 ये है हमारा जो नंबर है। तो आपने हमें ये नंबर मांगा था, हालांकि इस प्रोग्राम में तो हम फोन कॉल्स नहीं लेते हैं, पर आपको हमने नंबर बता दिया है। तो अब कल आप हेलो एफएम

में कॉल जरूर करिएगा। अभी यहाँ पॉप टाइम से हम आपको कहेंगे नमस्ते, शुक्रिया हमारा साथ निभाने के लिए, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि आज रजनीगंधा में कुछ प्यारी प्यारी बातें करेंगे। ठीक है, अभी तो धूम मचाइए, डांस कीजिए।

0: नमस्कार, 10 बज चुके हैं, अब सुनिए मुख्य समाचार। गौतम बुद्ध नगर के कृषकों की कृषि संबंधी समस्याओं के निराकरण के उद्देश्य से प्रत्येक माह के तृतीय बुधवार को किसान दिवस का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में आज कृषि विभाग में किसान दिवस आयोजित किया गया। उप कृषि निदेशक राजीव कुमार की अध्यक्षता में आयोजित किसान दिवस में जनपद के प्रगतिशील कृषकों ने सहभागिता करते हुए अपनी विभिन्न समस्याओं एवं सुझावों को अधिकारियों के समक्ष रखा। कार्यक्रम के दौरान कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा किसानों को फार्मर रजिस्ट्री, धान एवं ढांचा बीज की उपलब्धता सहित कृषि योजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की गई। प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास तथा राजनीतिक पेंशन विभाग के मंत्री धर्मपाल सिंह आज कासगंज पहुंचे। यहां उन्होंने बैठक कर गौ संरक्षण और पशुपालकों की आय बढ़ाने पर विशेष जोर दिया है। बैठक में मंत्री ने निर्देश दिए कि सभी कान्हा गौशालाओं और गौ संरक्षण केंद्रों पर गोबर गैस प्लांट स्थापित किए जाएं, साथ ही गौशालाओं की भूमि पर हरे चारे और घास की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया। मंत्री ने प्रत्येक गौशाला में गोबर से लट्ठे बनाने की मशीन लगाने के निर्देश भी दिए। उनका कहना है कि इससे गोबर का बेहतर उपयोग होगा और अतिरिक्त आय के स्रोत विकसित होंगे। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के मंडल रेल प्रबंधक सुनील कुमार वर्मा ने आज जौनपुर जंक्शन स्टेशन पर चल रहे यार्ड रिमॉडलिंग कार्य का निरीक्षण किया। इस अवसर पर मंडल के विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान मंडल रेल प्रबंधक ने कार्यस्थल पर चल रहे ट्रैक, सिग्नल एवं विद्युत संबंधी कार्यों का अवलोकन किया तथा संबंधित अधिकारियों को कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर उच्च गुणवत्ता एवं पूर्ण सुरक्षा मानकों के अनुरूप संपन्न करने के निर्देश दिए। बस्ती मंडल में कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे की अध्यक्षता में आज खाद्य एवं रसद विभाग की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में विभागीय योजनाओं, गेहूं क्रय, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, राशन वितरण व्यवस्था तथा आमजन को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की विस्तार पूर्वक समीक्षा की गई। इस अवसर पर सतीश चंद्र मिश्रा, राज्य मंत्री खाद्य एवं रसद विभाग तथा नागरिक आपूर्ति रणवीर प्रसाद प्रमुख सचिव सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान मंत्री जी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी गेहूं क्रय केंद्रों का संचालन गुणवत्तापूर्ण एवं पारदर्शी ढंग से किया जाए। उन्होंने कहा कि किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या न उत्पन्न होने पाए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 11 बजे प्रसारित किया जाएगा।
1: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तान, चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
2: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
3: समझे जनाब अली।
2: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

दिन भर न जाने कितनी जरूरतें, कितने हुक्म, कितनी फरमाइशें पूरी करनी पड़ती हैं। दिन जब तक दुनियावी जरूरियात से भरी जिंदगी को खाली करता है, तब तक आंखों में उतर आती है रात। रात जब हम हर हिसाब किताब से बस दूर हो जाना चाहते हैं, शीट्स बंद कर देना चाहते हैं, डॉक्स फाइल को वैसे ही वैसा छोड़ देना चाहते हैं और स्क्रीन से बहुत दूर खो जाना चाहते हैं, कुछ ऐसे कि दिन भर के सारे जख्म भर जाएं, हम अपने आप से मिल पाए, अपने खुद के हर उस हिस्से को देख सकें, महसूस कर सकें, जिसकी वजह से हम रात के बीतने और दिन के आने के लिए तैयार होना चाहते हैं। इसीलिए आपके साथ आ जाता है आपकी म्यूजिकल दुनिया का सबसे शानदार म्यूजिकल शो रजनीगंधा। आज का मौजू महफिल, मोहब्बत भरी मुलाकातें।

कभी तो आपने भी सोचा ही होगा कि जिंदगी में भला क्या जरूरत होती है दूसरे लोगों की। उनसे मिले बगैर आखिर जिंदगी मुकम्मल क्यों नहीं हो सकती। जिंदगी में बगैर मुलाकात के ये खलिश क्यों महसूस होती है? क्यों भला लगने लगता है कि जिंदगी उतनी खूबसूरत है नहीं जितनी हम मान बैठे हैं बगैर किसी एक के। जिंदगी की खूबसूरती में इजाफा करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम कुछ दिलचस्प लोगों से मिलें और उस मुलाकात को बस खुद में उतर जाने दें, किसी इत्र की उस खुशबू की तरह जो बस एक शीशी से दूसरी शीशी में उड़ेलते वक्त कहीं छलक भर गया था। वैसे ही किसी की मुलाकात को वह जिंदगी में उतर जाने दें और सफर को बेहतर होने दें।

0: दोस्तों, हम लेकर आ रहे हैं आपके होठों पर सजने वाले सॉन्ग्स को,
1: जो होंगे आपकी मेल्स पर बेस्ड मेलोडियस सॉन्ग्स।
0: तो अपने फेवरेट सॉन्ग्स को सुनने के लिए आप शाम 4 से 5 बजे हमारे साथ रहिएगा आपकी पसंद के सफर पर।
2: मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो।
1: Only on 102.2 FM Rainbow, the musical heartbeat.
0: तो मेल करने के लिए हमारा मेल आईडी है airkansomedia@gmail.com। तो हमारे साथ सुनिए रेनबो कानपुर पर 4 से 5 आपकी पसंद प्रोग्राम।
3: Hi, this is Udit Narain. You are listening 102.2 FM Rainbow, शहर की म्यूजिकल हार्टबीट। दिल से जुड़े रहें और सुनते रहें शहर की म्यूजिकल हार्टबीट को।

नमस्कार, मैं हूं सिंगर अभय जोधपुरकर एंड यू आर लिसनिंग टू 102.2 FM रेनबो कानपुर। सुनते रहिए और म्यूजिकली बने रहिए FM रेनबो कानपुर के साथ। थैंक यू।

कुछ सलीखों को भूल जाएं तो मुलाकात तुरंत फौरन से पेशतर खत्म भी हो सकती है। मसलन ऐसे लोगों से कौन ही मिलना चाहता है जो जरा भी अच्छा ना खुद महसूस करें ना सामने वाले को महसूस करने दें। जैसे ही इनकी सुपर क्वालिटी का पता चलता है, इंसान उनसे पीछा छुड़ाकर भाग लेना ही तो चाहता है, भले उसे आसमां के नीचे ही क्यों ना रात गुजारनी पड़े।

जब भी किसी से मिलें, उनके लिए मिलें, उन पर ध्यान दें, खुद दिलचस्प बनने के बजाय उनमें दिलचस्पी दिखाएं। दुनिया को जरा और बेहतर बनाने में जुटने वाले आप सब लोगों ने एक ऐसे शख्स से तो मुलाकात की होगी जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही बतियाते रहते हैं, उन्हें आप में कोई दिलचस्पी नहीं होती। ये जब महफिल से जाते हैं तब इनके पास नई कोई बात नहीं होती, बल्कि इन्होंने बस खुद को पूरी तरह से खाली कर दिया होता है। उनसे मुलाकात का स्वाद कुछ कुछ वैसे ही हो जाता है जैसे मूंगफली खाते वक्त अचानक से खराब दाना आ जाता है और फिर मुंह का स्वाद बेहतर नहीं होता, नहीं ही होता है। इस वजह से जिनसे भी मिले उनसे उनके बारे में बातें कीजिए, उनके सपने साझा कीजिए, उनके ख्वाब, उनका भरोसा, उनकी परेशानियों को सुनिए, जानने की कोशिश कीजिए। शायद इस तरह से जिंदगी में किसी और के काम आकर आप अपने आप को बेहतर मुलाकात के लायक बना सकें। और ये मोहब्बत भरी मुलाकातें कभी खत्म ही ना हो। हाँ, तो लूटना ही है तो किसी के मन का नगर उनका साथी बन के लूटिए, दुश्मन बन के नहीं। और दुश्मन बनने का, किसी से भी इंस्टेंट दुश्मनी करने का सबसे आसान तरीका है कि बस अपने बारे में बतियाते रहे।

मेल मुलाकात की जरूरत ही जिंदगी में इसलिए होती है क्योंकि हम में से कोई भी खुद में मुकम्मल नहीं है। अगर हम दूसरों से मिलकर भी बस अपनी ही बातें बतियाने वाले हैं तो ये मिलने जुलने का संकट क्यों उठाना। इसलिए दूसरों को मौका दीजिए कि वो बात कर सकें। हो सकता है वो कुछ ऐसा कहें जिससे आपके अथाह ज्ञान का जो सागर है वो जरा और बढ़ जाए। लेकिन अगर आप सच में मानते हैं कि आप तो ज्ञान का सागर ही हैं, जिसमें अब बस उलीचने की जरूरत है और ज्ञान आ ही नहीं सकता, तो फिर घर पे रहिए, अपनी बातें रिकॉर्ड कीजिए और खुद सुनो, बहुत मजा आएगा।

वैसे ही जो खुद के बारे में बातें करने की आदत है, ये पूरी तरह से निरर्थक नहीं है। दफ्तर में, कई बार घर में, ये आपको सर्वाइवल मोड में रखती है। लेकिन जब भी घर या दफ्तर छोड़ें, वहीं अपना सबसे आगे रहने का भाव भी छोड़ दें। वैसे तो ये भाव कहीं सही जगह देखकर वहीं दफन कर दीजिए तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर नहीं हो पा रहा तो घर दफ्तर में लेकर जाइए। सर्वाइवल के लिए अगर इनकी जरूरत है तो रखिए अपने साथ। लेकिन जैसे ही किसी तीसरी जगह पर जाएं तो प्रतियोगिता की, कॉम्पिटिशन की जो भावना है ना, उसको किनारे रख दीजिए। हर बात, हर मुलाकात कुश्ती का मैच नहीं है। कई बार बात, मुलाकात बस तफरी के लिए भी होती है। अगर ये हर बात, हर मुलाकात प्रतियोगिता बनने लगी और इसमें आप फंस गए तो जीवन का मजा वैसे ही किरकिरा हो जाएगा जैसे इम्तिहान आते ही स्कूल और दोस्तों के साथ खेलने कूदने का जो मजा था वो किरकिरा हो जाता था। मंजिल है कहीं और, आपको मिल भी जाएगी, लेकिन मजा तो सफर का है।

दोस्तों से मुलाकात की बात जब भी जहन में आती है तो हर किसी का कष्ट एक ही होता है कि आजकल वक्त नहीं मिलता है। फिर भी अक्सर जब लोग किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले वक्त को ही तिलांजलि दे देते हैं। कुछ लोग होते ही ऐसे हैं कि बातों की भूल भुलैया ये मिराज कुछ यूं रचते हैं कि उन बातों में दिलो दिमाग की क्या ही कहें। दुनिया को चलाने वाला वक्त भी भूलकर मिट जाना चाहता है। ऐसे में बातों की छनी जलेबी में अक्सर कुछ खास बचता नहीं, सिवाय इसके कि बहुत सारा वक्त बर्बाद हुआ। यू आर अ गुड क्वेश्चन। लेकिन जो वक्त आपने बर्बाद किया है और उसे बर्बाद करते वक्त अगर आपने एंजॉय किया है खुद को, तो क्या सच में वो वक्त बर्बाद हुआ है? क्या मिनट दर मिनट जो हमने दिन को रातों को ख्वाबों को बेच रखा है सिर्फ वही हमारा प्रोडक्टिव वक्त है? सोचिएगा, बाकी तो हमारे साथ

जब भी किसी से मिलिए तो ये मान के मिलिए कि उनके पास बहुत सारा वक्त नहीं है। इसलिए किस्सों की ऐसी फेहरिस्त से बचने की कोशिश कीजिए जिनको सुनने सुनाने के लिए पूरी की पूरी गर्मी की छुट्टियां सर्व करने की जरूरत होती है। वजह साफ है, अगर आप लंबे किस्से सुनने सुनाने के आदि हैं तो यकीनन आप अक्सर उन किस्सों में ढेर सारे रंग डालेंगे। अब जिन लोगों पर वक्त नहीं है वो इन रंगों की सराबोर से केवल परेशान ही तो होंगे, उनके बस का है ही नहीं कि आपके सुंदर सलीकेदार रंगों की बौछार का आनंद उठा सकें। इसलिए कुछ अफसाने बस बात करते वक्त किनारे रख दीजिए। अगर लोग सवाल पूछिए तो समझिए कि वो बातों में दिलचस्पी ले रहे हैं, और सवाल ना पूछें तो समझ लीजिए कि आप बस उन्हें बोर कर रहे हैं और वो थोड़े तमीजदार हैं तो आपसे नहीं कह पा रहे कि आप हमें झिला रहे हैं।

किसी से मिलने में एक बात काबिले गौर है कि जिनसे मिलिए, बातें कीजिए, हमेशा सहमति तक पहुंचने का प्रयास कीजिए, मगर असहमति के लिए, डिसएग्रीमेंट के लिए खाली जगह रखिए अपने पास। अपने ख्यालों के लिए किसी से भिड़ने का कोई मतलब है नहीं। पहली बात तो यह है कि आगे चलकर आपके आज के ख्याल पूरी तरह बदल सकते हैं, क्योंकि कोई कितना भी कहे मगर अपने विचारों के लिए कोई खास पुख्ता सबूत किसी के पास नहीं होते। कल कोई नई बात पता चले तो विचार बदलने होंगे ना, मगर संबंध एक बार टूटे तो फिर जख्म गहरा होता है। दूसरी बात यह है कि लोग विचार नहीं है, इसलिए अगर विचारों से आप असहमत भी हो तो सम्मान जरूर दीजिए सबको। बाकी खुश रहिए। रजनीगंधा में बातों का यह सिलसिला खत्म नहीं होगा। एक नगमा, फिर समाचार, उस पार फिर मुलाकात होगी। तो कहीं जाइएगा मत, क्योंकि आज 100.7 FM रेनबो पर मौजूद महफिल है मोहब्बत भरी मुलाकातें।